zumitan drumada la shobini suhasini sumadhura bhashini

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 46 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शांत और स्वच्छ आकाश में सूर्य की किरणें अपनी सुनहरी चमक बिखेरने को आतुर हैं। पंछियों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घोल रहा है। प्रातः की अद्भुत सौंदर्यमयी बेला का लाभ उठाइए और नई ऊर्जा के साथ कीजिए नए दिन का स्वागत। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोता जो अपनी दिनचर्या में लग चुके हैं और रेडियो सेट को ऑन भी कर चुके हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुनते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग

0: भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है।

0: की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्स के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में वक्त है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों को जानकारी देंगे ढैंचा की उन्नत खेती के बारे में।
1: शुभ प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढैंचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढैंचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढैंचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि आधा प्रतिशत से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और

0: छह प्रतिशत के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि ओम भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढांचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 पीएच पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका धान की रोपाई से 45 दिन का, तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का, उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है, और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढांचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढांचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप, ढांचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
1: ढांचा की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। विकास ऐसा हो जिसमें समाज के हर अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की कल्पना, जिसने सभी को आगे बढ़ाने का समान अवसर मिलने का सपना देखा, विनोबा भावे जी। आइए सुनते हैं सुविचार। आज का शीर्षक है विनोबा भावे के विचार, वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का है।
2: मजदूर ही दरअसल उसकी मुख्य संपत्ति है। मजदूर शरीर से काम करते हैं, किंतु शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग हो सकता है। इस प्रकार शरीर और बुद्धि दोनों मिलकर मजदूर बनता है। एक जमाना ऐसा आने वाला है जबकि हर एक व्यक्ति मजदूर बनेगा, यानी ऐसा माना जाएगा कि जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का हक नहीं है। जो बौद्धिक काम करते हैं वे भी मजदूर हैं, लेकिन आज बौद्धिक काम की कीमत और शारीरिक मजदूरी की कीमत में बहुत फर्क हो गया है। वो मिट जाना चाहिए और मिटेगा। भगवान ने हरेक को शरीर दिया है, भूख भी हरेक को लगती है। शारीरिक श्रम करने से भूख अच्छी लगती है, और भूख मिटाने का उपाय शरीर श्रम से अन्न पैदा करना है।

0: इसलिए हर एक को पैदावार में हिस्सा लेना चाहिए। फिर चूंकि भगवान ने हर एक को बुद्धि भी दी है, इसलिए बुद्धि के विकास का मौका भी सबको मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि देश के करोड़ों लोगों के पास बुद्धि नहीं है। बात यह है कि उनको बुद्धि के विकास का मौका ही नहीं मिलता है। हमारे यहाँ अनेक संत पुरुष और आध्यात्मिक कवि मजदूरों में से ही पैदा हुए हैं। कबीर एक मजदूर थे, रविदास और रामदेव भी मजदूर थे। लेकिन आज तो दुनिया दो भागों में बट गई है। कुछ लोग बुद्धि से काम करते हैं और बहुत तनख्वाह पाते हैं। हम जानते हैं कि एक चाकू जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं घिसता है और जल्द टूट जाता है। दूसरा चाकू जिसका हम उपयोग नहीं करते उस पर जंग चढ़ जाती है और वह भी टूट जाता है। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का ज्यादा काम पड़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसती जा रही है। और मजदूरों को बुद्धि का काम नहीं मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि क्षीण होती जा रही है। इसलिए दोनों वर्गों को दोनों तरह का काम मिलना चाहिए। मजदूर को यदि 6 घंटे शरीर का काम मिलता है तो 2 घंटे का दिमागी काम भी उसे मिलना चाहिए। इस तरह ही दोनों का विकास हो सकेगा। संग्रह की जरूरत न तो मजदूर को होनी चाहिए और न ही दूसरों को। समाज सबकी फिक्र करेगा। आज के लिए आज और कल के लिए कल, ऐसा हो सकता है? यह आदर्श है। वहां तक पहुंचने में समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बगैर मानव शांत नहीं रह सकेगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों में जो काम हो रहा है वह प्रेम की दृष्टि रखकर ही हो रहा है। इसी में सबका लाभ है। मजदूरों को यह नहीं महसूस करना चाहिए कि वे लाचार हैं। आज देश में उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। आपको इससे संतोष होना चाहिए कि उत्पादन का काम करके आप देश को टिका रहे हैं। आपको किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से आप सब कुछ पा सकते हैं। दूसरे लोगों को भी मजदूरी में लग जाना चाहिए। अगर वे ज्यादा मजदूरी नहीं कर सकते हैं तो घंटे 2 घंटे ही करें। इस तरह हर घर में कुछ न कुछ उत्पादन हो जाएगा और हमारा देश संपन्न और सुखी बनेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विनोबा भावे के विचार, वाचन स्वर सुषमा गुप्ता का था। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

माँ की जयकार हर युग में होती आई है। माँ का नाम लेकर आइए आराधना की शुरुआत करते हैं और जीवन को बनाते हैं धन्य।

गोविंद, जो प्रेम भी है और लीला भी, नीति भी और संगीत भी, जिनकी बांसुरी में छिपा है मन को शांत करने वाला अमृत। भगवान हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना, सही निर्णय लेना और धर्म का साथ देना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए प्रभु के चरणों में स्वयं के हृदय को समर्पित करें।

आइए राम भजन के माध्यम से अपने हृदय के अंदर की अच्छाइयों को जगाएं और बुराई पर विजय का संकल्प लें। आइए राम नाम का स्मरण करें जो हर पीड़ा का समाधान है।

जिनके माथे पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी सुशोभित है। प्रभु श्री कृष्ण जो भक्तों के सुख और दुख में सदा साथ खड़े रहते हैं। आइए प्रभु का गुणगान करें।

भगवान शिव जो शांत भी हैं और शक्ति भी, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का संदेश देता है और तीसरा नेत्र सत्य का प्रकाश, हर संकट में आश्रय वही है और हर समाधान का आरंभ भी।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स पर और सुन रहे हैं वैशाली के साथ आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 174 में वन में पर्ण कुटीर बनाने के लिए प्रभु श्री राम का वाल्मीकि ऋषि से स्थान बताने की विनती का प्रसंग।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से।

0: आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्या।

उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्त विभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम् माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीये निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम्, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी लखनऊ से। श्रोताओं, समय है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारी एक्सपर्ट नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए हर दिन लेकर आती हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे फल की बात करेंगे जो भारत में भले ही परंपरागत रूप से बहुत पुराना ना हो, लेकिन इसकी ख्याति, इसके स्वास्थ्य लाभ और इसके बहुआयामी उपयोग इसे एक आधुनिक जीवन शैली का अहम हिस्सा बना चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ऑलिव यानी जैतून की, जो एक छोटा सा फल है लेकिन अपने भीतर सेहत, सुंदरता और स्वाद के लिए बेशुमार गुण समेटे हुए है। ऑलिव का संबंध मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय देशों से रहा है। ग्रीस, इटली, स्पेन और तुर्की जैसे देशों में ये न सिर्फ भोजन का हिस्सा है बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी है। सदियों से ऑलिव को लंबी उम्र, हृदय स्वास्थ्य और सौंदर्य का रहस्य माना गया है। आज विज्ञान भी ये मान चुका है कि जैतून और इससे निकला ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल वास्तव में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ऑलिव फल के रूप में भारत के बाजारों में अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गया है। सलाद, पास्ता और विभिन्न व्यंजनों में इसे एक खास स्वाद

के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांके तो हमें सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि एक शक्तिशाली पोषण का स्रोत भी मिलेगा। जैतून में मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, खासकर ऑलिक एसिड, हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं और हृदय रोगों की संभावना को कम करते हैं। यही कारण है कि ऑलिव ऑयल को हार्ट

0: वाले लोगों में झुर्रियां देर से आती हैं, त्वचा में चमक बनी रहती है और शरीर भीतर से तरोताजा महसूस करता है। श्रोताओं, सुंदरता की बात करें तो जैतून का तेल त्वचा और बालों के लिए भी किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। पुराने समय से ही मिस्र की रानियों से लेकर यूनानी चिकित्सकों तक ने जैतून के तेल को सौंदर्य बढ़ाने के लिए अपनाया है। इसे त्वचा पर लगाने से नमी बनी रहती है, रूखापन दूर होता है और त्वचा कोमल बनती है। वहीं बालों में इसका प्रयोग करने से बाल मजबूत होते हैं, डैंड्रफ कम होता है और बालों को प्राकृतिक चमक मिलती है। अब अगर हम पाचन की बात करें तो जैतून का तेल लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और आंतों को भी सक्रिय रखता है। हल्के गर्म ऑलिव ऑयल को सुबह खाली पेट लेने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है। साथ ही ये लीवर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, जिससे शरीर की सफाई भीतर से होती है और त्वचा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव दिखता है। ऑलिव का एक और गुण है, ये वजन को नियंत्रित करने में सहायक है। ये बात शायद कुछ लोगों को हैरान करे, लेकिन हम अक्सर फैट से बचते हैं, लेकिन जैतून में जो वसा होती है वो अच्छी वसा होती है, जो शरीर को ऊर्जा देती है लेकिन अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ाती। यदि संतुलित मात्रा में ऑलिव ऑयल का उपयोग किया जाए, जैसे कि सलाद में या फिर रोटी पर हल्का सा लगाकर, तो ये भूख को संतुलित रखता है और अनावश्यक खाना खाने की आदत को भी रोकता है। भारत में अब लोग धीरे धीरे ऑलिव और इसके तेल को अपनाने लगे हैं, खासकर शहरी जीवन शैली में जहाँ स्ट्रेस ज्यादा होता है, खान पान अनियमित होता है, वहाँ जैतून एक संतुलन लाने वाला तत्व बन सकता है। ये रक्तचाप को कम करने में सहायक है और दिमाग को भी सुकून देता है। रिसर्च बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं, उनमें अवसाद और चिंता के स्तर कम पाए जाते हैं। श्रोताओं, जैतून का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। ये हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में बड़ी शक्ति छिपी होती है। जैतून का एक छोटा फल जब सलाद में जाता है या उसका तेल जब भोजन में उपयोग होता है, तो वो न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि हमारी सेहत को भी समृद्ध करता है। और सबसे सुंदर बात ये है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक है, किसी रासायनिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आज जब हम तेज जीवन शैली, प्रोसेस्ड फूड और तनाव से भरी दिनचर्या से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में जैतून हमारे लिए एक सादा लेकिन शक्तिशाली समाधान बन सकता है। जैतून हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य का रास्ता महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और संतुलित जीवन से होकर जाता है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।
1: सदाबहार और स्वास्थ्य वर्धक जैतून, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। और अब आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा रात 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सामयिक चर्चा में सुबह 9:15 पर सुनना ना भूलें। कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा की बातचीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाज फरमाइएगा डॉक्टर दरख्शां ताजवर का मकाला, जिसका मौजू होगा गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गबारा ना होगा। इसके अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम में आप सुनेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम उस्ताद योजना के बारे में। कला में शायर में आज के शायर होंगे जलाल अहमद सामानी। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडेय और नीना सोनकर की होगी। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की वार्ता अवध के लोकगीत। दिन में 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सुषमा भारद्वाज की संस्कृत वार्ता।

संस्कृत साहित्य प्रकृति सौंदर्य। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा यकृत संबंधी विभिन्न बीमारियां, कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार, प्राध्यापक गैस्ट्रो सर्जरी विभाग SGPGI लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग तोड़ी में ख्याल गायन। दोपहर 12:00 बाल मंच कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे अभिलाष उमर से की गई बातचीत, जिसका विषय है दूर संचार जोड़े दिल से दिल के तार। बातचीत करेंगे दर्श दीक्षित, नीतिज्ञ गुप्ता। इसके अलावा हेल्थ टिप्स में बच्चों को डॉक्टर निशांत वर्मा जानकारी देंगे हेल्दी हार्ट रहो स्वस्थ और स्मार्ट विषय पर। आज इतवार है, में दिन में 1:15 पर सुनिएगा विशाल तिवारी की लिखी झलकी हाय रे गर्मी। प्रस्तुति सहयोग रवि तिवारी का और निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा रविन्द्र चतुर्वेदी से की गई भेंट वार्ता वृद्धावस्था में वित्तीय प्रबंधन विषय पर। बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और प्रबंधन, इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर दिवाकर वर्मा से की गई भेंट वार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4:00 संकल्प कार्यक्रम में सुनना ना भूलें ब्रेल लिपि विषय पर ब्रजेश चौधरी से देवाशीष की बातचीत। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे देवकी नंदन यादव नंदन, समरजीत सिंह काग। संचालन राघवेंद्र नाथ त्रिपाठी का होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे गन्ना उत्पादन विषय पर कुशल पाल तिवारी से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में अब वक्त है विविधा का, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विविधा में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए जब आखिरी बार आपने खुद से कहा था मुझसे नहीं होगा, परीक्षा से एक रात पहले, कोई सपना पूरा ना होने पर, या जब जिंदगी ने एक ऐसा वार किया जिसकी उम्मीद भी ना थी। तो आज की विविधा में बात ऐसी पंक्ति की जिसने लाखों लोगों को टूटने से बचाया, हारने से रोका और फिर से उठना सिखाया, जीना सिखाया। बात नर हो न निराश करो मन की, जिसमें छुपा है पूरा जीवन दर्शन। ये पंक्ति नहीं, एक ललकार है, लोगों को जागरूक करने का नगाड़ा उस पूरी पीढ़ी के लिए जो निराशा के दलदल में धंसती जा रही हो। नर हो न निराश करो मन को, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है। उन्होंने ऐसे दौर में लिखा जब देश गुलाम था, लोगों में निराशा थी, जब हर तरफ हताशा थी, टूटन थी। आज इतने दशकों बाद भी ये शब्द उतने ही ताजा हैं जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। नर हो न निराश करो मन को, अगर तुम इंसान हो तो अपने मन को निराश न होने दो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पल में खुद को पाया है जब भीतर से कोई आवाज आई हो, छोड़ दो, बस हो गया, तुम्हारे बस का नहीं है, दुनिया तुम्हें रोक सकती है, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, हालात कमजोर हो सकते हैं, मगर जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, इंसान के मन के अंदर होता है। जब इंसान हार मानने लगता है, सारे रास्ते बंद दिखते हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त आशावादी मन कहता है उठो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, फिर से कोशिश करो, तुम में हिम्मत है, तुम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। नर हो न निराश करो मन को। ना भूले दोस्तों, हम सभी इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है विचार करने की शक्ति और जूझते रहने का जज्बा। कुछ ऐसा काम करना जो समाज के काम आए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, जिससे लोग हमें याद करें। उठो और अपना रास्ता खुद बनाओ,
मन को निराश मत करो।

यदि मन टूट गया तो समझो हम टूट गए हैं, यानी कि इंसान टूट गया है। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में अनगिनत लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। भारत में हर 5 में से एक युवा मानसिक तनाव का शिकार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं, निराशा। निराशा का एक और नाम है आराम का बहाना। असल में हम निराश नहीं होते, हम डरते हैं असफलता से, लोगों की बातों से। लेकिन नर वो है जो डर को अपने से दूर करते हुए चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। एक बात मन में बिठा लें कि निराशा एक भावना है और भावनाएं बदलती हैं, लेकिन संकल्प वो नहीं बदलता। और अगर आपने ठान लिया कि ये कार्य हमें करना है, तो मानिए दोस्तों, ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। थॉमस एडिसन याद है आपको? बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 10,000 बार प्रयोग किए और असफल हुए। लोगों ने पूछा भी, आप बार बार असफल हुए लेकिन निराश नहीं हुए? एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हारा नहीं, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में जन्मे, अखबार बेचकर पढ़ाई की, पायलट बनना चाहते थे, रिजेक्ट हो गए, मगर दोस्तों निराश नहीं हुए। उन्होंने खूब मेहनत की और बने देश के राष्ट्रपति। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा मस्तिष्क निगेटिविटी बेस से भरा है, यानी बुरी चीजें हम 5 गुना ज्यादा याद रखते हैं। एक तारीफ मिली भूल गए, एक बार डांट पड़ी सालों याद रहती है। तो निराशा स्वाभाविक है लेकिन स्थायी नहीं। सारी लड़ाई ना मन की है। शरीर थकता है ठीक है, पर मन को मत थकाओ। ये तो मानी हुई बात है दोस्तों कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर मन में बीज डाल दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो वो पेड़ बनकर जरूर बड़ा होगा, और अगर बीज डाल दिया मुझसे नहीं होगा, तो वो जमीन हमेशा बंजर रहेगी। चुनाव आपका है। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, सांसें दी हैं, कमी है तो बस इरादे की। कोई चीज असंभव नहीं। हर इंसान संपन्न हो सकता है ज्ञान से, कर्म से। एक कदम उठाइए तो। और दोस्तों, जीवन है तो बाधाएं आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। ऐसे पल आएंगे जब लगेगा अंधेरा बहुत घना है, लेकिन याद रखिए, सूरज हर रोज डूबता है, इसलिए कि अगले दिन और शानदार तरीके से उगे। आप और हम भी वैसे ही हैं। जब रिजल्ट खराब आए, जब सभी साथ छोड़ जाएं, जब मेहनत रंग ना लाए, जब सारे रास्ते बंद दिखे ना, तब आईने में देखिएगा और जोर से कहिए, नर हो ना निराश करो मन को। तो इस संकल्प के साथ आज अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि कुछ भी हो जाए हम निराश नहीं होंगे, बस अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।

0: आज की विविधा में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। ये आकाशवाणी लखनऊ है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, चंदपलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
5: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी है।
5: प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था, फिर उन्होंने फिट

0: की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी, देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
1: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। शिलान्यास समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर में 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल गोरखपुर में स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सहभागिता दर्ज कराने की अपील करते हुए कहा है कि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटाकर देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक होगा। सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में कल रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कल अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए विंध्य प्रसादम गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। विंध्याचल में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए विंध्य प्रसादम में चुनरी से लेकर पूजा की सामग्री और प्रसाद उपलब्ध है। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल वाराणसी में अधिकारियों के साथ

0: समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बारिश से पहले नालों की सफाई, शहर की स्वच्छता और बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। चित्रकूट नगर पालिका क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। कल नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के साथ ही इसे सुंदर बनाया जा रहा है।
1: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए ये कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है सरकार। डिजिटल जनगणना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने भी पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। सभी नागरिकों से जनगणना में सहभागिता दर्ज कराने का किया आह्वान। CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन किया अनिवार्य। 3 में से 2 भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दस्तक देगा मानसून। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का राग तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ख्याल गायन राग तोड़ी में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को कार्यक्रम से। नमस्कार श्रोताओं, बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी

भारत अवसरों की भूमि है, भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे

0: से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के

0: अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं

0: और दसवीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं बच्चों का प्रिय कार्यक्रम अंकुर।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यार भरे अंकुर में बच्चों। और नेमचंद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। भाई, ये प्यारी सी मुस्कुराहट का राज क्या है, ये बताइए हमें जरा।
1: बिल्कुल बताएंगे, सभी प्यारे प्यारे बाल दोस्तों को हमारा नमस्कार। और आकाशवाणी बरेली का अंकुर कार्यक्रम सुनते रहिए। यह खास तौर से हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का कार्यक्रम है, उनमें अलख जगाता है, उनका मनोरंजन कराता है और मीठी मीठी बातें भी करता है नाजमा दीदी,
0: और जानकारी भी तो देता है नेमचंद भैया, और लड्डू बर्फी जलेबी भी खिलाता है।
1: तो जलेबी है भी या खाली हवा में?
0: नहीं नहीं, हवा में नहीं है, बिल्कुल खाइएगा प्रोग्राम करने के बाद। बहुत बड़ा डिब्बा भरा रखा है।
1: नहीं तो खाली जलेबी है या दही भी है?
0: नहीं, खाली जलेबी खाइएगा आज।
1: और
0: तो
1: दही?
0: दही अगली बार।
1: चलिए, पक्की है?
0: पक्की है।
1: चलिए, बातों का सिलसिला आरंभ करते हैं। साथियों, जब हम आप सुनते हैं कि ये आकाशवाणी है तो रेडियो की मधुर यादें ताजा हो जाती हैं। सन 1936 से शुरू हुआ ये मीठा सुहाना सफर अनवरत जारी है। आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून इतनी मधुर है कि वो श्रोताओं को एहसास करा देती है कि अब आकाशवाणी केंद्र की सभा ओपन हो रही है। इस ट्यून को सुनकर आज भी मन एकदम कहने लगता है, वाह वाह वाह वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये है श्रोताओं की प्यारी प्यारी धुन, आकाशवाणी की संकेत धुन।

0: निमचंद भैया
1: जी,
0: वाकई में ये धुन सुनी तो लगा कि हाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है ना? तो बच्चों, आजकल हमें आपको सबको बहुत गर्व की बात है कि आकाशवाणी अपने सफर के 90 साल के सुहाने सफर की ओर है।
1: अरे नाजमा दीदी, तभी तो कहा जाता है कि जीवन चलने का नाम और चलते रहो सुबह हो या
0: शाम।
1: बिल्कुल, युवाओं, किसानों, बच्चों, महिलाओं सहित सबको साथ लेकर चलती है आकाशवाणी। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव के रास्ते चल चला का ये सफर आज भी अनवरत जारी है और नई नई ऊंचाइयों को

0: छू रहा है। एफएम मोड के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अब अपना जलवा बिखर रहा है आकाशवाणी का नाजमा दीदी, ऐसा ही है ना?
1: नहीं नहीं चंद भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए श्रोता हमारे आपके कितने करीब आते जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: तोरा मन दर्पण
1: क्या
0: कहलाए, बात भक्ति संगीत की
1: बात
0: हो या फिर फिल्मी गानों की धुन। इतने दिन है कौन जिया, परदेश जाके परदेशिया, आकाशवाणों ने सभी विधाओं का ध्यान रखा। बात नाटकों की हो या नौटंकी की, आकाशवाणी ने सबका ध्यान रखा। आकाशवाणी से जब नौटंकी और ढोला आसमान में गूंजा तो इसके सुनने वालों ने वॉल्यूम की आवाज को और तेज किया।
1: जी बिल्कुल सही।
0: इस सब के साथ ही साथ जब रेडियो में आहला आई कि कबहू नाव जात पानी में, कबहू नाव लगावत पार, अजब गजब भगवन की है माया, है सब अजब गजब संसार, तो क्या हुआ, लोगों ने रेडियो के आंगन से ऊपर ले जाकर छत पर पहुंचाया, है ना
1: जी।
0: तो इतनी मधुरता भरी शानदार सुरीली यादों को समेटे है आकाशवाणी।
1: बच्चों नए नए ज्ञानप्रद कार्यक्रम, समाचार, महाभारत और मीना की दुनिया, हरियाली भरी कृषि पाठशाला सहित सीधे खेत से किसान को जोड़ती है आकाशवाणी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय सहित शिक्षा, सूचना और मनोरंजन को समर्पित आकाशवाणी का मजबूत सफर बिना आपके अधूरा है। आपसे हमारी अपील है कि आकाशवाणी के साथ ही यूं ही अपनी प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, जो ये प्यारा सा रिश्ता है ना, कायम रहना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल कायम रहना चाहिए और कायम रहेगा नाजमा दीदी,
1: बिल्कुल रहेगा।
0: आपने देखा होगा कि गाड़ियों में एफएम
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: कमरे में एफएम, और तो और आप ये समझिएगा कि मोबाइल के साथ जेब में भी एफएम।
1: हाँ, और देखिए निमचंद भैया, पहले तो ये था कि बरेली बरेली, फिर रामपुर, फिर और दूसरी जगह, दूसरे शहर, और अब दुनिया में गूंज रहा है आकाशवाणी।
0: किसी भी केंद्र की बात हो, बड़ा आनंद आता है आकाशवाणी के कार्यक्रमों में। हम आपके और आप हमारे, इसी सिद्धांत के साथ आकाशवाणी से जुड़े रहिए। सच्ची राह का एक बहुत अच्छा साथी है आकाशवाणी।
1: बिल्कुल निमचंद भैया, सही कहा आपने। और देश के प्रधानमंत्री जी हों या वकील, उद्योगपति हों या श्रमिक भाई, सबकी वाणी है प्यारी आकाशवाणी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि वे अपनी स्कूली शिक्षा के साथ ही साथ आकाशवाणी को भी अपना प्यारा सा दोस्त बनाइए। आप ये समझिए कि शिक्षा है, संस्कार है, अनुशासन है, ईमानदारी है, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा पाठ आपके लिए पढ़ाती है आकाशवाणी। और यकीन मानिए, ये जो मधुर वाणी है ना आकाशवाणी की, अगर आपको आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीन मानिए कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।
1: यानी कि जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी पर आ जाएगी, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी की आपने याद दिला दी
1: जी।
0: हमने एक बार जब छोटे थे तो एक हवाई जहाज खरीदा मेले से,
1: अच्छा
0: उसमें चाबी लगाई, वो हो गया फुर। कैसे हो गया, आप करके दिखाओ।
1: आपने चाबी लगाई और वो हो गया फुर।
0: फिर से कहना है, फिर फुर
1: फुर। और लेकिन आप उसमें बैठे कि नहीं ये बताइए, क्योंकि वो तो हो गया फुर।
0: फुर हो गया, उसमें भी तो आनंद आता है ना
1: जी।
0: तो ये थी आकाशवाणी की मधुर यादें। आगे कुछ बात दूरदर्शन की भी करेंगे, लेकिन दीदी
1: जी,
0: बच्चों को अपने माता पिता से कितना प्यार होता है। आपने एक गीत में सुना होगा कि वो प्यारी सी बालिका अपने पिता से कह रही है कि पापा जल्दी आ जाना और सुंदर सी गुड़िया लाना।
1: हाँ, और हाँ ये भी तो कहा है कि भले ही गुड़िया ना लाना लेकिन आप जल्दी आ जाना, घर आपको देर ना हो, कितना प्यार झलकता है निमचंद भैया, है ना? बस यही संसार है बचपन का, तो पिता पुत्री के अटूट रिश्ते को झकझोर देने वाला जो ये गीत है, वाकई में आप सुनिएगा, पूरा एंजॉय करेंगे हम सब।

0: पप्पा जल्दी आ जाना, गुड़िया चाहे ना लाना। तो बताइएगा नाजमा दीदी
1: जी,
0: कि जब आप गुड़िया थी, छोटी थी, तो पप्पा जल्दी आ जाते थे काम पर से आपके?
1: हाँ बिल्कुल, क्या याद दिलाया है नेमचंद भैया। वो वक्त भी क्या था कि जब पापा के आने का टाइम हुआ करता था तो हम सब बहन भाई बड़े इंतजार किया करते थे कि पापा आएंगे और कुछ ना कुछ चीज लेकर आएंगे।
0: तो पापा आते होंगे, केरा की भरी लाते होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जब आते थे तो पापा के हाथ में बड़ी सी थैली हुआ करती थी और उसमें ना जाने क्या क्या, बस हम लोगों ने खाना तो खा ही चुके थे।
0: तो नाजमा लली तो वो थैली या जो थैला था पहले ही ले लेती होंगी। ला पापा,
1: बिल्कुल छीन झपट मचती थी उसमें बहन भाइयों के वक्त की भी क्या बात होती है ना।
0: प्यार जी बिल्कुल।
1: और बच्चों, जहां आकाशवाणी अपने सुरीले सफर के शानदार 90 वर्षों की ओर है, वहीं दूरदर्शन के भी क्या कहने।
0: बिल्कुल साथियों, भारत में टेलीविजन की शुरुआत सन 1959 में हुई थी। सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। पहले शुरुआत में ये ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन 1982 में रंगीन प्रसारण शुरू होने के बाद तो दूरदर्शन का जादू तेजी से चला और दर्शकों के सिर चढ़कर बोला।

0: बिल्कुल भैया, सही कहा आपने। और इसके अलावा दूरदर्शन पर जब दादा दादी की कहानियां आती थीं और विक्रम वेताल आया करता था नेमचंद भैया,
1: जी
0: तो उसमें भी बड़ा मजा आता था, क्योंकि सारे बच्चे सब पहले से इकट्ठे होकर बैठ जाया करते थे। और आपको बताएं कि 1986 के आसपास रामायण और महाभारत भी शुरू हुआ, तो भई पूछिए मत नेमचंद भैया, उसको भी सब लोग इतने शौक से देखा करते थे कि बस क्या ही कहने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उस समय क्या था, टेलीविजन सबके घरों में नहीं था, तो आसपास तक के लोग देखने के लिए जाते थे आस पड़ोस में। और आलम यह था कि उस समय कहीं कहीं तो जिस दिन रामायण महाभारत आती थी उस दिन महिलाएं घर को गोबर या पीला से लीपती थीं और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रसाद बंटता था।
0: बिल्कुल
1: भाई कैसा रहा होगा,
0: सही,
1: कैसा रहा, ये सोच करके कभी कभी इतना बढ़िया लगता है भाई, क्या बात थी। जी
0: और
1: बच्चों,
0: जी
1: कहते हैं कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। याद रखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टीवी चैनल है, ठीक है? आपका कुछ तो ज्ञान बढ़ा। याद रखिए, जो दूरदर्शन है वो भारत का राष्ट्रीय टीवी चैनल है और ये सरकार और आम जनता के बीच एक पुल का काम करता है। दूरदर्शन पर भी तमाम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं, जैसे मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, धारावाहिक हैं, नाटक हैं। और नाजमा दीदी, कभी कभी मैं तो वो जो खेती फसलें लहलहाती हैं ना, डीडी किसान,
0: जी
1: अरे
0: जी अरे
1: आनंद आ जाता है बिल्कुल। कभी
0: और
1: कभी हम जंगल में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब टीवी खोलते हैं और डीडी किसान देखते हैं, अरे वाह वाह वाह वाह वाह। इसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं।
0: अब तो हरी भरी फसलों से लहलाता हुआ किसान चैनल और डीडी भारती सहित कई चैनल्स उपलब्ध हैं नेमचंद भैया,
1: जी
0: और दूरदर्शन की पहुंच देश के अधिकांश जनता तक है। देश में जब लॉकडाउन था ना, तब भी दूरदर्शन ने बहुत कमाल के कार्यक्रम दिखाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना।
1: बिल्कुल
0: और बच्चों, आजकल दूरदर्शन पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के अलावा दूरदर्शन के जो बच्चों से संबंधित कार्यक्रम देखने हैं, उनसे सीखिए, बहुत कुछ सीखिए, बहुत कुछ समझने को जानने को मिलेगा। इसमें जो है आपको देखिएगा, टाइम टेबल भी बनाना सिखाएंगे और कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे। जब आप स्कूल जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें एक लेकर चल रहे हैं ताकि बच्चों को स्कूल में मदद मिले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हमारे कार्यक्रम से कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़ रहे हैं, तो इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या क्या मीठी मीठी बातें की हैं, आइए सुनते हैं। कहा आपका नाम बच्चे?
2: कीर्ति शर्मा। टेंथ।
1: कीर्ति शर्मा, बड़ा सुंदर आपका नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बहुत अच्छे। तो हर बालिका का एक सपना होता है कि बड़े होकर आगे चलकर मेहनत करके मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, तो आपके कैसे सुंदर विचार हैं, कहाँ तक जाने का मन बनाया है, क्या बनना चाहती हैं?
2: एयर स्टेज का कोर्स करना चाहती हूँ,
1: जी
2: उसी में जाना चाहती
1: जी। बहुत अच्छे। और भी तमाम सारे विभाग हैं सरकार के, बहुत सारे कार्यालय हैं, संस्थाएं हैं, तो इसी में जाने का आपने इरादा क्यों किया, क्या वजह है इसके पीछे?
2: मैं बचपन से सोचती थी एयर होस्टेज करने का।
1: जी बहुत अच्छे, आपके सुंदर सपने अवश्य पूरे होंगे। तो ये बताइएगा कि कहीं घूमने गई हैं आप?
2: जी।
1: कहाँ घूमने गई थी?
2: वृंदावन।
1: तो वृंदावन में आपने क्या क्या देखा?
2: वहाँ पर जब मैं गई थी तो मुझे वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मंदिर थे, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छा था बांके बिहारी, जहाँ पे दर्शन करने गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन को शांति थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था।
1: बहुत अच्छे। अच्छा, विद्यार्थियों के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, किसी काम की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक जागरूक छात्रा होने के नाते जो बच्चे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं धैर्य के बारे में बताना चाहूंगी कि जीवन में हमेशा सदैव धैर्य से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम नुकसानदायक होता है और कभी कभी हमारे बने बनाए काम जल्दबाजी में बिगड़ जाते हैं। धैर्य के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे भगवान राम जी ने जब वनवास पर गए थे तो उन्होंने बड़े धैर्य से काम लिया और 14 वर्षों तक वनवास काटा। ये अपने आप में बड़ी बात है। स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े धैर्य से काम लिया, देर भले लगी लेकिन 1857 से शुरू हुई लड़ाई 1947 में पूरी हुई। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ताकत से अपने बच्चे को गोद में लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने बहुत धैर्य से लड़ी, इतिहास में उनका समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अमर रहे। तो प्रगति जीवन में धीरे धीरे ही होती है। समस्त बच्चों में मैं कहना चाहूंगी कि वे अपने जीवन में धैर्य से ही काम लें।
1: आज क्या सुनाएंगे आप?
2: मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यहाँ।

0: अच्छी। आपका नाम?
1: खुशी।
0: खुशी, आप भी बताइए धैर्य के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: कबीर दास जी का एक दोहा है धैर्य के बारे में, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, माली चाहे सौ घड़े पानी लगा ले पेड़ में, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। इसलिए हम बच्चों को फल की चिंता किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ना ही अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ही इस दुनिया का मालिक है।
0: बातें करते करते बहुत देर हो चली है और थकान भी हो चुकी है, तो थकान मिटाने के लिए अब आपका क्या मन कर रहा है?
2: मनोरंजन का।
0: तो चलिए सब बच्चे मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: देख रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने सुनाया है और आप इस पे ढोलक बजा रही थी। थोड़ा आगे आ जाइए आप। आपका नाम बेटा?
1: लकी।
0: तो इतना बढ़िया आप ढोलक बजा रही थी, हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी इस कार्यक्रम को आकाशवाणी बरेली के माध्यम से सुन रहे थे, सुनते ही रह गए कि इतना बढ़िया ढोलक बजाना आपने कहाँ से सीखी है? कहीं ट्रेनिंग ली या फिर घर पर ही सीखी?
1: घर पर ही सीखी थी मैंने।
0: जी, तो और बालिकाएं जो कार्यक्रम सुन रही हैं कि अगर वो कुछ सीखना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, इस बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे?
1: अभ्यास से मतलब कि ये लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, सीख ही जाएंगे।
0: बस दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी प्लानिंग ही सफलता का आधार होती है और

0: हमारी प्लानिंग अगर बढ़िया होगी तो हमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। इस बारे में और बच्चों के विचार जानते हैं। आपका नाम?
1: मेरा नाम जीना है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं नेकपुर बरेली में रहती हूँ।
0: एक अच्छी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं सफलता पाने के लिए?
1: भैया, एक अच्छे विचार ही हमें आपको और सब कुछ मंजिल तक ले जाते हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि एक अच्छी प्लानिंग ही सफलता का आधार बनती है। जितना हमारी अच्छी प्लानिंग होगी और उतना ही बढ़िया हमारा रिजल्ट आएगा। खास तौर से मैं पढ़ने वाले बच्चों से यह कहना चाहूंगी कि वह खूब सोच समझकर प्लानिंग के तहत टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करें। और हाँ, पढ़ाई के साथ ही साथ आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको अच्छे से कवर करते चलें। साथ ही साथ अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान, इतिहास सभी के बारे में खूब जानें और समझें, क्योंकि अगर आप चलकर किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो हमें यह सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं।
0: बड़ा होनहार बालिका आप हमारे माइक्रोफोन के सामने बैठी हुई हैं। बच्चे अपना नाम बताइए।
2: सेजल
0: यादव आपका नाम है। आपके परिवार में और कौन कौन है?
2: भैया, बहन और बड़ी फैमिली।
0: अच्छा, शौक क्या क्या है आपके?
2: सिंगर बनना।
0: सिंगर बनना आपको बहुत पसंद है, तो कैसे आपके मन में आया कि मुझे एक मजा हुआ गायक कलाकार बनना है?
2: सिंगर बनना मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनते भी अच्छा लगता है और गाते हुए भी अच्छा लगता है।
0: जी, हमारे देश में बहुत विख्यात कलाकार हुए हैं, बात चाहे लता मंगेशकर जी की हो, अनुराधा पौडवाल जी की हो, सोनू निगम की हो, तो इतने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, इनसे आपको कुछ ताकत मिलती है?
2: हाँ, उनके गाने सुन के शांति मिलती है, अगर देशभक्ति के ऊपर हो और वैसे भी अच्छे लगते हैं गाने।
0: किस तरह का संगीत आपको पसंद है?
2: देशभक्ति गाने भी अच्छे लगते हैं और आधुनिक भी।
0: दोनों तरह का गीत संगीत आपको बहुत पसंद है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो आप कह रही हैं कि मुझे एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए हमें शुरू से क्या क्या करना चाहिए?
2: अपनी आवाज को कंट्रोल में करना चाहिए, मतलब आवाज को अच्छे से अच्छे निकालने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए रिकॉर्डिंग करके।
0: जी, आपने देशभक्ति गानों का नाम लिया, तो किन्हीं दो चार ऐसे गानों के नाम बताइए जो आपको बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत ताकत देते हैं।
2: एक तो है वो देश मेरे तेरी मिट्टी में मिल जावा।
0: अब अगले बच्चे का रुख करते हैं, और बेटा आप भी आगे आइए। क्या नाम है आपका?
3: निधि मिश्रा।
0: आपको इतिहास के बारे में जानकारी है?
3: जी।
0: बहुत अच्छे। आप ये बताइएगा कि ये मोहन जोदड़ो क्या है?
3: जी, मोहन जोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहर मोहन जोदड़ो एक मृतकों का टीला है। यह एक बहुत बड़े टीले नुमा है। हजारों साल पहले इस शहर में पक्के हार थे, जो मोहन जोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शहर था।
0: बहुत अच्छे। और अगले बच्चे का रोक करते हैं। आपका नाम?
4: अर्पिता पाठक।
0: अर्पिता पाठक, बहुत बढ़िया आपका नाम है। एक दोहा है, कनक कनकते सौ गुनी, मादक का अधिकार, या खाए बोरा जग या पाए बोरा, इसका अर्थ क्या है?
4: एक कनक मायने सोना व दूसरे कनक मायने धतूरा है। सोना अर्थात धन का नशा जो है वह धतूरा नशीली वस्तु से कई गुना अधिक होता है, इसलिए नशीली चीज खाने के बाद ही नशा होता है और धन आते ही नशा अर्थात घमंड हो जाता है। यहाँ पर अलंकार की अगर बात करें तो यमक अलंकार है, जहाँ किसी पंक्ति में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ हो और दोनों का अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ दोनों कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है।
5: तो नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों, हम आपको इसी कड़ी में जोड़ रहे हैं एक और छात्र को। तो क्या नाम है आपका?
6: अनुभव प्रजापति। मेरे पापा का नाम अशोक कुमार और मम्मी का नाम विशेष रेखा है।
5: अच्छा, तो कौन से क्लास में आपने फर्स्ट डिवीजन पास किया है?
6: 12th।
5: कौन कौन से विषय थे आपके पास?
6: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल हिंदी और इंग्लिश।
5: और आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन सा रहा?
6: मैथ।
5: मैथ में कितने मार्क्स आए आपके?
6: 91।
5: भाई वाह, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। तो अक्सर हमने सुना है बच्चों को कि कहते हैं मैथ बहुत टफ होती है, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे?
6: मैथ में टफ तो कुछ होता नहीं है, मैथ तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आता है मैथ करते हुए।
5: अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए, किसी भी चीज को हम सीखेंगे तो सीखना हर चीज को आसान बना देता है ना?
6: शुरू करो, एंड अपने आप होता जाता है।
5: वाह वाह, क्या बात आपने कह दी है कि शुरू करो एंड अपने आप होता जाता है, यानी कि आप शुरुआत तो करिए किसी भी काम की, सीखते सीखते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना? तो ये बताइए, आपने इतने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए कैसे पढ़ाई की? अपना जो है शेड्यूल बताइए।
6: टॉपिक वाइज पढ़ते थे कि जो टॉपिक पढ़ना है उतना पढ़ना है बस।
5: अच्छा,
6: ना उससे कम पढ़ना है ना उससे ज्यादा।
5: अच्छा, मतलब आपने एक टाइमिंग के

0: हिसाब से अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ था विषयों के हिसाब से।
1: हाँ कि हमें मतलब आज मतलब जितना हमें पढ़ना है उतना हम मतलब सुबह सोच लेते थे कि आज इतना खत्म करना है तो उतना खत्म करना है बस, टाइम के हिसाब से नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए।
0: अच्छा, भाई देखिए, एक समय को लेकर आप चले हैं, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, तो उस समय की हमको कद्र करना चाहिए। जिसने समय की कद्र नहीं की तो जो है समय उसकी कद्र नहीं करता है। तो यही बात हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के हिसाब से हर चीज को इन्होंने डिवाइड कर दिया था, अपने विषयों को डिवाइड कर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पढ़ाई की है। तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ क्या सोचा है?
1: आगे इंजीनियर।
0: इंजीनियर आप बनने चाहते हैं। आकाशवाणी परिवार की बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ, आप इंजीनियर बने। और नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप?
1: उन्हें अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अभी पढ़ाई करने का टाइम मिला है तो पढ़ लो, वरना समय के पास इतना समय भी नहीं है, वो तुम्हें दोबारा समय दे।
0: बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों, हम आपको बता दें, एक और मेधावी छात्रा हमसे जुड़ने जा रही हैं। चलिए उनसे पूछते हैं वो कहाँ से बात कर रही हैं। तो क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आद्रिका चौधरी है।
0: अद्विका चौधरी।
2: हाँ।
0: अच्छा, और अपने पेरेंट्स का नाम बताइए।
2: मेरे फादर का नाम धनेंद्र कुमार सिंह है और मेरी मदर का नाम दीपिका राज है।
0: अच्छा, कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं?
2: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: मैं दिल्ली कैंट से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, दिल्ली कैंट से बात कर रही हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं इस टाइम?
2: इस टाइम मैं 6th क्लास में हूँ।
0: अच्छा, तो पिछली वाली जो कक्षा आपने पास की है तो वो 5th क्लास की है ना?
2: हाँ,
0: अच्छा, कौन से बोर्ड से पढ़ाई की है आपने?
2: CBSE बोर्ड। हाँ।
0: अच्छा, चलिए। और ये बताइए कैसी ये परसेंटेज रही आपकी 5th क्लास में?
2: मेरी परसेंटेज 90% थी।
0: 90%।
2: हाँ।
0: अरे वाह भाई, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी खुशी हुई है जानकर। कैसी होनहार बालिका हमसे बात कर रही हैं। ये बताइए, आप अपने पढ़ाई का शेड्यूल आपका कैसा रहता था?
2: मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था, मतलब एक ही टाइम पे होता था, जो टाइम था मेरा करने का उसी टाइम पे होता था।
0: अच्छा, तो ये बताइए कितना समय देती थी आप पढ़ाई को?
2: मैं 3 या 4 घंटे देती थी पढ़ाई को। हाँ,
0: अच्छा, तो इस बीच आप खेल भी खेलती थी?
2: मतलब इस दौरान मैं स्केट चलाती थी। मेरे को आउटडोर गेम्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से, जैसे आउटडोर गेम कौन कौन से?
2: मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है और बास्केटबॉल अच्छा लगता है।
0: अच्छा, स्केटिंग, खूब स्केटिंग कर लेती हैं आप?
2: हाँ, मैं कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ।
0: अच्छा, डर तो नहीं लगता है आपको?
2: नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता है।
0: किससे सीखी?
2: मैं खुद से सीखी।
0: अच्छा, तो शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोट लगी होगी, गिरी होंगी आप?
2: हाँ, कई बार गिरती थी, उठती थी, वापस से चलाती थी।
0: हाँ भाई, देखिए कोई भी चीज, देखिए हमसे जो है ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए और सीखने का हौसला होना चाहिए, है ना? हम किसी भी चीज को जब आसानी से सीख लेते हैं तो वो हमें मुश्किल नहीं लगती और फिर वो आसान हो जाती है और फिर हम सीख भी जाते हैं, है ना?
2: हाँ,
0: बहुत
2: बिल्कुल।
0: अच्छी बात आपने बताई है। तो ये बताइए आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं?
2: मैं आगे चलकर हाई कोर्ट जज बनना चाहती हूँ।
0: अच्छा, आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, मम्मी पापा ने या टीचर ने, किसने?
2: सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया।
0: अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी क्या कहती थी पढ़ाई को लेकर के?
2: मम्मी बोलती थी कि पढ़ाई के साथ साथ तुम अपने स्पोर्ट पे भी ध्यान दिया करो।
0: अच्छा, तो मतलब आपने स्पोर्ट को भी ध्यान में रखा और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया, है ना? तो देखिए दोनों चीजों का बैलेंस आपने बहुत अच्छे से बनाया। तो देखिए पढ़ाई में भी कितनी अच्छी आपकी परसेंटेज आई है ना? तो मम्मी तो बहुत अच्छी होती है ना, और मम्मी हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं तो हमें उनका कहना मानना चाहिए। तो ये बताइए, आकाशवाणी से अंकुर कार्यक्रम तो आप दिल्ली में आसानी से सुन लेती होंगी ऐप के द्वारा?
2: हाँ, मैं आसानी से सुन लेती हूँ, मैं हमेशा सुनती हूँ।
0: तो चलिए, आकाशवाणी के अंकुर कार्यक्रम से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो नेमचंद भैया, देखा
3: जी
0: आपने कि कितने नन्हे मुन्ने बाल दोस्त और कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई किया, समय के हिसाब से देखिए कैसे डिवाइड किया। तो बच्चों को ये चाहिए कि अपने जितने भी विषय हैं और एग्जाम आ रहे हैं, अच्छी परसेंटेज के लिए

0: आप जो है विषयों को समय के अनुसार डिवाइड कर दें और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें।
1: बिल्कुल बच्चों, आज विश्व दूर संचार दिवस है। जरा सोचिए, अगर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन सहित अन्य प्रकार के संचार माध्यम नहीं होते तो आज हमारा आपका क्या होता? बड़ी सुनसान, कोलाहल से दूर और बहुत सादगी भरा जीवन हम आप बिता रहे होते। टेलीफोन का आविष्कार क्या हुआ, आप ये समझिए कि संचार की एक क्रांति आ गई। पहले और पहले, बहुत पहले की अगर बात करें तो दुनिया में टेलीफोन का आविष्कार कर संचार क्रांति लाने का जो श्रेय है वो महान वैज्ञानिक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है। तो नाजमा दीदी
0: जी, भैया
1: संचार क्रांति की बात चली तो क्या कुछ समझ में आया?
0: अरे हेमचंद भैया, बिल्कुल समझ में आया। विश्व दूर संचार दिवस, तो आज सभी प्यारे प्यारे बाल दोस्तों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज डिजिटल संचार क्रांति के युग में हम अपनी वॉइस, फोटो और तमाम चीज़ें देखिए पलक झपकते ही इधर से उधर भेज देते हैं। भाई आज संचार क्रांति और डिजिटल क्रांति का भी कमाल है हेमचंद भैया, है ना,
1: कमाल है।
0: कि आप हमें सुनने के साथ ही देखिए कि देख भी सकते हैं। आज सोशल मीडिया का इतना जबरदस्त क्रेज है कि हम आप अपने लिए जो भी जरूरी है वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, है ना। और बात ऑनलाइन शिक्षा की हो या तकनीक की, ये समझिए कि अब इंटरनेट और सभी तरह के संचार माध्यम हमारे दोस्त बन चुके हैं।
1: बिल्कुल बन चुके हैं। और आपने कहा कि देख भी सकते हैं।
0: बिल्कुल देख सकते हैं,
1: लेकिन ये तो देखने को मिला नहीं होगा हमारे सुनने वालों की नाजमा दीदी केला लाए भी है।
0: देखिए और भी तमाम चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: अच्छा,
0: जब चीजें लाएंगे और दिखाएंगे तो देखेंगे भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों, विश्व दूर संचार दिवस यही कहता है कि डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से हमें आपको जो जरूरी है उसे समझें, संवाद करें, सीखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम आप जो कुछ देश में बदलाव हो रहे हैं, दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में जानें। बच्चों, दूर संचार दिवस दूर संचार परिदृश्य को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और कितना हम आज बदल गए हैं, कितना फास्ट हो गए हैं, कितना जागरूक हो गए हैं, ये सब कहाँ से सीखने को मिला हमें? ये काहे की देन है नाजमा दीदी? ये देन है दूर संचार की।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। अब आप देखिएगा, आपको हारमोनियम बजाना सीखना है, ढोलक बजाना सीखना है, गाना गाना सीखना है, अरे भाई खोलिए और एकदम जो है आप सीखने लगेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जसोमती मैया से बोले नंदलाला, एकदम आप सीख जाएंगे।
0: और मतलब ये कि अगर सरलता से एक दूसरे से अपने विचारों को, शिक्षा संबंधी जरूरतें और तमाम सही जो भी चीजें हैं निमचंद भैया, साझा करें उन चीजों को भी, तो देखिए कितनी आसानी से हम उन सब चीजों को सीख लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और नाजमा दीदी
0: जी, भैया
1: क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत अब हम बच्चों को बता रहे हैं कि भूकंप क्यों आते हैं? तो क्यों आते हैं भूकंप, कैसे आते हैं भूकंप और क्या सावधानियां हैं, इसके बारे में आज अंकुर की पाठशाला में आसानी से समझिए।
0: भाई क्या बात है। चलिए बच्चों, पृथ्वी जो है कई बड़ी बड़ी चट्टानों जैसे चट्टानी प्लेटों से बनी है, यानी कि कई परतों से। ये प्लेटें धीरे धीरे लगातार चलती रहती हैं। कभी कभी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तभी एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। इस दौरान ऊपर नीचे फिसलने और टकराने के कारण निमचंद भैया कंपन पैदा होता है। इसी के साथ जब ये लॉक हो जाती है तो दबाव से क्या होता है, ऊर्जा पैदा होती है और झटके महसूस होते हैं। और फॉल्ट लाइनें यानी दरारों पर चट्टानों के अचानक टूटने या सरकने से जमीन हिलती है बच्चों, इसी को भूकंप कहते हैं। कहाँ और किस जगह कितनी तेजी से झटके महसूस किए जाते हैं, ये रिक्टर पैमाने से पता चलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों, जिस स्थान से भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसके ठीक ऊपर धरती की सतह पर जो स्थान होता है उसे उपकेंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप हम आपको ये भी बता दें कि उपकेंद्र के पास सबसे अधिक झटके महसूस होते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता भी अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि वे बच्चों को बताएं कि लाला डरिए मत।
0: और निमचंद भैया ये भी हम बता दें कि भारत में कई ऐसी जगह हैं बच्चों जहां भूकंप अधिक आते हैं और भूकंप संवेदनशील इलाका माना जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। समय समय पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हल्के और मध्यम भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा असम है, भुज है, गुजरात का कच्छ है, ये क्षेत्र अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। दिल्ली भी इसी क्षेत्र में मानी जाती है क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र के काफी करीब है। और निमचंद भैया, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भारत में भूकंप की निगरानी करता है। भूकंप

0: तो बच्चों घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। जहां तक हो जल्द से जल्द मजबूत मेज हो या कोई ऐसा पटला हो या कोई ऐसी अलमारी हो उसके नीचे छिप जाना चाहिए। इसके अलावा पास में अगर आपके खुला मैदान है तो जल्दी से भागकर वहां चले जाएं। ऐसे समय में लिफ्ट का तो उपयोग बिल्कुल भी ना करें
1: बिल्कुल,
0: नंचन
1: तो ये
0: भैया।
1: बताइएगा आप, अच्छा रेडियो में पक्षियों को बुलाएं?
0: बिल्कुल बुलाइए।
1: चलिए बुलाते हैं। तो सवाल नोट करिएगा, पहला सवाल आपके लिए है, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए है, अभी हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। तीसरा सवाल आपके लिए है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। और अगले प्रश्न में एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, इसका अर्थ बताइएगा, वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और मुहावरा है, रस्सी जल गई पर ऐठ ना गई। और आखिरी प्रश्न में हम आपको कुछ पक्षियों की आवाज सुनवा रहे हैं, इन आवाज को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और किसी एक पक्षी का नाम बताइएगा।

0: तो नेमचंद भैया,
1: जी
0: ये तो कई सारे पक्षी हो गए, और आप
1: जी
0: नन्हे मुन्ने बाल दोस्त बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि किन किन पक्षियों की आवाजें सुना दी
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो बच्चों, अब बारी आ गई है। पिछले संडे को हमने जो 5 सवाल पूछे थे उनके जवाब देने की। पहला सवाल हमने पूछा था कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना था। तो बच्चों, इसका उत्तर है बहुत शोर मचाना। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था, बुलाई शब्द किस खेल से संबंधित है बच्चों? तो ये है निशानेबाजी से। और तीसरा प्रश्न था कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है ऑडियोमीटर। चौथा प्रश्न था, माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? बच्चों, नेपाल और चीन। पांचवा और आखिरी प्रश्न था, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो बच्चों, इसका उत्तर है नर्मदा
1: और
0: नदी।
1: नाजमा दीदी, हम देख रहे हैं आपने गाना निकाल लिया।
0: भाई,
1: तो चलिए
0: एंजॉयमेंट होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: निमचंद
1: चलते
0: भैया।
1: चलते सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। नजमा दीदी, बच्चों के बीच से जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चली है। और अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की ओर है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय आकाशवाणी के बरेली केंद्र को अवश्य बताइएगा। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2433001। और निमचंद भैया
0: जी,
1: नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को अब अलविदा कहने का समय हो चला
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल, अंकुर कार्यक्रम का आज का ये सुहाना सफर बस यहीं तक। आगे लेते हैं। नमस्कार।

0: साथियों, तो यही था आज का अंकुर। उम्मीदों, मुस्कानों और खूबसूरत एहसासों से सजा एक छोटा सा सफर। अब दीजिए इजाजत। हाँ, उससे पहले बता दें, आज के कार्यक्रम में आपके साथ थे आपके प्रिय भैया नेमचंद और प्रिय दीदी नाजमा। अब इस कार्यक्रम से दे इजाजत। 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम अब आपको सुनवा रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: श्रोताओ नमस्कार, मेरे साथ हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार और कार्यक्रम है स्वस्थ बचपन। एक बार फिर स्वस्थ बचपन कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं के साथ।
6: पांडे जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब, जो नवजात शिशु हैं उनकी गंभीर बीमारियां कौन कौन सी हैं?
6: देखिए, नवजात शिशु जब पैदा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत सांस लेना शुरू करे।
5: जी,
6: तो जब बच्चा पहली सांस लेना शुरू करता है तो रोने के साथ शुरू करता है और उस रोने का बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और वो जब रोता है तो सांस अंदर खींचता है
5: जी,
6: और उसके फेफड़े खुलना शुरू होते हैं, वो अपनी सांस लेना शुरू करता है।
5: अच्छा।
6: जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ पर सांस अपनी नहीं लेता।
5: हाँ।
6: माँ के जरिए ही उसको ऑक्सीजन सब मिलती है और सारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई से माँ से होती है,
5: यानी शरीर की सारी जरूरतें माँ के गर्भनाल के द्वारा उसे पूरी हो रही होती हैं।
6: लेकिन शिशु जैसे ही पैदा होता है तो उसको अपनी सांस लेनी पड़ती है और वो सांस प्रॉपर आनी चाहिए। जैसे लैंडिंग किसी भी प्लेन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे शिशु की लैंडिंग इस दुनिया में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पैदा होने के बाद शिशु को तुरंत रोना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश या तो गर्भ में पहले से कुछ दिक्कत थी, माँ को दिक्कत थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था या शुगर की तकलीफ थी या कई बार थायराइड की प्रॉब्लम थी या ब्लड ग्रुप ऐसा था कि जो इनकम्पेटेबल हो बच्चे के साथ, तो उस समय अगर माँ बीमार थी उसकी वजह से या फिर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, कई बार एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी की मात्रा कम हो गई या कई बार पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गई, या फिर कुछ माँ होती हैं जिनकी कुछ कारणों की वजह से हमेशा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, तो उस समय बच्चा पैदा होने के बाद एक खतरे में होता है कि वो अपना ठीक से जीवन शुरू कर पाए ना।
5: जी जी,
6: तो उन बच्चों में आपको वहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि बच्चे को रिवाइव कर सके।
5: डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने

0: कहा कि बच्चा जब पहली बार इस दुनिया में आंखें खोलता है तो आंखें खोलते ही उसको सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है और वो रोने के साथ
1: शुरुआत करते
0: हैं। जी, यानी रोते हुए आते हैं सब। ये बकरी बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और रोने के साथ भले ही जीवन की शुरुआत होती हो, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है। अगर बच्चा तुरंत रोया है तो, अगर नहीं रोता है तो
1: वो माँ बाप को रुला देता है।
0: जी,
1: जो बच्चा अगर पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोता तो बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में और माँ बाप के जीवन में भी आने की संभावना रहती है। क्योंकि उस समय बच्चा ना रोने की वजह से उसके जो ब्रेन को असर पड़ता है, दिमाग को जो असर आता है, उसके बाद कई बार बच्चों को एनसेफलोपैथी हो सकती है, हाइपोक्सिक इच्छी में एनसेफलोपैथी, जिसकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो

0: टॉक्सिक इच्छी में कैंसर लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं
1: जी।
0: और वो जीवन पर्यंत उस बच्चे के लिए नुकसान दे सकते हैं। जैसे उन बच्चों में फिर देर से बैठना, देर से बोलना, देर से चलना, या कई बार बोल नहीं पाना, या उन मेंटली डिसेबल हो जाना
1: जी,
0: है ना। तो शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से विकलांग हो सकते हैं बच्चे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पैदा होते ही रोए। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही तुरंत नहीं रो रहा है, उसको रिसस्टेशन करना पड़ता है, जिसको हम CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। और उसके बाद बच्चे को, क्योंकि बच्चा ने सांस खराब थी या सांस ली नहीं, इन बच्चों को फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर्स वो मशीन है जो बच्चे को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सांस देने के काम आता है।
1: डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर की बात भी विस्तार से आपसे करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे वो गीत जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं जस्ट अभी।
0: एक गीत है किशोर कुमार की आवाज में, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए,
1: गौतम गोविंदा फिल्म का गीत हम सुनवा रहे हैं श्रोताओं आप सभी को। डॉक्टर

0: सर आपने वेंटिलेटर की बात की, तो क्या वेंटिलेटर के इस्तेमाल से बच्चों में जिस तरह की समस्याएं जीवन पर्यंत हो सकती हैं, उन समस्याओं को होने से हम बचा सकते हैं अगर इन बच्चों को वेंटिलेटर जैसी मशीन की सुविधा मिल जाए?
1: तो वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाए, उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसका तुरंत रेसिस्टेशन हो
0: जी,
1: क्योंकि 3 मिनट के बाद अगर किसी बच्चे को हाइपोक्सिया रहता है तो उसका ब्रेन के जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो विद इन 3 मिनट्स उसको रिवाइव करना जरूरी होता है।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या कोई हेल्थ वर्कर है जो बच्चे को रिवाइव कर सके, और उसके बाद कंटिन्यूस करने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम तो CPR देना है, जिससे बच्चा रिवाइव हो, बच्चे में सांस आना शुरू हो, बच्चे का दिल की धड़कन ठीक होना शुरू हो।
0: जी,
1: कोई भी बच्चा जो पैदा होता है तो उसके दिल की धड़कन 100 पर मिनट से अधिक होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: और सैचुरेशन उसका 5 मिनट में 90 से ऊपर आ जाना चाहिए। बच्चे का सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, बच्चा प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, इरेगुलर जर्क की ब्रीदिंग है, उसकी सांस खराब है, या बच्चा किनार है, तो इन बच्चों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। जो नवजात शिशु के वेंटिलेटर्स होते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उनमें जो मिनट वेंटिलेशन है या टाइडल वॉल्यूम है बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: तो उनकी जो फ्लो सेंसर्स होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि उनके जो आप वेंटिलेट कर रहे हैं बच्चे को, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत फाइन होना चाहिए।
0: जी जी,
1: तो नवजात शिशुओं के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड हैं
0: जी
1: नवजात शिशुओं के।

0: यानी जो बड़ों के वेंटिलेटर हैं बच्चों के वेंटिलेटर हैं वो अलग अलग होते हैं,
1: अलग हैं, और बड़े वाले वेंटिलेटर्स बच्चों में इस्तेमाल नहीं किए जाते।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा कि जो वेंटिलेटर मशीन है ये क्या मदद करती है बच्चे को, क्या सिर्फ सांस में ही मदद करती है, कुछ और भी कार्य हैं इसके?
1: देखिए, जीवन के लिए दो चीज़ बहुत जरूरी है, एक सांस लेना, एक दिल का काम करना।
0: जी,
1: तो अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो थोड़ी देर में दिल पे भी बुरा असर आने लगता है और दिल भी काम करना छोड़ देता है।
0: जी जी,
1: तो जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सांस लेना है।
0: जी,
1: तो जो वेंटिलेटर मशीन काम करती है वो सांस में काम करती है।
0: अच्छा।
1: हम सांस के द्वारा क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं।
0: जी,
1: तो वेंटिलेटर ये दोनों काम करता है, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का। तो जो बच्चे के हिसाब से आपको वेंटिलेटर मशीन सेट करनी होती है कि कितने रेट पर देना है, कितना उसका TI रखना है, मतलब इंस्पिरेटरी टाइम रखना है
0: जी,
1: कितनी FiO2 देनी है, कितनी ऑक्सीजन देनी है, और कौन सी मोड पे आपको चलाना है, कितना प्रेशर देना है, कितना पीप देनी है, ये सब बातें बच्चे के वजन के हिसाब से और बच्चे की कंडीशन देख के हम लोग तय करते हैं, फिर बच्चे को मशीन पे लगाते हैं, उसके बाद वेंटिलेट करते
0: हैं। जी, आपने इतनी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि कितने परसेंट क्या देना है, क्या करना है, मशीन को कैसे चलाना है, लेकिन नर्सरी में या जहाँ पर बच्चे भर्ती रहते हैं वहाँ हर समय तो आप रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ें कौन चलाता है, क्या जो लोग हैं वहाँ पर वो सब ये सब बातें जानते हैं?
1: जी, आपका उसके लिए ये बहुत ज़रूरी कि आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट हो, आपके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो वो इन सब बातों को समझते हो, और हाउ टू वेंटिलेट, कैसे वेंटिलेट करना है, क्या सेटिंग देनी है, और सब कंडीशंस को जानते हुए फिर एसेप्सिस भी बहुत मेंटेन करना कि कोई इन्फेक्शन आप हॉस्पिटल से इंट्रोड्यूस ना कर दें।
0: जी जी,
1: क्योंकि उसको अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, आपने इंट्यूएट कर भी लिया, बच्चा बचा लिया, तो बाद में वो सेप्सिस में चला जाने पे उसको फिर से नुकसान होता।
0: जी,
1: तो इन सब बातों को लिए ज़रूरी कि आपका स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट हो, इतना समझदार हो, और जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। कि डॉक्टर्स तो जाते हैं, राउंड लेते हैं, सुबह शाम देखते हैं, दिन में दो बार देखते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो मॉनिटरिंग आपका नर्सिंग स्टाफ करता है। तो दे शुड बी कैपेबल एंड दे शुड बी कॉम्पिटेंट।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आजकल तो तकनीक का दौर है, आप कहीं भी हों, अगर आपको चिंता है और देखना है कुछ भी, तो आप कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल फोन में कहीं भी देख सकते हैं,
1: कैमरे देख सकते हैं। दूसरा, आप मॉनिटर्स जो होते हैं वो भी आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो किसी बच्चे को आप क्या सेटिंग चल रही है, क्या आप उसके वाइटल्स आ रहे हैं, वो आप सब चेक कर सकते हैं।
0: जी जी, और उसी हिसाब से अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देकर
1: वीडियो कॉल करके भी आप बच्चे को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
0: जी, तो जो नवजात शिशु है उसके इलाज में वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित ही वेंटिलेटर की है, लेकिन उससे ज़्यादा भूमिका है उन लोगों की जो उस वेंटिलेटर को चला रहे हैं और उसको वॉच कर रहे हैं, बच्चे का इलाज कर रहे हैं।
1: वैसे ही जैसे पायलट चाहिए आपके लिए
0: जी,
1: किसी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, है ना
0: जी,
1: एयरक्राफ्ट आप खरीद लो, उसके बाद आपके पास पायलट नहीं, आप खुद तो चला नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपके लिए ऐसे स्टाफ का बहुत अच्छा होना जरूरी है।
0: जी, और अब जरूरी है हमारे इस प्रोग्राम के लिए एक और गीत जो आप सुनवाने वाले हैं।
1: एक गाना है चल अकेला मुकेश की आवाज में,
0: संबंध फिल्म का गीत। श्रोताओ, हम आप सभी को सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर, और अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए,

0: से गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। कुछ ही क्षणों में हम रिले कर रहे हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज बोल है गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार्खा फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी, मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट ये

वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उधास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उधास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अंदर। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के दीवाने अनोखे लाल मौर्य को।
1: आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो चुके हैं, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। और वैसे मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूं और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। वैसे मैं 50 साल से आकाशवाणी को सुन रहा हूँ। वैसे ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस है, वेद भारती है, सीलॉन है, सभी मैं सुनता था। पहले बिना का गीतमाला सीलॉन से आता था, 7:30 बजे शाम को लगाने बैठ जाता था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा। संगीत सितारे कार्यक्रम आता था, बिना का गीतमाला, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलते थे। और वैसे आकाशवाणी रामपुर भी सुनता था, नजीबाबाद भी सुनता था, लखनऊ भी सुनता था और दिल्ली भी सुनता था। और सबसे 1993 से आकाशवाणी बरेली से मैं जुड़ा हूँ, और सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और मैं बराबर सुनता हूँ। वैसे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आकाशवाणी की नमस्ते बरेली कार्यक्रम है और रसधारा कार्यक्रम आता है और आपकी पसंद कार्यक्रम आता है, अनुरोध गीत कार्यक्रम आता है, नारी संसार कार्यक्रम आता है, किसान वाणी आता है, युग वाणी कार्यक्रम आता है। सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, जितनी तारीफ की जाती कम है। आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARREILLY akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने

0: लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 बजकर

10:05 हो गए हैं और आपको इंतजार होगा अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद का। एकदम डायरेक्ट बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम में मैं आपका दोस्त संजय आपके साथ रहूंगा।

चंदा ओ चंदा। जी हाँ, ये गाना है लता मंगेशकर साथियों की आवाजों में, फिल्म है लाखों में एक। सुना चाहे पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव सत्यमानंद, बोड़ागाची पश्चिमी बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत, बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत, गरिमा और बगड़िया परिवार के सभी लोग, पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव यादव, दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र के, रितिका मिस्कीन, वानी अरलब, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी और उनके सभी परिवारीजन। ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक खुशबू और ज्योति ठाकुर। चारभाटा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु सत्यार्थ और एबी। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले। दुर्गा कॉलोनी हांसी के राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस निहावकर, निर्मला विशाल। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार, आशीष और उनके बहुत सारे साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बेड़ी मध्य प्रदेश के हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद देव कुमार, नवीन और युवराज साहू। दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा। फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुडी। तो अब इंतजार को यहीं पर विराम देते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद।

अब बारी आती है उस गीत की जिसे लिया गया है फिल्म रफू चक्कर से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, जी हाँ, अब सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का यही गीत। सुना जाए उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। दादाबाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। कस्बा उसाबा बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश करिश्मा और मुस्कान कश्यप। मानपुर साबित मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान।

विकासगंज उत्तर प्रदेश के पवन गौड़, सुयश, आशीष, तन्मय, अपूर्वा और गौड़ परिवार के सभी लोग। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, प्रियांश और भाव्या देवांगन। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, अयान बाबू। गढ़ी कोटाहा पंचकुला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, सानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुसाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर और समीना अंसारी। गांव लोहडडा बागपत से जगमोहन सिंह, प्रजापत, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर, नूतन, भुवनेश्वरी देवी। कराबल नगर दिल्ली से रामनाथ, प्रजापति और सुमन देवी। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आस्थी, जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, नोमान, तनवीर मसरत और सैयद निजामुद्दीन। धोतर जोड़ा आस्थी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। छबीलपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश और गायत्री कश्यप। दूल्हापुर मुरादाबाद के फरमान सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। भूरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी, चिराग सेन। बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ के प्रमोद कुमार साहू, वैभवी, विनोद, बीमा, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संघ ही परिवार।

0: अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। मूवी का नाम जिसका गाना अब आप सुनेंगे महानता, छूले छूले मुझे छूले ये गाना है। सुना जाए कुलड़िया नवाबगंज बरेली के राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज अनमोल, कमलेश, तुलाराम, करण, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार।

शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी, पुराना शहर बरेली के अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेतराम कैलाश, सुनील खुशबू आरोही और स्वाति

पंचकुला सेक्टर 9 आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव और उनके बहुत सारे साथी। राजमाता नगर बुलडांडा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरबड़े, ज्योति, आकांक्षा और अक्ष कुमार। धमतरी छत्तीसगढ़, रामचंद मखीजा और उनके बहुत सारे दोस्त। बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष। अलखनाथ मंदिर बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुटी देवी प्रशांत, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी और रॉबिन भाई।

फरीदपुर बरेली से शुएब शान अरहान आयान अबान रजा असद और उनके बहुत सारे दोस्त। ग्राम पोस्ट नगरिया विक्रम तहसील फरीदपुर बरेली के राजपाल अर्जुन राठौर, अवनीश खन्ना सिंह राठौड़ी, प्रिंस राठौर, सोनी और अनिता राठौर। लोहगढ़ ठाकुरबाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, पुत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। करुला मुरादाबाद के अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रियाना शेख, साथ ही उनके बहुत सारे दोस्त। फाजिल्का पंजाब से खेड़ा परिवार, जिसमें है बिशु खेड़ा, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवांशी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। तो सुनिए आपकी पसंद आपके ही रेडियो सेट पर

जॉनी मेरा नाम, यह है अगली फिल्म का गीत जिसे आप सुनेंगे। सुना जाए संजय नगर ऐशबाग लखनऊ के एडवोकेट वारिस अली खान साहब, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। गांव भटोनी, जिला मदसौर, मध्य प्रदेश के ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा, रियांश, सृष्टि मेहर और उनका पूरा परिवार। बरेली जंक्शन से गरीब भाई विक्की भारद्वाज।

बटंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा, राघव और भानुप्रिया। बिजनौर से आसिफ, अराफात, अदीब और कादिर। राजपुर मध्य प्रदेश के घिसू दिलवारे। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर।

बटेंखेड़ा, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ये हमारे श्रोता पंजाब से। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। सेक्टर 5 सूरत नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और बॉय हिमाच। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत और क्रिस्टी पटवा। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के दिशाद हुसैन और फातिमा सोगरा। श्रीगंगानगर से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क और उनके बहुत सारे परिवार के लोग। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ और बहुत सारे साथी। एटा रोड गंज डुंडवारा से फैसल शेख, नुसरत कैसर, अरमान और अरीफ।

अल्लाहगंज शाहजहांपुर से आरबी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित अभय और यादव परिवार के सभी लोग।

अब चलते हैं अपने श्रोताओं की उन ठंडी वादियों में जहां से आपकी पसंद प्रोग्राम में फरमाइश यानी कि आपकी पसंद हमारे पास आई है। सुनना चाहे इन्होंने दोस्ताना फिल्म का गीत दिल लगी ने दी हवा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा साहब और बिमला अनेजा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल दीपिका गाव्या भाई सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिदान और तुलसी मस्किन साहब। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी। दुबिया नवेदा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय। बरेली के हर दिल अजीज। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी अबरार हुसैन आशिक हुसैन और अल्ताफ हुसैन। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्म मल्होत्रा लाडो कोयल। नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुग्गू भाविक और सिक्का परिवार के सभी लोग। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। करेली बरेली से इशाक अहमद अंसारी अफसार अहमद अंसारी अंसार अहमद अंसारी दिलदार और मोहम्मद आयश मोहम्मद आरिश। अजीत कसाना माया देवी ऋतिक आदित्य कसाना ये हमारे श्रोता है ग्राम बपुस्त लदावली से। नगरिया विक्रम फरीदपुर बरेली से राज सिंह अनारकली यश रूपेंद्र पूजा वंदना दुष्यंत सुमित प्रियंका गार्गी और गोलू। गुन्नौर यूपी के फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा। ये ऐसे नाम पढ़ते हुए कितना अच्छा लगता है आनंद आता है एक ही तरन्नुम के नाम।

सलाम। मध्य प्रदेश के विक्रम मालवीय, रचना कमलाबाई, आकाश, विनायक और उनके परिवार के सभी लोग। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश के लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे।

प्रोग्राम आपकी पसंद का अंतिम गीत जो पहुंचाएगा प्रोग्राम को अपनी मंजिल पर। फिल्म है चिराग तेरी आंखों के सिवा, ये है गाना। सुना जाए टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।

खरगोन सनावत मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, सुदामना नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप,

हिंद राज रेडियो श्रोता संघ तालुका नेभासा खुपटी महाराष्ट्र के बंडू लोहार माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपल घट

रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत और उनके बहुत सारे साथी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक, खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश, बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया, महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक, मोहम्मद दानिश, सादुल शहर राजस्थान के राम कुमार रिवाड़ साहब, चंद्रकला रिवाड़, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा, उगेती से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और साथ में हैं डी के हिटलर, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से रागनी, मुस्कान और विनेश कुमार साहब।

तो दोस्तों अब दीजिए इजाजत, आपकी पसंद का ये खूबसूरत सफर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद है गीतों की महफिल ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। मैं हूं संजय, फिर मुलाकात होगी नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। नमस्कार।

0: 11 बजे हैं और इंतजार होगा हमारे श्रोताओं को कार्यक्रम आपका पत्र मिला इस कार्यक्रम का। लेकर हाजिर हैं, कार्यक्रम प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव साहब की और साथ में हमेशा की तरह आपके पत्रों को बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आप लोग के बीच में ला रहे हैं गजेंद्र यादव।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को पूरे हफ्ते के कार्यक्रमों में जो आपकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं, सुझाव और शिकायतें होती हैं वो हम लेकर शामिल होते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है, आपको नमस्कार। और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश जी आपका, आपको भी नमस्कार और आपका भी स्वागत है।
2: जी आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, खैर मकदम, अभिनंदन। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे।
1: अब ये
2: पल
1: तो
2: पल बदलते मौसम
1: ये तो मिथिलेश जी मौसम में
2: है।
1: और मौसम के नजारे हमेशा एक जैसे नहीं होते
2: है।
1: और हर जगह एक जैसे नहीं होते,
2: हर जगह एक जैसे
1: है ना
2: होते।
1: अब ये तो हम आनंद ले रहे हैं मौसम का, हमारे आसपास के जनपद के लोग आनंद ले रहे हैं
2: है।
1: लेकिन जरूरी थोड़ी है कि गुजरात में बैठे हमारे साथी इस मौसम का आनंद ले पाए।
2: हाँ, ये तो है।
1: हमारे बरेली जनपद में ही एक स्थान है बमियाना, यहाँ की एक घटना काफी सुर्खियों में रही थी।
2: बिल्कुल।
1: और ऐसे में हम अपने श्रोताओं को भी इस बात के लिए जागरूक करना चाहेंगे कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या आकाशीय बिजली है या आंधी तेज तूफान चल रहा है तो ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पर चले जाएं जहाँ इस तरह की घटनाएं ना हो पाए, पेड़ के नीचे खड़े ना हो और कोई भी टीन वगैरह जहां पर पड़ी है उसके नीचे खड़े ना हो।
2: पेड़ के नीचे खड़े होना तो बहुत खतरनाक है क्योंकि बिजली कड़कती है तो सीधे पेड़ पे ही आके गिरती है
1: और तेज हवाओं में पेड़ टूटने
2: का खतरा, पेड़ टूटते हैं तुरंत। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और हमें, हम लोगों को खत लिखते रहिए, मेल करते रहिए।
1: आप मेल करेंगे तो यकीनन हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप पढ़ने जा रहे हैं।
2: जी जी जरूर। तो पहला नंबर किसका है?
1: पहला नंबर हमें मिला है सिंधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से।
2: अच्छा।
1: एकता क्लब के ये साथी हैं इमरान शेख जी।
2: हवाओं
1: में घुली है आज भी वही प्यारी रवानी, दिल को जोड़ती है अपनी मधुर कहानी। 90 वर्षों से यूं ही चमक रहा है ये कारवां, हर दिल की आवाज है हमारी आकाशवाणी।
2: क्या बात है, बहुत खूब। हर दिल की आवाज है।
1: हाँ, हमारी आकाशवाणी,
2: जन जन की वाणी,
1: जन जन की वाणी।
2: हाँ।
1: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को एकता क्लब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी।
1: आकाशवाणी केंद्र के सभी कार्यक्रम बेहद शानदार, ज्ञानवर्धक और समाज को नई दिशा देने वाले लग रहे हैं। फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम बहुत पसंद आया जिसमें मेरा संदेश भी शामिल किया गया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। झुमका गिरारे कार्यक्रम में बरेली की संस्कृति, इतिहास और खास जानकारियां सुनने को मिलती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। नीतू जी इस कार्यक्रम को बेहद सुंदर और आत्मीय अंदाज में प्रस्तुत कर रही हैं जिसे सुनकर बहुत आनंद आता है। विशेष रूप से युववाणी कार्यक्रम युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हो रहा है। इसमें शिक्षा, रोजगार, कैरियर और नई सोच से जुड़े विषयों पर बहुत उपयोगी जानकारी दी जाती है। इसके लिए आदरणीय गौरव सक्सेना जी का दिल से शुक्रिया करते हैं जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत हो रहा है। मिथिलेश जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ग्राम जगत और किसान वाणी कार्यक्रम भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। खेती, मौसम और नई तकनीकों की जानकारी बड़ी ही सरल भाषा में दी जाती है जो बहुत लाभदायक है। नारी संसार कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जिसमें उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर सुंदर चर्चा होती है। दोपहर 2:30 पर रिकॉर्ड होने वाला और शाम 4 प्रसारित होने वाला फोन इन कार्यक्रम भी बहुत शानदार लगता है। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचे इस विषय पर जो चर्चा की गई थी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी जिसमें मेरी कॉल भी शामिल हुई थी। इसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद। आकाशवाणी के जो उद्घोषक हैं जिनमें नाम इन्होंने लिए हैं, संजय जी, मोहम्मद परवेज और अंकुर कार्यक्रम के हमारे जो नेमचंद भैया हैं, नाजमा दीदी हैं, इन सभी का जो अंदाज है वो शानदार लगता है और प्रस्तुति अच्छी लगती है। इन सभी की आवाज, बोलने की शैली और श्रोताओं से जुड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। विशेष रूप से आदरणीय मिथिलेश जी, गौरव सक्सेना जी और पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी की मेहनत और शानदार प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बरेली को

0: यही एक आपकी खासियत है जो हर दिल की पसंद बनाती है।
1: क्या बात है,
0: तो बाकी ये एक संदेश भी इन्होंने लिखा है
1: संदेश भी लिखा है। क्या क्या
0: अपने
1: कहते
0: श्रोताओं के
1: हैं?
0: लिए,
1: हाँ क्या बात है।
0: लिखते हैं कि मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक चिट्ठियां और संदेश आकाशवाणी को भेजें, क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर है और हमें इसे हमेशा जीवित और मजबूत बनाकर रखना है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत

0: कर सकते हैं। बाकी आपने इतनी तारीफ की है कि मन बल्लियों उछलने लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
1: और मिथिलेश जी अब आगे बढ़ते हैं, एक शिकायत की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। और हमारे ये जो साथी हैं विनेश कुमार जी हैं, आप लिखते हैं कि नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: फिल्मी फ्राइडे 8 मई के प्रोग्राम में मैंने 10:10 पर मनहर उदास सही उत्तर दिया था। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, पर 15 मई के प्रोग्राम में मेरा कहीं भी नाम नहीं था। 10:10 के बाद वाले श्रोताओं के नाम सुनने को मिले, क्या ये सही था? इस तरह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदा? बिल्कुल इनका सत्य है, और इन्होंने जो मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट हमें भेजा है, ये भी पूरी तरह से हमें सही दिखाई दे रहा है। लेकिन मिश्रेश जी, यहाँ पर अगर आप अनुमति दें तो ये जवाब मैं आगे
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोग्राम आप ही पेश करते हैं,
1: कुछ
0: बताइए।
1: तो मुझे लगता है कि मिश्रेश जी इनकी आईडी के साथ कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि ये जब भी मैसेज भेजते हैं हमारे इस नंबर पर तो इस तरह से तो इनका नाम नहीं आता, इनकी आईडी नहीं आती। और जहां तक अभी हम
0: अच्छा
1: प्रोग्राम में भी देखेंगे, मैसेंजर पर हमें इनका अभी भी मैसेज नहीं मिला है। अब कहाँ जाता है, स्पैम में जाता है इनका मैसेज? हो सकता है कि स्पैम में चला गया हो,
0: है ना? होता है, कई बार होता है,
1: कई बार ऐसा होता है कि स्पैम में चला जाए। और स्पैम फोल्डर को शायद हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे
0: नहीं देखते
1: जो देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो और तो ऐसा कोई कारण है नहीं, बाकी और भी इन्होंने बातें लिखी हैं। विनेश कुमार जी निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं, लिखते हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आंधी तूफान में घर में रहें, जो अभी शुरुआत में जिक्र किया था हमने।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आंधी में पेड़ के नीचे ना रुकें, सुरक्षा का नियम अपनाएं, आंधी तूफान से अपना जीवन बचाएं।
0: बाकी पहले इस बात का समाधान आप ले लीजिए
1: जी,
0: कि आपका, आप ध्यान दीजिए विनेश जी, कि आपका ये जो आईडी बनी है फेसबुक वाली
1: जी,
0: जिससे आप मैसेंजर पे रिप्लाई करते हैं
1: जी,
0: वो शायद कुछ ऐसा है जिससे आपके मैसेजेस स्पैम में चले जा रहे हैं
1: जी। अच्छा, ये तो शिकायत इन्होंने एक बार नहीं, इससे पूर्व में भी शिकायत की है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इनकी एक दूसरी आईडी है, उस आईडी से जब भी जवाब आता है तो हमें शो होता है। और ये जो जिस आईडी से मुझे लग रहा है इन्होंने भेजा है, अपनी पेज आईडी रही होगी इनकी,
0: इसमें आईडी दिखा नहीं रहा है, बस ये डिटेल
1: दे रहा है जी।
0: वो आईडी का जो अगर है,
1: हाँ,
0: वो अगर दिखता तो समझ में आ जाता कि भाई ये आईडी क्यों नहीं दिख रही है।
1: अच्छा, आम तौर पर होता क्या है कि जब से मेटा ये शुरू हुआ है वर्जन,
0: हाँ,
1: तब से हमारे जो मैसेंजर का डैशबोर्ड है वो भी चेंज है पहले से। अब ये जो हमें स्क्रीनशॉट अपना भेज रहे हैं, तो ये तो जो आजकल का मेटा वर्जन है उसका स्क्रीनशॉट है ही नहीं। जो डैशबोर्ड हमारा अभी चल रहा है,
0: हाँ हाँ,
1: जिस पर इनके और भी मैसेज हमें मिलते हैं, वो इस पे शो नहीं हो रहा है।
0: तो आप अगले मेल में हमें थोड़ी डिटेल बताइए कि आपकी वो प्रोफाइल कौन सी है
1: जी,
0: और कोशिश करिए कि जिस प्रोफाइल से आप बता रहे हैं, दूसरी वाली प्रोफाइल
1: जी,
0: उससे आप मैसेज करिए।
1: बिल्कुल,
0: ताकि मैसेज तुरंत पहुंच जाए
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो टेक्निकल कुछ समस्या है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, है ना? और अगली बार कोशिश करिए तो टेक्निकल समस्या जो है उसे दूर करके फिर आप मैसेज करिए
1: जी।
0: जी जी, और आगे क्या लिखते हैं?
1: आगे अपने ईमेल में ढेर सारी सावधानियों के बाद लिखते हैं, केंद्र के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, आकाशवाणी बरेली शिक्षा सूचना और मनोरंजन में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। 8 मई को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे में जो टिप्स सुनी वो इनको काफी अच्छी लगी, और आपकी पसंद में ढेर सारे कमेंट्स शामिल किए गए, प्रोग्राम अच्छा लगा। अनुरोध गीत की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सड़क दुर्घटनाओं पर जो बातचीत की गई थी ये ज्ञानवर्धक थी। 9 मई को शीशपाल जी द्वारा आपकी पसंद की पेशकश अच्छी थी। 10 मई को अंकुर में आदि मानव के बारे में जो जानकारी दी गई अच्छी थी, साथ ही रेलवे की परिवाद पुस्तक पर भी जानकारी ज्ञानवर्धक रही। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सड़क पर चलते समय एक सभ्य नागरिक के कर्तव्य पर जो बातचीत थी वो अच्छी थी। आपका पत्र मेला में पढ़ने का अंदाज, पत्र और उत्तर देने का अंदाज जो मिथिलेश जी का है वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मदर्स डे पर प्रोग्राम की प्रस्तुति अच्छी थी। युववाणी में प्रज्ञा पाठक जी की प्रस्तुति में हेलो फ्रेंड्स की पेशकश अच्छी लगी। 11 मई को रोचना जी ने आपकी पसंद में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर बातचीत ज्ञानवर्धक थी। युववाणी में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर नेहा जी के साथ सोनिया जी की बातचीत अच्छी लगी। झुमका गिरारे में नीतू जी की जो बातचीत थी पेड़ पौधों को लेकर, ये अच्छी प्रस्तुति थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में पेड़ पौधों पर जो बातचीत की ये अच्छी लगी। 14 मई को नीतू जी ने आपकी पसंद में जो प्रस्तुति

0: थी वो अच्छी थी। झुमका
1: हम्म।
0: किनारे में चौपला पुल को 1.5 महीने के लिए बंद करने से संबंधित जानकारी पब्लिक के हित में बहुत अच्छी रही। इन सभी प्रस्तुतियों को अच्छे ढंग से पेश करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आप आकाशवाणी सुनते रहिए और मेल भी लिखते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मनोरंजन भी होता रहेगा और ज्ञान भी मिलता रहेगा, जानकारी भी
0: बिल्कुल।
1: मिलती रहेगी। ऐसे ही हम लोग पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें, रख सकें, सतर्क भी रख सकें।
0: ग्राम पंचायत करेली से महजबी अंसारी जी हैं।
1: अच्छा,
0: आज का पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनती हूँ। जैसे 2 मई का जनमंच कार्यक्रम सुना, अल्पसंख्यक समुदाय के कानूनी हक पर बात की देवेंद्र रावत और निसार अंसारी ने, और एक एडवोकेट साहिबा थी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। तीन का अंकुर कार्यक्रम इन्होंने नाजमा दीदी और नेमचंद भैया के साथ गर्मियों में सत्तू और शरबत का महत्व बताया, ये सुनकर अच्छा लगा। 11 तारीख को नारी संसार भी सुना, इसमें भी गर्मियों में रखें सेहत का ख्याल, इस बारे में बताया गया। और आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, हमें अच्छी नॉलेज और जानकारी भी देता है। हम आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखते भी हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल के लिए। और वाकई हम आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखते हैं, और हम लोगों का जो माध्यम है उसका उद्देश्य ही है इन्फोटेनमेंट, जानकारी, वो भी मनोरंजन के साथ। तो आपको अच्छा लग रहा है, ये हमें ये सुन के हमें बहुत खुशी मिल रही है। और भी प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। बहुत बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया आपका।
0: गरीब भाई हैं बरेली जंक्शन से,
1: हाँ,
0: नुमाया करते हैं अपने दिल के जज्बात।
1: क्या बात है।
0: कहते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। 8 मई को फिल्मी फ्राइडे इनको अच्छा लगा, बधाई। 9 मई को नमस्ते बरेली में शीशपाल जी की पेशकश अच्छी थी, प्रवासी पक्षी पर चर्चा की गई अच्छी थी। 10 मई को अंकुर में 6 तहसीलों के बारे में जानकारी दी गई, परिवाद पुस्तक के बारे में भी जानकारी अच्छी थी। आपकी पसंद और अनुरोध गीत में संजय जी की पेशकश अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मदर्स डे पर माँ के गीत अच्छे लगे। मन भावन में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी थी। जिंदगी एक रंगमंच है, इसमें मिथिलेश जी के साथ पटेल जी की जो बातचीत थी वो अच्छी लगी। 11 मई को यंग बरेली में रोचना जी की प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बढ़ती जनसंख्या के बारे में बातचीत अच्छी लगी। शानदार प्रस्तुति देने के लिए हरीश मौर्या जी को बधाई। भजन संध्या में कन्हैया से कह दो भजन बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात
0: 14 मई को झुमका गिरारे में नीतू जी की प्रस्तुति में चौपला पर कार्यक्रम अच्छा लगा। आपने जो गाने बजाए
1: है।
0: वो अच्छे लगे, धन्यवाद।
1: बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी गरीब भाई। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पे हम खरे उतरते रहेंगे। और जैसा कि आपको जिंदगी एक रंगमंच है, उस विषय पे जनमंच कार्यक्रम अच्छा लगा है, उसके लिए भी शुक्रिया। तो कई सारे प्रोग्राम तो हम लोग सोशल मीडिया पे उसका बहुत प्रचार भी नहीं करते हैं,
0: जी बिल्कुल
1: तो हमारे कई सारे श्रोता जैसे गरीब भाई हैं
0: जी
1: वो सुनते हैं ध्यान लगा कि इसका मतलब है, सुबह से रात तक सुनते हैं।
0: जी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और इनके तमाम हम नवा लिखते हैं। कार्यक्रम पेश करने वाले श्री मिथिलेश जी और साथी को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब।
0: साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्टाफ को, श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और
1: आपको भी बहुत बहुत
0: शुभकामनाएं।
1: बधाई और शुभकामनाएं।
0: हमें बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, सब कार्यक्रम सुनते हैं। 9 मई को हेलो बरेली कार्यक्रम में फोन किया था। 9:10 से 9:30 तक कई बार घंटी जाने पर भी फोन कई बार रिसीव हुआ, मगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अगर फोन खराब हो तो बता दिया करें। 10 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में
1: वही है, फोन कई बार दगा दे देता है और हम सूचना भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सुबह जब 9 बजे से के बाद हमारे साथी रिकॉर्ड करने आते हैं तो पता चलता है कि फोन काम नहीं कर रहा है।
0: बिल्कुल
1: कोशिश की जाती है लेकिन नहीं ठीक हो पाता है, इसके लिए तो माफी चाहेंगे। और इस बीच मौसम भी खराब रहा, BSNL का कनेक्शन है
0: जी।
1: तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभार। आगे क्या लिखते हैं।
0: 10 तारीख को अंकुर कार्यक्रम में इन्होंने बरेली की 3 तहसीलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इनको लगी, और अंकुर कार्यक्रम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसी दिन आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मिथिलेश जी ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। 12 तारीख का किसान वाणी इनको अच्छा लगा। डॉक्टर रंजीत सिंह से मिथिलेश जी की बहुत अच्छी, उम्दा और लाभदायक जानकारी मिली, और विषय था आम के बागों में सामयिक कार्य।

0: 13 तारीख को संजय जी ने आपकी पसंद पेश किया, गाने बहुत अच्छे सुनवाए। 14 तारीख को नीतू जी ने चौपला पुल से झुमका गिरहरी कार्यक्रम पेश किया, अच्छा लगा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ श्रृंगार शेखर जी, हरीश जी, शीशपाल जी, परवेज जी ने बहुत अच्छे विषयों के साथ कार्यक्रम पेश किए। अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लगे ये भी हमें, हम खुद भी अपनी तारीफ कर सकते हैं, आपने तो तारीफ की ही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि झुमका गिरा रे कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, स्थानीय विषयों पर हम लोग जो पेश कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कि झुमका गिरा रे कार्यक्रम जो है वो उसमें कई सारे हम लोग जगह कवर कर चुके हैं
0: जी,
1: तो किन जगहों को और कवर करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं।
0: हाँ, हमारे बरेली शहर के जितने भी
1: हाँ
0: श्रोता साथी हैं
1: हाँ हाँ
0: वो भाई, बहुत सारी मिथिलेश जी ऐसी जगह होंगी जो शायद हम लोगों से छूट रही
1: छूट
0: हूँ।
1: रही हूँ तो वो बताइए। बीच में कई सारे श्रोताओं ने बताया भी था,
0: जी
1: जैसे एक बार महजबी थी उन्होंने
0: जी
1: ही बताया था दरगाह के बारे में, तो वो हमने करवाया था कवर,
0: जी
1: तो और भी चीजें हैं आप बताएं तो हम वो भी कवर करवा सकते हैं, है ना। और बरेली के कई सारे विषय हैं उन पे भी आप बता सकते हैं तो अच्छा लगेगा। दूसरे आपकी बात आकाशवाणी के साथ के लिए भी अगर आप विषय सुझाएं तो उन्हें भी हम लोग शामिल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल आपका मेल लिखने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू।
0: मित्रेश जी, हमारे बरेली में जो हमारी पौराणिक धरोहर है, सांस्कृतिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, इनके अतिरिक्त हमारे बरेली के और भी नामचीन झुमके हैं जिसमें कवि हैं और एक्टर एक्ट्रेस हैं, है ना? तो मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता है ये भी तो बरेली के झुमके हैं,
1: बरेली के झुमके, हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना?
1: लेकिन वो पकड़ में नहीं आते हैं।
0: पकड़ में नहीं आते। शायर हैं और
1: हाँ
0: कवि हैं, बहुत बहुत हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही जो अभिनेत्री हैं, प्रियंका
1: चोपड़ा,
0: चोपड़ा, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आकाशवाणी बरेली के स्टूडियो में
1: हाँ
0: एक कार्यक्रम
1: बिल्कुल,
0: युवा
1: आप
0: मंच
1: जहाँ
0: आया था
1: बैठे हैं कभी
0: जी
1: वहाँ
0: बिल्कुल,
1: वो भी वो बैठ के युवा
0: प्रोग्राम में
1: मंच प्रोग्राम
0: पार्टिसिपेट
1: कर।
0: किया है। और खैर, बहुत सारी उनकी बातों से जुड़ाव बरेली का रहा है, और बरेली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां खान पान की चीजें भी, उनके स्टॉल उनके नाम पे उनका फोटो लगा हुआ
1: बिल्कुल बिल्कुल, और
0: है ना?
1: क्या
0: तो
1: सही
0: ऐसे
1: बात है,
0: ऐसे झुमके हैं
1: झुमके हैं बस वही है, हम लोग विज्ञापन वाले एक चक्कर में
0: जी।
1: वो नहीं कर पाते हैं।
0: ये बात तो सिर्फ इसलिए छेड़ दी कि हमारे जो
1: हाँ
0: श्रोता सुन रहे हैं
1: सुन रहे हैं वो
0: तो
1: समझ जाएं कि
0: समझ
1: हाँ भाई हम लोग
0: जाए।
1: क्यों नहीं कर पाते।
0: हाँ
1: कुछ
0: जी
1: लोग सुझाएंगे कि ये कर लो वो कर लो तो
0: जी
1: उसमें प्रॉब्लम आएगी भाई विज्ञापन वाला, क्योंकि
0: जी
1: हम लोग विज्ञापन नहीं कर सकते, नहीं तो उनसे कुछ विज्ञापन के लिए बात करें आकाशवाणी में कुछ सहयोग करें तो हम लोग कर सकते हैं, ऑन पेपर हो जाए।
0: जी मित्रेश जी, जहां अभी खाने पीने की चीजों की बात आई, तो जो खाने पीने की चीजों का टेस्ट है और बेहतरीन बनाते हैं वो हलवाई लोग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तोपबंदी क्यों लगा रहे हैं,
1: हाँ हलवाईयान,
0: क्योंकि हम चल रहे हैं मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट,
1: हलवाईयान,
0: बिजनौर से। ठीक है,
1: क्या बात है।
0: वहां से जो हमारे साथी हैं, मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर, तो इनके जो ईमेल मिलते हैं उसमें मीठी मीठी खुशबू होती है। लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम,
1: सलाम आपको भी।
0: कैसे हैं आप मिथिलेश जी,
1: बढ़िया है, दुआएं हैं
0: और
1: आपकी।
0: हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। हमें 13 मई का अनुरोध गीत जो संजय जी ने पेश किया था बहुत पसंद आया, 11 मई को आपकी पसंद रोचना जी ने पेश किया था, और 9 मई को अनुरोध गीत जो शीशपाल जी ने पेश किया इनको अच्छा लगा। एक शिकायत है आपसे, हरीश मौर्या जी और ब्रिजेश तिवारी जी प्रोग्राम तो सही करते हैं पर नाम बहुत तेजी के साथ और गलत पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पूरे नाम भी नहीं पढ़ते और कुछ का कुछ पढ़ देते हैं? कई बार हम इनके बारे में आपको बता भी चुके हैं पर कोई फायदा नहीं है। क्या आप लोग वहां बैठकर प्रोग्राम नहीं सुनते हैं, या अनाउंसर लोग कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं? अगर वही देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं, देवेंद्र रावत जी, प्रदीप मिश्रा जी, परवेज जी, शीशपाल जी और रोचना मिश्रा, शिप्रा जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि ये अच्छा पेश करते हैं, और यह गुजारिश है, ध्यान दीजिएगा।
1: बिल्कुल, ये तो आप ही लोग बेहतर बताएंगे क्योंकि आप सब लोग लगातार सुनते रहते हैं,
0: जी
1: हम लोग कई बार दूसरे कार्यों में भी मशरूफ हो जाते हैं, हमारे प्रसारण सहायक हैं उनकी भी ड्यूटी है वो सुनते हैं, फिर भी उनके पास कभी कभार और भी जैसे प्रोग्राम एडिट करने का भी काम आ जाता है,
0: जी
1: तो इसमें अगर इन दो लोगों के बारे में आप बता रहे हैं तो प्रोग्राम वो लोग सुन रहे होंगे, उनसे हमारी हम कहेंगे कि

0: भाई आप सबके नाम अच्छे से पढ़िए, है ना, और तेजी से ना पढ़िए, आपके लिए शिकायत आई है, शिकायत हमारे श्रोता की दूर करिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: तो हमारे ये श्रोता शिकायत दूर समझें।
0: बिल्कुल, शिकायत आपकी दूर हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, अगली बार आप सुनिएगा।
1: बिल्कुल,
0: हाँ।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश में तिलक राज अरोड़ा जी हैं और वो वहां से हमें बता रहे हैं कि 7 मई का कार्यक्रम आपकी बात में, सड़क पर चलते कितने सतर्क रहते हैं आप, इस विषय पर अमृता सिंह जी की श्रोता साथियों से बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 11 मई का कार्यक्रम आपकी पसंद रोचना मिश्रा जी के शानदार प्रस्तुति के साथ सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक शानदार गाने सुनवाए गए।
0: क्या बात है,
1: कार्यक्रम से पहले आकाशवाणी के दीवाने में हमारा संदेश सुनवाया गया, हमारा दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है।
1: नीतू सिंह जी, मोहम्मद परवेज, संजय कुमार जी की शानदार प्रस्तुति रही। फिल्मी फ्राइडे आपकी पसंद, झुमका गिरारे, अनुरोध गीत, लोकगीत, आपकी बात, रसरंग, भजन, नमस्ते बरेली, यंग बरेली और बहुत से कार्यक्रम सुने हैं। कार्यक्रम बेहद पसंद आए हैं। इन सभी कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुति के साथ सुनवाने के लिए आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं को दिल से शुक्रिया। और 10 मई का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, किसी कारणवश हम सुन नहीं पाए हैं। अगर हो सके तो ये कार्यक्रम YouTube पर अपलोड कर दीजिए, आपकी अधिक कृपा होगी।
0: रेडियो पे ही सुनिए, ज्यादा अच्छा है। वही तो अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया,
1: जी
0: उस पर निर्भरता हमारी धीरे धीरे होती जा रही है।
1: जी
0: सोशल मीडिया से देख के हम रेडियो सुन रहे हैं, तो खैर अब आप नहीं सुन पाए हैं, और भी श्रोता हैं जो नहीं सुन पाए हैं, तो उस पे अपलोड हो गया होगा, और नहीं तो अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा जल्द ही।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: मिथिलेश जी, हमारे अगले ये जो श्रोता हैं इनके कमेंट भी हमें मिले हैं
0: हाँ
1: और मेल भी मिला है।
0: अच्छा।
1: तो कमेंट में और मेल में दोनों में अलग अलग विषय हैं इनके, तो क्या किया जाए?
0: तो अगर मेल ही देख लीजिए,
1: मेल
0: बड़ा
1: देख
0: बड़ा
1: लेते हैं,
0: होगा।
1: छोटा सा ही मेल है
0: अच्छा
1: वैसे।
0: अच्छा कोई
1: हाँ
0: नहीं, कंटेंट तो एक ही होगा।
1: हाँ लिखते हैं हमारे
0: जी।
1: ये साथी संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, एडवोकेट वारिस अली खान साहब हैं। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
0: सलाम आपको भी।
1: अर्ज है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी बैठे हैं जो दरिया के किनारे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दरिया के किनारे हैं फिर भी प्यासे हैं।
1: सबसे पहले तो आप इनका एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा।
0: अच्छा।
1: मिथिलेश श्रीवास्तव और मिथिलेश योगेंद्र दो अलग लोग हैं या एक?
0: एक ही है, एक ही है। हमारा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है, और कभी जो मेरे पिताजी का नाम योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव है,
1: जी
0: तो उनका नाम सरनेम की तरह कभी कभार हम यूज कर लेते हैं, कभी कभार नहीं, अक्सर यूज कर लेते हैं,
1: जी
0: जो मैं कुछ कविताएं या कहानी इत्यादि लिखता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव,
1: जी
0: तो दोनों नाम हमारे सेम हो गए,
1: हाँ
0: और कई सारे मेरे पास पत्र भी आने लगे,
1: जी
0: और पंक्तियां भी उनकी लिख के हमको भेज दी गई कि ये वाली आपकी बड़ी अच्छी लगी। तो मैं कहा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, फिर ये
1: क्या
0: क्या,
1: बात,
0: उसकी तारीफ मैं क्यों लूँ।
1: क्या बात।
0: और भर भर के लेटर आते थे, कुछ तो मेरे ही लिखे के लिए आते थे, लेकिन कुछ उनके लिखे हुए आ जाते थे, उस पे आ जाते लोग कन्फ्यूज में। इसलिए हमने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, एक हमारे मित्र थे वो साहित्य जगत के ही,
1: जी
0: उन्होंने ये सुझाव दिया कि कुछ नाम में चेंज कर लिए, नहीं तो ये कन्फ्यूजन लोगों को बनी रहेगी, तो हमने फिर मिथिलेश योगेंद्र कर लिया,
1: जी तो हमें लगता है कि इनका भी कंफ्यूजन
0: दूर
1: दूर
0: हुआ।
1: हुआ
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल
1: और आगे बढ़े। कहते
0: जी, बिल्कुल।
1: हैं इन्हें फिल्म संगीत का बहुत शौक है। आपकी पसंद अनुरोध गीत, लकीत्री, मनभावन जरूर सुनते हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ मेरा मोस्ट अवेटेड शो है। 13 मई का आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसका विषय कभी बारिश कभी आंधी तो कभी कड़ी धूप, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात है।
1: मगर मैंने पेज पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी बरेली के संदर्भ में अपना वीडियो पोस्ट किया, परंतु आपने उसे अपने केंद्र से प्रसारित नहीं किया, ऐसा क्यों?
0: आप लिंक भेज देते, मेल आप मेल पे ही भेज देते। हाँ, ये जो आपका मेल हमें मिल रहा है, इस मेल पे ही भेज देते, या फिर वो फेसबुक पे आपने अगर पोस्ट किया है तो वो
1: कमेंट
0: लिंक।
1: के साथ अगर भेजा हुआ तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: उसमें
0: हाँ
1: दिखाई नहीं पड़ता है, काफी देर बाद के मैसेज बहुत हो जाते हैं,
0: हाँ हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना?
0: अगर आपकी पसंद वाले पे किए होंगे, उस पे तो
1: ढेर सारे
0: ढाई
1: कमेंट।
0: सौ 300 मेल हो कमेंट हो जाते हैं,
1: जी
0: तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, अगर मिलता है तो आपका किया जाएगा, बाकी
1: जी
0: कोई तकनीकी दिक्कत होगी तब तो शायद ना हो पाए। नहीं देख पाए तो

0: फिलहाल आपका मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बढ़े आगे।
0: जी जरूर।
1: दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र में हमारे ये सभी साथी हैं, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी, आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी और इनका पूरा परिवार। आप लिखते हैं, नमस्कार दोनों साथियों को, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, आपको भी सादर।
1: बरसों से एक बात मन में है, आज फिर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। आपका ये कार्यक्रम हम जैसे पुराने श्रोताओं के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनापन और जुड़ाव का एहसास है। इसलिए जब हम समय निकाल कर अपने विचार, अनुभव और भावनाएं लिखकर भेजते हैं तो उम्मीद रहती है कि आप उन्हें पूरा सुनेंगे और समझेंगे। आजकल ऐसा महसूस होता है कि कार्यक्रम में कॉल ज्यादा लिए जा रहे हैं और संदेश कम पड़े जा रहे हैं। कॉल तो हर किसी का लगना संभव नहीं, लेकिन कई बार कोशिश करने पर मौका नहीं मिलता। मैसेज हर श्रोता अपने मन से समय निकाल कर और पूरी भावना के साथ भेजता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि संदेशों को थोड़ा ज्यादा महत्व दीजिए। मेरा मानना है कि अगर 45 मिनट कॉल और 15 मिनट संदेशों के लिए रखे जाएं तो कार्यक्रम और भी संतुलित लगेगा।
0: कर दिया गया है।
1: कर दिया
0: आप
1: गया?
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: हाँ, इनका
0: आपकी
1: मेल
0: बात
1: मिलने से
0: आकाश।
1: पहले ही हो गया।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ये कर दिया गया है।
1: क्या बात,
0: और 45 मिनट कॉल और 15 मिनट संदेश की बजाय आधा आधा किया गया है।
1: आगे लिखते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है या होती है उसी विषय पर श्रोता अपने विचार लिखते हैं। अगर उन्हें पूरा पढ़ा जाए तो बाकी श्रोताओं को भी समझ में आएगा कि किस भावना से बातें भेजी गई थी, तभी श्रोताओं की मन की बात सबके दिल तक पहुंचेगी। फेसबुक पर 90 साल के विशेष कार्यक्रम में आपने जो श्रोताओं की शुभकामनाओं के वीडियो साझा किए वो बहुत अच्छे लगे। सभी श्रोताओं ने बड़े प्रेम और अपनापन के साथ अपनी बातें भेजी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच कहूं तो हमारे अधिकतर भाई बहन पुराने श्रोता ही हैं जिनके नाम हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। नारी संसार, कृषि वाणी, आपकी पसंद जैसे कार्यक्रमों से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया है। 3 मई को आपने मेरा पत्र भी सुनाया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने उसे कार्यक्रम में शामिल किया, लेकिन उसमें लाइव प्रोग्राम और संदेशों को साथ में मिलाने की वजह से बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मेरा सुझाव है कि लाइव अलग रखें और नियमित संदेशों का हिस्सा अलग रखें। इससे कार्यक्रम ज्यादा साफ, सहज और समझने में आसान लगेगा।
0: बिल्कुल
1: और
0: आप।
1: एक बात और दिल से कहना चाहता हूं,
0: हाँ
1: शायद उनके मन को दुख पहुंचा होगा, यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर श्रोता की भावना की कद्र होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी श्रोता सिर्फ नाम सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात दिल तक पहुंचाने के लिए लिखता है। आप दोनों की आवाज, आपका अपनापन और कार्यक्रम को संभालने का अंदाज हमेशा अच्छा लगता है। बस यही छोटी सी उम्मीद है कि श्रोताओं के संदेशों को थोड़ा और समय और सम्मान मिले ताकि हर सुनने वाले को लगे कि बात उसकी सच में सुनी गई है।
0: एकदम दिल से लिखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो बातें कही हैं, जो उम्मीद की है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब समय समाप्त
1: समय
0: हो रहा
1: समाप्त हो रहा है,
0: है।
1: लेकिन समय तो समाप्त हो रहा है, ये बड़े भारी मन से हमें आज जो कमेंट है वो छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे ना हम ऐसे, पढ़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। अगले हफ्ते आपके सभी कमेंट पढ़ेंगे, चाहे भले ही हमें कार्यक्रम में कितना जल्दी क्यों ना बोलना पड़े।
0: हाँ, थोड़ा स्पीड भले बढ़ा लेंगे,
1: जी,
0: हाँ, लेकिन कमेंट शामिल किया
1: तो
0: जाएगा।
1: कमेंट वाले हमारे साथियों आप मायूस ना हो और तब तक और भी कमेंट करें, क्या अच्छा लगा, किस कमी के साथ आपको महसूस हुआ कि
0: वीडियो
1: ये।
0: भेजें,
1: हाँ, वीडियो भेज दीजिए।
0: आकाशवाणी से जो आपका नाता रहा है,
1: हाँ हाँ
0: लगातार हमारे पास वीडियो आ रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और धीरे धीरे उनको हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और जो हमारा चंक है सुबह 10 बजे का और अपराह्न 4 बजे का, वहां भी जा रहा है ना।
1: तो अब तो चलेंगे
0: बिल्कुल, अब तो एकदम
1: श्रोताओं,
0: मोनिका जी खड़ी हो गई हैं कि चलो अब बंद करो।
1: इससे पहले कि वो माइक म्यूट कर दें, हम इजाजत लेते हैं अपने दोस्तों से, लेकिन चलते चलते इतना तो बताएंगे कि आप पत्र लिखना चाहते हैं तो पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001। ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें, ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला @bareilly@gmail.com, या फिर पेज पर आइए, आपका पत्र मिला संबंधित पोस्ट में अपने कमेंट कर दीजिए।
0: जी बिल्कुल।
1: आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मौसम का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र,
0: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति।
1: कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम आपका पत्र मिला। कार्यक्रम प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव साहब की। और

आपके पत्रों को लेकर हाजिर हुए थे आप लोगों के साथ गजेंद्र यादव। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब बरी है कुछ लोकगीतों की, आइए सुनते हैं।

साथियों, इस लोकगीत में राम कैलाश और साथियों की आवाजें थी। एक लोकगीत और आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य,

लोकगीत मिट्टी की वो खुशबू है जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। गांव की गलियों से निकले ये सुर आज भी रिश्तों की मिठास जिंदा रखते हैं।

जहां ढोलक की थाप हो और अपनापन साथ हो, वहीं जन्म लेते हैं लोकगीत। लोकगीत सिर्फ गाए नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मिट्टी की पहचान है ये लोकगीत।

इन सुरों में बसी है एक अजीब सी महक, एक आनंद देने वाली महक। कहीं बरसात की रिमझिम, कहीं अपनेपन की चमक। आइए सुनते हैं इन्हीं भावों के साथ एक और लोकगीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, सुनिए।

मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोक संगीत की मधुर तान के साथ आज की ये महफिल यहाँ विराम की ओर बढ़ती है। फिर मिलेंगे नए लोकगीतों और नई उमंगों के साथ। तब तक अपनी संस्कृति और अपने सुरों से जुड़े रहिए। और हाँ, आपको बता दें, आज जो लोकगीत हमने आपको सुनवाए उन्हें आवाजें दी थी राम लक्ष्मण, बीना शर्मा और दामोदर शर्मा।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। अब हम आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी लखनऊ की ओर और सुनवाते हैं कुछ क्षणों में वहां के कार्यक्रम।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स

लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सीएम ने आज गोरखपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्थापना काल से लेकर अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में देश में केंद्र के साथ 22 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है। सीएम योगी ने प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा भी की। इस दौरान उन्होंने गोवंश को गुड़ खिलाया और उनकी देखभाल की जानकारी ली। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर आज प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपये से बढ़ाकर 17,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। प्रदेश में आंधी बारिश थमने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। आज सुबह ज्यादातर शहरों में आसमान साफ है। मौसम विभाग ने आज 22 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: सेहत सर पर सजे हुए उस ताज की तरह है जिसे सिर्फ एक बीमार इंसान ही देख सकता है, और जब तक वो ताज, वो क्राउन हमारे सर पर है, तब तक हम कभी उसकी कीमत नहीं समझ पाते। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस की डेडलाइंस, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और बदलती जीवन शैली के बीच एक समस्या बहुत तेजी से हमारे घरों में पैर पसार रही है, जिसका हमें कई बार समय रहते एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की। मेडिकल वर्ल्ड में इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट इसलिए क्योंकि ये बिना शोर मचाए, बिना किसी लक्षण के आती है, लेकिन हमारे दिल, दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों, आज यानी कि 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही यही है कि हम और आप इस साइलेंट किलर के प्रति जागरूक हों, क्योंकि सही समय पर जांच, संतुलित लाइफस्टाइल और सही जानकारी ही समस्या से बचाव का सबसे अचूक और प्रभावी तरीका है। तो बस

0: बेहद जरूरी विषय पर आज हम करेंगे एक खास चर्चा। और इस चर्चा में आपको गाइड करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं के समाधान करने के लिए हमने खास तौर पर बुलाया है शहर की प्रख्यात चिकित्सक एवं विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल जी को, जो कि हैं एमडी आंतरिक चिकित्सा। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है, यानी कि अगले एक घंटे तक हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस बस आपके लिए खुली हुई हैं। तो अगर आपके मन में भी ब्लड प्रेशर, बार बार होने वाले सर दर्द, अचानक चक्कर आना, घबराहट, बीपी की दवाइयां, खान पान या तनाव से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो बिना किसी झिझक के हमें अभी कॉल करिए। हमारे स्टूडियो के नंबर वही पुराने वाले हैं, 0522-223-8852 एंड 0522-298-2377। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं fmakashwanilakhno@gmail.com पर। याद रखिए, हम लाइव हैं आपके लिए। तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में हैं, जो भी सवाल हैं, आप उनके समाधान के लिए हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली ये हाइपरटेंशन होता क्या है। अक्सर बड़ी कॉमन सी चीज लगने लग गई है, जिससे बात करो ये कहता है भाई हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या हमारा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो ब्लड प्रेशर लो रहना या ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, ये होता क्या है?
1: बीपी जो है, जो ब्लड है वो रक्त कोशिकाओं में बहता है
0: जी।
1: वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जब बहेगा तभी जो हार्ट है उसको सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा पाएगा। मगर जब ये एक निश्चित नंबर से ज्यादा हो जाता है, जिसको गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 130/80 के ऊपर है, जो ऊपर वाला बीपी जिसको नापा जाता है, जिसको पहले लिखते हैं, अगर वो 130 के ऊपर आ रहा है, और जो नीचे वाला बीपी जिसको बाद में लिखते हैं, अगर वो 80 के ऊपर आ रहा है, और एक लंबे टाइम तक ये इतना बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये नियमित मात्रा से ज़्यादा है, जो वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। और इस पर हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल बदल लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना, जो चेंजेस है वो ले आने चाहिए। और अगर ये 140 और 90 के ऊपर जा रहा है तो फिर हमें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के और हम ज़रूर इनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पहले कॉलर हैं उनसे आपको कनेक्ट कर रही हूँ, हालांकि हमारे सामने ईमेल्स भी बहुत सारे हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: संजय तिवारी बोल रहे हैं, लखनऊ से बोल रहे हैं।
0: जी संजय जी, अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, हमको आपसे ये पूछना है कि जैसे जो बीपी जो होता है, जो ये फ्लैक्चुएट हो जाता है बीपी, ऐसे बार बार किसी का 130 या 140 या 90 के अबव चला जाता है, तो इसके पीछे क्या कोई डेंजर कारण होते हैं? और दूसरा, ये हार्ट बीट से भी क्या ऐसा कोई रिलेशन है?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको आजकल जो डिजिटल मॉनिटर्स हैं वो आपको अपने घर पे रखना चाहिए। दिन में सुबह शाम अपना बीपी नापिए, एक हफ्ते तक अपनी बीपी की रिकॉर्डिंग करिए, फिर जो भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीपी 130, 140, 190 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। ये नंबर ज़रूर आपको अपने पता होने चाहिए। बीपी हमारा अच्छा है अगर 120, 80 के नीचे है, 130-180 तक है, तो भी हमें चेंजेस पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चीज़ें सही हो सकती हैं। बट अगर बीपी 140-90 के ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें दवाइयों की आवश्यकता हो। ये अच्छा गाइड, क्योंकि इसके लिए बहुत और जांचें भी करनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर से, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उससे मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए। उसके साथ आपको जो दिक्कतें हो रही हो, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, दिखने में कोई दिक्कत, वो आपको बतानी पड़ेंगी। जो हार्ट रेट बढ़ता है वो भी खुद में एक बीमारी है, उसका भी इलाज होना चाहिए। नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए भी हमें जांचें करवानी पड़ती हैं।
0: तो ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से क्या हो सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और जरूर जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्यों बोला जाता है ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, इस बारे में भी हम जरूर उनकी राय लेंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ है उनसे बात करते हैं। हेलो।

0: हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। पहले तो आपसे एक गुजारिश करूं, प्लीज रेडियो से दूर हो जाइए।
1: हेलो
0: जी, अपना सवाल पूछिए और रेडियो से प्लीज दूर हो जाइए। हमारे ये दोस्त, बड़ी मुश्किल से मुझे पता है कॉल मिलता है डॉक्टर साहब, और जरूर कोई ना कोई समस्या होगी तभी इन्होंने कॉल लगाया होगा, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी से ये रेडियो से दूर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से हमें इनकी आवाज़ नहीं मिल पाई। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी आप सबसे कि जो भी सवाल आपका है वो ज़रूर पूछें, हमें फ़ोन मिलाएं, हमें ईमेल करें, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, क्योंकि इतनी मुश्किल से फ़ोन मिलता है और बात नहीं हो पाती तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर बढ़े रहने में लोग ये कहते हैं अरे बढ़ाए बढ़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो सकता है, क्या खतरे हैं ब्लड प्रेशर बढ़े रहने के?
2: अगर लंबे टाइम तक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स में दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि हमारी डिमेंशिया जैसी दिक्कत, ब्रेन में लगातार थक्के जम सकते हैं, कभी भी हमें लकवे की शिकायत हो सकती है, नस फट सकती है हमारे दिमाग की, या बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत याददाश्त जाने वाली बीमारियां हो सकती हैं, अचानक से विजन लॉस हो सकता है, हमें दिखना कम हो सकता है क्योंकि जो पर्दे पे वेसल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं, हमें नोज ब्लीड हो सकता है, हमें बहुत लंबे टाइम तक भरे रहने पे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी पे बहुत असर पड़ सकता है, लोगों CKD जो बीमारी है जिसमें आगे चल के डायलिसिस करना पड़ता है, किडनी बदलनी पड़ती है, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका BP लॉन्ग टाइम तक बढ़ा हुआ है। बट अगर हम दवाइयां लें और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, BP को कंट्रोल में रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं।
0: शायद इसीलिए बोला जाता है इसको साइलेंट किलर, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो अब तकरीबन हर घर की प्रॉब्लम है, अरे इट्स ओके, अब तो घर घर में ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लेकिन ये इतनी भी छोटी बात नहीं है। आपकी बात सुनकर के ऐसा महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डरने की बजाय, परेशान होने की बजाय, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो तुरंत हमें कॉल करें 0522-223-8852 और 0522-298-2377, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी वही पुराना वाला, fmakashwani@gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आज खास तौर पर हेल्थ एंड फिटनेस में हमने आपके सवालों के जवाब देने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को, जो कि हैं MD आंतरिक चिकित्सा। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर खास तौर पर हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
0: आपकी मुस्कुराहट बनी रहे और सेहत की चमक आपके चेहरे को हमेशा दमदमाती रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सारे प्रोग्राम जो कि आपके लिए जरूरी हैं। कभी हम आपको एंटरटेन करते हैं तो कभी हम आपको अवेयर भी करते हैं, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाता है। यस फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, एंड लेट अस सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो हेलो, तो फोन लाइन तो मुझे लग रहा है कि कुछ परेशान कर रही है, नेवर माइंड। चलिए डॉक्टर साहब, अशोक कुमार जी का ईमेल है हमारे सामने, रायपुर से है, रायपुर लखीमपुर खीरी से ये लिखते हैं, मुझे घबराहट की समस्या है, नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है और ये प्रॉब्लम तकरीबन 2 सालों से बनी हुई है। डॉक्टर को दिखाया है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उम्र मेरी है 30 साल। डॉक्टर साहब, सिर्फ 30 साल की उम्र में क्या हाइपरटेंशन हो सकता है?
2: हाँ, यंग हाइपरटेंशन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि

0: की लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, सोने का पैटर्न हम लोगों का बहुत बिगड़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लैपटॉप्स पे रहते हैं। तो 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन होना आजकल बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। 40 के नीचे जब हाइपरटेंशन होता है तो उसको यंग हाइपरटेंशन कहते हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत लंबी ज़िंदगी है जीने के लिए, और अभी से अगर हमारी रक्त धमनियों पे इतना प्रेशर पड़ेगा तो उनका जल्दी ख़राब होना, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आना, हार्ट पे जल्दी इफ़ेक्ट आना, ब्रेन पे जल्दी इफ़ेक्ट आना, ऐसा हो सकता है। इसको और अच्छा लाइफस्टाइल से हमें कंट्रोल करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है।
1: मतलब ये मत सोचिए कि अगर उम्र कम है तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती। यही कहा जा सकता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के जरूर जो भी वो दवाइयां बताएं उनको फॉलो करें, उन्हें जरूर लें। एक और कॉलर हमारे साथ, डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार
2: जी। सलाम अलैकुम
1: जी। अपना सवाल पूछें प्लीज, अपना नाम बताकर।
2: जी, मेरा नाम शादी अलसारी है, मेवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं, हमारा सर एकदम से घूमने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
2: जी 15 साल।
1: 15 साल की उम्र खाना खाने के बाद अगर ये लेट जाती हैं तो इनको चक्कर आने लग जाता है। जी,
2: खाना खाने के बाद नहीं, अगर खाते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं, मतलब चक्कर आने लगते हैं।
1: मतलब कभी भी चक्कर आ जाता है?
2: हाँ, सर में दर्द भी बहुत होता है।
0: ठीक है, आपकी उम्र जो है 15 साल की उम्र पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको कमजोरी महसूस होने के। एक बहुत कॉमन कारण औरतों में अनीमिया का हो सकता है, हो सकते हैं कि आपका खून हीमोग्लोबिन अभी कम चल रहा हो, आयरन की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि अभी आपके शरीर में उतने न्यूट्रिएंट्स ना हो, आपका खान पीन उस तरीके से ना हो। इसके लिए आपको अपने कुछ टेस्ट अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, कारण पता करिए, अपना बीपी जरूर जांच कराइए। कई बार लो बीपी भी चल रहा होता है, उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, उसके कारण पता करना ज़्यादा ज़रूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, लो बीपी भी क्या इक्वली ख़तरनाक होता है?
0: लो बीपी भी खतरनाक हो सकता है, उसमें चक्कर आना, दिमाग में सही ब्लड का दौरान नहीं होना, ऐसा हो सकता है, बट उसके अपने कारण होते हैं, इतना कॉमन नहीं होता है। वो जनरल दवाइयों के कारण या और किसी एंडोक्राइन कॉज की वजह से होता है। जनरली जो देखने को मिलता है वो हाइपरटेंशन की वजह से ही हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं।
1: ज्यादा दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर साहब, सौरभ का हमारे सामने है ईमेल, अकबरपुर सीतापुर से ये लिख रहे हैं। 1 महीने से सर में दर्द लगातार बना रहता है, सर दर्द क्या एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपरटेंशन का?
0: जी, सर दर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम हो सकता है। अगर आपका कॉन्स्टेंटली सर दर्द बना हुआ है तो ज़रूर, जब भी आपका सर दर्द ज़्यादा हो उस समय बीपी ज़रूर लेना चाहिए, हार्ट रेट ज़रूर नापना चाहिए। एक कारण सर दर्द का बीपी हो सकता है, मगर केवल हम ये नहीं कह सकते कि सर दर्द का कारण बीपी होता है, सर दर्द के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है टेंशन हेडेक ही होता है सर दर्द का कारण। अगेन, इसके लिए वही है, अपना बीपी कम से कम 1-2 हफ्ते मॉनिटर करें, अगर वो 130-80 के ऊपर लगातार बना हुआ है तो नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और उनके परामर्श अनुसार अपना इलाज कराएं।
1: डॉक्टर विजयपाल यादव का है ललहुआ लखीमपुर खीरी से ईमेल हमारे सामने, और ये पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम के लिए घर पर क्या कर सकते हैं। मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो हमें चुप होना पड़ता है। खैर, ये तो अच्छी चीज है विजयपाल जी, मुझे लगता है जब एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आगे ये भी लिख रहे हैं कि नहीं तो फिर उनका बीपी हाई हो जाता है। विजयपाल ललहुआ जिला खीरी, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इन्होंने रीजन भी पूछा है, कैसे रोक सकते हैं ये भी पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए?
0: देखिए, बीपी स्ट्रेस की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस है। मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना मानसिक तनाव कम रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बीपी बढ़ाता है। तो अगर वो कम गुस्सा करेंगी तो बीपी स्पाइक्स उनके कम आएंगे। बीपी अगर ऑलरेडी उनको है तो दवाइयाँ टाइम से लेनी है। बीपी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना दिन भर, दिन में खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों का चेंज करना, जैसे कि मोटा अनाज खाना चाहिए, बहुत चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, नमक का परहेज करना है, कोशिश करना है दिन भर में 1 टीस्पून नमक जो है बस उतना ही प्रयोग किया जाए, किसी भी चीज़ पे ऊपर नमक बरक के नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सॉस, पापड़, चटनियाँ, इनका प्रयोग कम करना है।

0: हैं, फल खाने हैं, फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है, ऐसे जो मीट मांस मच्छी ऐसे जो बहुत ज़्यादा बटर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होती हैं, इनको कम करना है, एग खा सकते हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल है, टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम पूरी नींद लेते हैं तो उससे भी बीपी कंट्रोल होता है, और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1: तो इस बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनसे बात करने के बाद, आपने जिस गाने की फरमाइश की थी जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, उस गाने को मैं पक्का प्ले करूंगी, क्योंकि वादा किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। हेलो हेलो जी
2: नमस्ते,
1: जी नमस्कार, नाम बताएं जी, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब।
2: मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम कैसरगंज बहराइच से।
1: अपनी उम्र बताकर अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछें।
2: जी मैम, जैसे कि मैं ब्लाइंड हूँ, इसीलिए तो जब कोई बीमारी का नाम सुनता हूँ ना मैम, तो मैं बहुत डर जाता हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो हाइपोटेंशन है, इससे हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब क्या ना खाएं, क्या क्या कर सकते हैं
1: जी। आपकी उम्र अभी कितनी है?
2: जी मेरी उम्र 18 होने वाली है 2 महीनों के बाद।
1: और अभी आपको कोई समस्या नहीं है, है ना?
2: जी समस्या नहीं है, लेकिन
1: आप चाहते नहीं कि आगे भी समस्या हो, ये हमारी जागरूक श्रोता हैं डॉक्टर साहब।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम बीमारी को प्रिवेंट कर पाए और बहुत अर्ली एज पे ही अगर हम चेंजेस ला पाए अपनी लाइफस्टाइल में, तो हम इन चीजों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
1: लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, शरीर है, बीमारियां लगी ही रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर को अगर अच्छा खिलाए पिलाएंगे, व्यायाम कराएंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। हमें किसी भी तरीके की नशा पत्ती को कम से कम रखना है या ना करना है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, नमक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, तो हमें नमक का परहेज करना है, खाने में कम से कम उपयोग करना है। अगर हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना हम चलेंगे उतना ही हमारा हार्ट चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक कहीं बैठना नहीं है, अगर हमारा सिटिंग जॉब है तो हमें बीच बीच में उठ के वॉक करना है, और अच्छे खाना पीना खाना है।
1: तो आगे भी हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आजकल कम उम्र में ये समस्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। सवाल ढेर सारे हैं, कॉलर्स लगातार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ईमेल्स भी हमारे सामने ढेर सारे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने दिल दिया गल्ला ये गाना सुनने की फरमाइश की है फिल्म सुल्तान से, कोई खास वजह इस गाने को सिलेक्ट करने की?
0: नहीं, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माई हस्बैंड।
1: तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब के बेटर हाफ इस प्रोग्राम को जरूर सुन रहे होंगे और इस डेडिकेशन को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपकी पसंद का गाना हम सबके रेडियो सेट पर।
3: में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:34 और 43 सेकंड्स हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। मैं हूं ज्योति और आज खास तौर पर आपके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में। डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज बात कर रही हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई शंकाएं हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो सोच कह रहे हैं जल्दी से हमें फोन मिलाइए 223-8852 एंड 298-2377। ये हमारे फोन नंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं या लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इन नंबर से पहले लखनऊ का कोड 0522 ऐड करना होगा और ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwani@gmail.com। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपने कॉलर से बात करें आपसे, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में आजकल इतनी समस्याएं क्यों होने लगे हैं? क्योंकि पहले, बहुत पुरानी भी बात नहीं है ये, पहले ये सोचा जाता था कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसकी उम्र तो होगी कम से कम 40+ उसकी एज होनी चाहिए। तो ये उम्र आजकल मतलब कोई क्राइटेरिया रही नहीं गई, इसकी क्या वजह है?
3: जी ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम मानते थे कि 40 के बाद जनरली बीपी बढ़ता है, मगर आजकल बहुत यंग 20-30 साल के बच्चे भी हमारे पास बीपी लेकर आने लग गए हैं। अगेन प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का है। खाना आजकल पैकेज फूड बहुत ज़्यादा है, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है। लोग घर का बना हुआ खाना, कम तेल मसाले का खाना, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, इनको अवॉइड करते हैं। मैदा, नमक,

0: खूब तेल बटर वाला खाना खा रहे हैं, ये व्यायाम कम किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे केवल फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कर रहे हैं, तो वो जो घंटे हम केवल लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम ला रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, हम वॉक नहीं करते हैं, हम
1: और
0: लिफ्ट
1: ये
0: का यूज़
1: फोन
0: कर,
1: फोन भी मतलब एक बहुत बड़ी
0: बहुत बड़ी
1: चीज है। मतलब
0: प्रॉब्लम की तरह सामने
1: जो
0: आ रहा
1: मम्मी
0: है।
1: कहती है कि तुम्हारा फोन सारी प्रॉब्लम की जड़ है, वो सही
0: वो
1: कहती है।
0: बिल्कुल सही कहती हैं कि तबीयत जो आजकल बीमारियां हैं वो उसी वजह से हैं। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, अब बच्चे बहुत यंग एज से फोन पे लगे रहते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो पहले लोग वॉक करते थे, स्टेयर्स चढ़ते थे, वो सब कम हो गया है। अब क्योंकि खाने पीने में भी हम हेल्दी नहीं खा रहे और लाइफस्टाइल भी हमने बहुत सिडेंट्री कर ली है, इसलिए बहुत जल्दी हमें ये बीमारियां जो हैं वो लगने लग गई हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया फोन, तो फोन किस तरह से इफेक्ट करता है? बाहर नहीं जाते हैं हम खेलने के लिए, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, ये तो एक वजह है। क्या कोई और भी तरीके से ये हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है?
0: जो फोन से रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे हार्मोनल मिल्यू को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। जो हार्मोन्स हमको टाइम के हिसाब से आते हैं उनका बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। स्पेशली कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है फोन से, जो रील्स देखी जाती हैं, जो वीडियोस देखे जाते हैं, जो स्ट्रेस उससे क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा बीपी बढ़ाने में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है।
1: तो फोन, जिसके लिए मम्मी कहती है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये फोन ही है, तो दरअसल मम्मी गलत नहीं कहती हैं। और आज तो डॉक्टर साहब ने भी इस पर मुहर लगा दी, कुछ भी करिए लेकिन लिमिट के अंदर, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी कभी भी लिमिट के बाहर नहीं जाएंगी, ये हम उम्मीद करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैम मैं अल्तमस बोल रहा हूँ, लखीमपुर खीरी से।
1: जी, अपना सवाल पूछे।
2: मैम मेरा सवाल ये है कि मैं जब सोता हूँ तो मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है कि सर पर कोई बोझ आ गया है, और बाहर जाओ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
1: और आप हैं अभी कितने साल के?
2: 16 साल के हैं।
1: 16 साल के हैं, जब घर में होते हैं सोकर उठते हैं तो लगता है सर पर कोई बोझ है, थोड़ी देर के बाद अपने रूटीन में जब आप आ जाते हैं तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, राइट? डॉक्टर साहब, सो करके उठने के बाद सर दर्द या चक्कर आना, ये काफी कॉमन सी चीज है, क्या इसका भी ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन है?
0: रिलेशन हो सकता है, मगर 16 साल की एज पे अगर ये कंप्लेन आ रही है तो हम पहले और कॉजेज रूल आउट करेंगे। जनरली वही मैंने कहा कि टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, पहले इन सब चीज़ों को रूल आउट करना पड़ेगा। बीपी 16 की एज पे बहुत कम है, ना हो सकता है ऐसा नहीं है, मगर इस एज पे ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक होना थोड़ा सा अनकॉमन है।
1: तो आप, यही आपसे गुजारिश है कि जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हो वहां जाकर के आप अपना परीक्षण जरूर कराएं। डॉक्टर साहब कॉलर भी हैं हमारे साथ, कई सारे ईमेल्स भी हैं और हम डेफिनेटली इनसे बात करेंगे, ईमेल्स भी पढ़े जाएंगे, लेकिन एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: डॉक्टर साहब, ऋषभ का ईमेल है हमारे सामने, बर्रा कानपुर से लिख रहे हैं। आई वॉन्ट टू आस्क वॉट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन एट एनी एज। तो आपने हालांकि सिम्टम्स बताए हैं पहले, लेकिन शायद इन्होंने मिस कर दिए, तो डॉक्टर साहब अगर आप संक्षेप में सिम्टम्स और रीजंस दोनों को बता सकें।
0: सिम्टम्स में आपको सिर दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों से धुंधला दिख सकता है, आपको नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, कमर में बहुत सीवियर दर्द हो सकता है, यूरिन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको जरूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: मतलब आपको महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है शरीर में, कुछ
0: बहुत
1: तो गड़बड़ चल रहा है।
0: महसूस होगा, सीने में धड़कन तेज महसूस हो सकती है, इस तरीके की अगर चीजें महसूस हो रही हैं।
1: तो ऐसे में बोला जाता है कि लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी अगर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। मोनू सेठ जी का ईमेल है, डॉक्टर साहब अमेठी से लिख रहे हैं कि नमक और बीपी दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं? क्यों, और नमक आयोडीन की जगह सेंधा नमक खाना कितना सही है?

0: बहुत मेहनत करने वालों को भी बीपी जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हम तो यही सुनते थे कि मेहनत करके जो पसीना बहाते हैं उन्हें बीपी शुगर जैसी बीमारियां नहीं आती हैं, क्या खान पान में बदलाव की वजह से ये समस्या है? तो डॉक्टर साहब, दो तीन सवाल हैं। नमक और बीपी का कनेक्शन कितना है, और सेंधा नमक खाने से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं बीपी? पहले हम इस सवाल को लेते हैं।
1: नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन का सोर्स हमारा टेबल सॉल्ट होता है, तो हम उसको पूरा एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए डाइट से। पॉइंट है, हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करना है नमक को। तो जो एडवाइज्ड है वो है कि एक टीस्पून, जो छोटी चम्मच होती है, उतना नमक हमें दिन भर में लेना है। और उसमें जब हम एक छोटी चम्मच नमक लेते हैं तो सोडियम लगभग 2.5 ग्राम तब भी हमारे शरीर में जाता है। इसको कम करने के लिए किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला था, ऊपर से नमक अलग से नहीं डालना है, जितनी भी चीज़ों में कम नमक यूज़ करना है। सेंधा नमक में सोडियम का मात्रा कम होती है, उसको यूज़ किया जा सकता है, मगर टेबल सॉल्ट अगर बिल्कुल हटाएंगे तो आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो मिला के दोनों नमक को यूज़ किया जा सकता है, आधी आधी मात्रा में।
0: और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि जो मेहनत करते हैं क्या उनको भी बीपी और शुगर जैसी बीमारी हो सकती है?
1: देखिए, जो मेहनत करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको होने के चांसेस कम होते हैं, मगर फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक कॉजेज होते हैं, पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने के बहुत कॉजेज हैं, एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, इन कारणों से उन लोगों को भी हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है ये कि हम लाइफस्टाइल का ध्यान रख के इन समस्याओं को दूर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। ये सोचना कि नहीं, हम मेहनत करते तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये ठीक नहीं होगा, है ना
1: जी।
0: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार
2: जी। मैम नमस्कार।
0: कौन बोल रही हैं?
2: मैम, मैं निशा बोल रही हूँ, लखीमपुर खीरी से।
0: निशा जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि एक साल से उनको फीवर होता है, मतलब हम सुबह दवा ले आए, खा लिए, पूरा दिन उतर गया, उसके बाद मैम फिर आ जाते हैं, मतलब बहुत दवा कर चुके हैं मगर फायदा नहीं।
0: उम्र कितनी है आपकी?
2: जी मैम, 30।
0: और कोई टेस्ट कराए?
2: मैम कराया तो बोले कि तुमको बसेरू बुखार है।
0: ओके, तो डॉक्टर साहब, बार बार बुखार आ जाना हमारी, मैं समझ रही हूँ कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आप हमारी इन कॉलर की मदद कर सकें कुछ।
1: निशा जी देखिए, अगर आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है, तो पहली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि थर्मामीटर से आपको बुखार दिन में कम से कम 3 से 4 बार, स्पेशली जिस समय आपको महसूस होता है, उसको लेके डॉक्यूमेंट करना है। अगर ये बुखार आपका 100 के ऊपर, 101 के ऊपर जा रहा है, तो लग के किसी अच्छे चिकित्सक से मिल के आपको एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जो जांचें की जाती हैं ऐसे केस में, उनको कराना है, ताकि उसका कारण पता चल सके और उसका निवारण हुआ जा सके।
0: तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और बिल्कुल लाइटली मत लीजिए निशा जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, लेकिन इनसे बात करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 गाने तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी, तो चलिए अब बारी आपकी पसंद के दूसरे गाने की। इससे पहले कि मैं ये सॉन्ग प्ले करूं, शोर मूवी का सॉन्ग, आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ।
0: ओके, तो आपकी जिंदगी का दर्शन इस गाने के जरिए हम सब तक पहुंचने वाला है। सुनते रहिए, 12:45 और 20 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, मैं ज्योति आपके साथ, और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए, हमने इनवाइट किया है जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल को हमारे स्टूडियोज में, जो कि जवाब दे रही हैं आपके सवालों के विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर। हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे जुड़ी हुई क्वेरीज को वो सॉर्ट कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं। तो फोन मिलाते रहिए, ईमेल करते रहिए, अभी भी काफी वक्त है हमारे पास।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
3: 12:50 और ये लीजिए 51 मिनट हो गए हैं। आप हैं हेल्थ एंड फिटनेस में और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हमने बुलाया है एक बहुत ही खास शख्सियत को, जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में है और ये बात कर रही हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो बिना संकोच, बिना झिझक, बिना हिचक हमसे कनेक्ट होइए और अपने सवालों के जवाब डायरेक्टली डॉक्टर साहब से लीजिए, बिल्कुल इनकी तरह। हेलो हेलो हेलो। तो हमारे ये कॉलर

0: मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत देर तक इंतजार करा दिया, तो कहीं चले गए हैं, दोबारा जरूर कनेक्ट होंगे ये पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे नंबर अभी भी याद नहीं हुए तो अब नोट कर लीजिए, 223-8852 एंड 298-2377, ये हमारे स्टूडियोज के नंबर्स हैं। और fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। एमके राज का है ईमेल, मुनेश कुमार भानपुर हरवा लखीमपुर खीरी से इन्होंने लिखा है कि बीमारियां तो इंसान को कभी ना कभी घेर ही लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लापरवाही करें। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दौर में मोबाइल इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, इसके फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी कम नहीं। मेरा सवाल बीपी के मरीजों को लेकर है, क्या शर्ट के सामने वाली जेब में मोबाइल रखना या फोन आने पर तेज रिंगटोन का अचानक बजना उनके लिए घातक हो सकता है अगर ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है? इस विषय में कृपया मेरी शंका का समाधान करें।
1: फ़ोन को अपने बहुत पास में रखना और अचानक से जब बहुत तेज़ रिंगटोन बजती है तो बॉडी एकदम से स्ट्रेस में आ जाती है, स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स निकलते हैं और बीपी भी शूट हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि हमें फ़ोन रात में अगर हम रिंगटोन कम कर सकें और नॉर्मल डेज पे भी डे टाइम में भी हम रिंगटोन कम रखें, फ़ोन को थोड़ी दूर पे ही रखें, जैसे पहले लैंडलाइन रहते थे हमसे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे कम करेगा और बीपी कम हो सकता है।
0: सौम्या का ईमेल आया है, डॉक्टर साहब लखनऊ से ये जानना चाहती हैं कि क्या ब्लड प्रेशर की दवा अगर एक बार खानी शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ती है, अब अगर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो मैं क्यों दवा कंटिन्यू करूं? एक सवाल इन्होंने और भी पूछा है कि हर दवा की तरह ब्लड प्रेशर की दवा के भी कुछ तो साइड इफेक्ट्स होते ही होंगे, तो डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि इस दवा को छोड़ना नहीं चाहिए?
1: देखिए हमेशा हमारा बेनिफिट हम देखते हैं, अगर दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो उससे एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो हमें दवाई खानी है। कभी भी डॉक्टर आपसे ये नहीं कहते कि आपको केवल दवाई खानी है, वो हमेशा आपको सिखाते हैं आपको साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करने हैं। अगर आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने पर ध्यान रहेंगे, नमक वगैरह कम करेंगे, कम नशा पत्ती करेंगे और बीपी को अपने कंट्रोल्ड रेंज में रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको उतना ही दवाई खानी है, मगर मॉनिटरिंग करना, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना, रेगुलर फॉलोअप में रहना, इसकी जरूरत है।
0: मतलब कम हो सकती है लेकिन खानी है।
1: दवाइयां कई बार बंद भी हो सकती हैं, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर पाते हैं। जनरली लोगों का इतना लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं, दिक्कतें हैं या और सारी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज वगैरह, तो बिल्कुल बंद तो नहीं हो पाती है बट कम जरूर हो सकती है दवाइयां।
0: और अपने आप तो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए,
1: अपने से कभी भी दवाई बीपी की नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि एक एपिसोड अगर बीपी का 180-200 का पहुंच जाएगा तो उसमें बहुत जानलेवा चीजें जैसे कि शरीर में फालिश मारना, हार्ट अटैक आना, ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही दवाई को बंद करें या कम करें।
0: तो साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब?
1: देखिए दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता है। जनरली दवाइयां जब अप्रूव होती हैं तो FDA अप्रूव जब भी होती हैं तो इस तरीके से होती हैं कि उनके मिनिमम साइड इफेक्ट हो। जब डॉक्टर आपको लिखता है कोई अगर स्पेशल साइड इफेक्ट होता है तो उसके बारे में आपको अवगत कराया जाता है, और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो बॉडी को इतना नुकसान करे। जो बीपी आपको कर रहा होगा उससे तो कुछ फायदा ही पहुंचा रही होंगी।
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रही है। हेलो हेलो,
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछिए।
2: गगनदीप कमल बोल रहे दीदी।
0: गगनदीप जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब इंतजार कर रही हैं।
2: सर के पीछे तरफ दर्द होने लगता है, एक क्या समस्या हो सकती है?
0: आपकी एज कितनी होगी गगनदीप जी?
2: 24 साल।
0: 24 साल की उम्र है, सर के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है।
1: जनरली जब सर के पीछे दर्द होता है तो सर्वाइकल के पेन का रेडिएशन ज़्यादा होता है। सर्वाइकल के पेन, अगर गर्दन में भी दर्द साथ में है, हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं है, हमारे सोने का ढंग सही नहीं, हम ऊंचा तकिया लगाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस वजह से मांसपेशियों का दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा होता है और वो जो दर्द होता है वो बैक ऑफ द हेड में रेडिएट कर सकता है। बट इसके और भी कारण हो सकते हैं, अगेन आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए और जांचें कराइए, कुछ एक्सरे कुछ स्कैन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि क्या कारण है।
0: तो हर सर दर्द बीपी की वजह से हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है गगनदीप जी, ये किसी और वजह से भी हो सकता है और सही वजह तभी पता चलेगी जबकि आप प्रॉपर जांचें कराएं, चेकअप कराएं। हेलो हेलो।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार
1: नाम बताएं अपना और अपना सवाल पूछें।
0: जी। हम यूपी से, उत्तर जिला सीतापुर से, उत्तर गांव से उसामा बोल रहे हैं। हमारी जो मोम है उनको सर दर्द करने लगता है काफी ज्यादा।
1: कितनी उम्र होगी उनकी और किस वक्त पर सर दर्द होता है?
0: जिनकी होगी लगभग 55 साल।
1: अच्छा, और किस वक्त सर दर्द होना शुरू हो जाता है?
0: जी
1: किसी खास वक्त पर सर दर्द होता है या हर वक्त होता रहता है?
0: अचानक ऐसे कभी कभी सर दर्द करने लगता है,
1: सर के कौन से हिस्से में दर्द होता है?
0: पूरे सर में दर्द होने लगता है।
1: 55 साल की उम्र और सर दर्द अक्सर हो जाता है डॉक्टर साहब।
2: जैसे मैंने पहले भी बताया, सर दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं जिसमें बीपी एक कारण है। तो बीपी जरूर अपना नपवाएं, अगर बीपी कारण है तो उसकी दवाइयां लें, बट उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, आंखें कमजोर होना, चश्मा ना इस्तेमाल करना, ये एक बहुत कॉमन कारण हो सकता है। इन सब की जांचें कराएं अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर।
1: लेकिन क्योंकि 55 ईयर्स एज है मैडम की, तो हम ये जरूर
2: बीपी जरूर अपना
1: जी
2: जांच कराएं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसका भी इलाज करवाएं।
1: डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे कॉलर से।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: और डॉक्टर साहब अब हमारे साथ कौन फोन लाइन पर हैं, चलिए जानते हैं। हेलो हेलो,
5: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रही हैं?
5: और डॉक्टर मैम को भी गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून,
5: शमा परवीन बात कर रहे हैं, पचानापुर जिला सीतापुर से।
1: जी शमा
5: मैम, मुझे ये दिक्कत है, सर में दर्द रहता है हमेशा पूरे सर में, और जब उठ के चलते हैं तो चक्कर आने लगते, पूरा अंधेरा सा छा जाता है आंखों के सामने।
1: शमा आप कितने साल की होंगी, कितनी उम्र होगी आपकी?
5: 18 साल।
2: शमा जी देखिए, 18 साल पे अगर सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो अगेन मैं कहूंगी कि बीपी एक कारण हो सकता है, उसको जरूर रूल आउट करें। बट क्योंकि आप 18 साल के हैं, इसका कारण कमजोरी, शरीर में आयरन की कमी, विटामिन की कमी भी हो सकती है। आपको जरूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, अपना बीपी नपवाना चाहिए, और जैसा भी आपके रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से आपको अपना इलाज कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि अगर उनके जीवन में ऑलरेडी ये समस्या आ चुकी है हाइपरटेंशन की, तो वो समझ पाए कि ये प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन की वजह से हो रही हैं। अगर नहीं आई हैं तो वो कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर क्या क्या वो चीजें हैं जो कि वो खुद कर सकती हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात कहें तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेल्थ मंत्रा क्या होना चाहिए आज के वक्त, जबकि ऑलरेडी इतनी टेंशन है लाइफ में, तो ये तो कहना ही बेकार है कि भाई टेंशन मत लो, आराम से बैठो।
6: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।

नमस्कार दोस्तों, सुरों की इस खूबसूरत महफिल में आपका दिल से स्वागत, जहां आपकी फरमाइशें बनती हैं हमारी प्रस्तुति और हर गीत जुड़ जाता है आपकी यादों और एहसासों से। तो तैयार हो जाइए दिल को छू लेने वाले नगमों के सफर के लिए। मैं हूं आपका दोस्त संजय, आप सुन रहे हैं अनुरोध की।

पहला गीत हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें हैं। सुनना चाहे कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश।

रॉय उषा, अमित और हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत रॉय, गंज डुंडवारा से मुनब्बल लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज खान, शहबाज सूफिया, पप्पू अफसाना महजवी और उनके सभी परिवारी लोग। गांव लोहडडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करौला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवेद खान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा, हनुमान बोट के और उत्तम जमडाटे। भेज रहे हैं आपके अनुरोध पर आपके ही रेडियो सेट पर वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने फिल्म में हम किसी से कम नहीं।

और अब 100.4 एफएम आकाशवाणी पर रेली पर प्रोग्राम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मन मंदिर। आशा भोसले और साथियों की आवाजें सुना चाहे आप लोगों में से कुछ लोगों ने। यादव मोहल्ला सनाबाद मध्य प्रदेश के दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान और मालाकार परिवार के सभी लोग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, चैतेक और मीका बिरक। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला और परवीन आसमा। बुलंदशहर से बद्रू बली अंसारी, फरजू बली अंसारी और उनके अंसारी परिवार के सभी लोग। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मेघलानी, सीमा, अनमोल, धर्मवीर, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण, रमेश मेघलानी साहब।

लपरी ग्राम मुडेला से कुमारी चंदा, चांदनी, आकाश, कन्हैया, रीता देवी। कहते हैं ना कि जब दिल किसी की धड़कनों में अपना नाम सुनने लगे तो मोहब्बत का हर गीत और भी खूबसूरत लगने लगता है।

100.4 FM हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध की। हमें पता है कि आप हमें दूर दराज देश के कोने कोने में सुन रहे हैं। एहसास है हमें अपने श्रोताओं के उन पत्रों का जो अब हम शामिल कर रहे हैं। फिल्म का नाम भीगी रात, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें। सुना जाए आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। मोती मस्जिद नवाबगंज बरेली से मेरा जहां मुस्कान, रेहान, अलशिफा, मन्नत और उनके परिवार के सभी लोग। विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान, ये हमारे श्रोता बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से। दिल्ली शाहदरा मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और साथ में यही गाना सुनना चाहा है, अपना अनुरोध हमें भेजा है अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही स्वाति ने और ये हमारे श्रोता पुराना शहर बरेली से। तो साथियों देर ना करते हुए आपको सुनवा दें, आप तो कहेंगे और हम सुनवाएंगे भी। साथियों

कुछ एहसास शब्दों में नहीं डालते, बस गानों की आवाज बनकर, जी हाँ, गानों की आवाज बनकर दिल में उतर जाते हैं।

अब साथियों, गाने के बोल जैसे भी हों, हमारे श्रोताओं को तो अच्छे ही लगते हैं, चाहे वो दिन के हों, चाहे रात के हों, चाहे दोपहर का समय हो। अब आपका आना

क्रोध है तो बजाने तो पड़ेंगे ही। अब अगला गीत जरूर सुनवा रहे हैं। फिल्म है कालीचरण, आशा भोसले और साथियों की आवाजें। और सुनने का अनुरोध आप लोगों में से ही कुछ लोग। एकता क्लब सिंधौली, तहसील मीरगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश के इमरान शेख साहब, जीशान वारसी और मोहम्मद सुहेल। बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज। अस्तुपुरा मऊ, उत्तर प्रदेश के मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजबाना परवीन, अब्दुल्लाह आजाद। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। मोहल्ला गंज आंवला बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला खान और आरिफ हुसैन खान। कहते हैं ना कि वो दौर ही कुछ और था, जब गानों में सुकून और अल्फाज में मोहब्बत हुआ करती थी। जी, हम ऐसे ही गाने चुनकर आपके अनुरोध पर लेकर आए हैं। सुनिए और इंजॉय करिए।

तो रात खड़ी थी छत पर। जी हाँ दोस्तों, ये गाने के बोल हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें। फिल्म है हिमालय की गोद में। सुना जा है बीसलपुर पीलीभीत के बिमल वर्मा और उनके सभी परिवारी लोगों ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। भाटापारा दत्तरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा। बट्टा परिवार से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा। ये हमारे श्रोता पटियाला से। ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज, विकास, कर्मवीर, प्रवीण, अनिल नागर, सागर बख्शी और उनके बहुत सारे दोस्त। मौला हलवैयान शेरकोट बिजनौर से वखार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। साथियों, कहते हैं ना कि दोस्ती वो रिश्ता है जो हर खुशी को दो गुना और हर गम को आधा कर देता है।

और उसी संगीत को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। आपके ही अनुरोध पर हमारे पास जो खत आए हैं उनमें सिलेक्शन है आपके सॉन्ग का, फिल्म का नाम है गहरा दाग। आशा भोसले साथियों की आवाजें। सुना जाए इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूर जहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान, जिल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ, गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैसर शमसी अजीम, सलीम नवेद, रजिया और उनके परिवार के बहुत सारे लोग, प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, शंकरपुर उसाबा बदायूं दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, सनोज आनंद, अमन, सोनी, विनीता, अंकिता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री यादव, छावनी अशरफ का होली चौक मंदिर के सामने बरेली से, राम प्रसाद शर्मा, फजलुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद और उनके परिवार के सभी लोग, अब जो गाना भेज रहे हैं आपके अनुरोध पर सुनिए और अगर आप दिल की गहराइयों से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारा वादा है।

कह दें, यादों से बाहर निकल कर आइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं और हम सुनवा रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम अनुरोध के। साथियों, यादों की गलियों से निकल कर एक प्यारा सा गीत आ रहा है जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजवीय राधिका, अनिष्का और तन्मय। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा। पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खां, दिशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम, साथ में है मेहरुन्निशा।

दोस्तों आ गए हैं उस गीत की ओर जो प्रोग्राम अनुरोध गीत को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर। स्टूडियो में 2 बजे के प्रोग्राम के लिए भी आ गए हैं मोहम्मद परवेज साहब और बस जस्ट मेरे बराबर में खड़े हैं। इमेजिन करिए क्या कर रहे होंगे वो आपके 2 बजे के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं और मेरे पास ही मेरे बराबर से बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी यादें और एक शानदार मेलोडी, बस यही तो है जिंदगी। रेडियो की इस खूबसूरत महफिल में अब वक्त है एक और सुपरहिट नगमे का और अनुरोध है आप सबका। मोहम्मद अजीज की आवाज है, नगीना फिल्म है, सुनना चाहे आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभी जीत गभ्याणकर, राही सरिता गभ्याणकर, प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित, ध्वनि बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणेता, करगैना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, रूबी, रचना, एकता, दिव्या, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। मेरे हाथ में अंतिम पत्र आज के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, कहते हैं ना कि जब कोई याद होती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे ही सिचुएशन पे आजकल कुछ याद रहता नहीं। आइए सुनते हैं ये गाना और एंजॉय करते हैं।

दोस्तों, बरेली शहर में तो हमारे आकाशवाणी के आसपास तो बहुत तेज धूप है बाहर। और अभी हमारे एक और साथी सत्या, जिन्हें हम प्यार से सत्तू भी कहते हैं, वो हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं माइक्रोफोन मामा परवेज साहब को सौंप रहा हूँ। रस रंग के साथ 2 बजे आपके साथ हाजिर होंगे।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत संजय भाई के साथ 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रस रंग। ये पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कलाम है जफर गोरखपुरी का और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। इसमें गजल, कव्वाली और लोकगीतों का आप आनंद लेंगे। आइए सुनते हैं अब ये गजल के बाद कव्वाली कैसर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये कव्वाली कैसर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ साथियों की आवाज़ में 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। श्रोताओं, आज 2:30 पर हम रिकॉर्ड करेंगे आपकी कॉल्स को और हमारा आज का विषय है आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं अपना गुस्सा आप। जी हाँ श्रोताओं, इस पर हमें कॉल जरूर कीजिएगा। हमारे फोन नंबर है 0581251720। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https.award.government.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश https://padmawards.government.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे रविवार दिनांक 18 मई 2026 को 17 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, रविवार 17 मई 2026 को शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग और आइए अब सुनते हैं ये

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: मन तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: क्यों?
1: इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों।
2: आप सुन रहे थे नजराना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था।

कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम।

मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं, हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

ला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे।

इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है। रनिवास की इतनी रानियों के रहते
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
1: अनसुया।

0: देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
1: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
2: अरे अरे मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
0: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
1: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
2: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुया, चली गई।
3: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
2: जी।
3: कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
2: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं आर?
3: पाप?
2: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
3: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
2: अब जाने भी दीजिए मुझे।
3: क्यों जाने दूं तुम्हें?
2: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
3: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
2: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
3: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
2: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
3: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
2: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
3: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
2: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
3: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
2: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़
3: दो। नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
2: तो फिर कहो।
3: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
2: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा लो, रात आ पहुंची है।
2: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
3: ठीक है।
4: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
2: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
2: अच्छा
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
2: हाँ चलो माँ।

0: युक्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
2: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर तो लड़ने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे, तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं?
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया। पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले। तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जा, जल्दी जा। ओह हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनुसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनुसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है, और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा,

0: मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
0: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुईया।
0: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली। और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुईया? शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
0: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
0: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
0: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
0: सच?
1: हाँ।
0: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुईया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
0: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
0: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
0: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
0: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगजित पौरव तेज निवास।
0: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुईया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
0: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुईया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुईया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
0: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है।

0: आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही है। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या

0: बेटी, तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
1: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
2: ये तेरा लाडला हरिण शावक है बेटी।
1: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे। जा, लौट जा।
3: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
0: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
4: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
0: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
1: बाबा, बाबा।
0: बेटी, पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: बाबा,
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
1: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
2: सखी,
1: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनुसुईया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
0: इतनी अधीर ना हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना,
2: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
2: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरणग्रह, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की

मौत बनकर राज करो और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।

0: कन्या सचमुच परायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश शिमला प्रचार FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, शाम के 4 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने में आज राधा नामदेव को, जो सहारनपुर से हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर अपने मुखारबिंदु से क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं और आप और हम मिलकर।
3: मैं राधा नामदेव सहारनपुर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहती हूँ। 23 जुलाई 1927 को जब पहला प्रसारण आकाशवाणी का मुंबई और कलकत्ता से हुआ था तो उस समय ये नहीं मालूम था कि आकाशवाणी इन ऊंचाइयों पर पहुँचेगा, लेकिन इन ऊंचाइयों पर पहुँचकर आकाशवाणी ने हमें जो दिया है हम बयान नहीं कर सकते। हम आकाशवाणी से उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब हमें ये भी नहीं मालूम था कि आकाशवाणी होता क्या है, और जब हम सुबह में उठते थे आंखें मलते हुए बिस्तर से तो जब हमारे कानों में आवाज़ आती थी वंदे मातरम की, इतना तो था ये वंदे मातरम की आवाज़ आ रही है, और उसके बाद उद्घोषक बोलते थे कि हम आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं, तो हमें ये लगता था ये आकाशवाणी केंद्र आकाश में होता होगा और आकाश से आवाज़ आती होगी। इतनी हम लोगों को नॉलेज नहीं थी कि आकाशवाणी होता क्या है, और धीरे धीरे हम आकाशवाणी सुनते गए, बड़े होते गए और हमें नॉलेज मिलता गया कि आकाशवाणी है क्या चीज़ और ये रेडियो क्या है और कहाँ से आवाज़ आती है और कहाँ से हम सुनते हैं। तो ये सब जुड़ाव जो था हमारा बचपन से था और हमें ये हमारे माता पिता से सौगात में मिला था, क्योंकि हमारे पापा जो थे आकाशवाणी सिलोन और विविध भारती के बहुत फैन थे, बहुत मुरीद थे, और हमें बचपन से ही ये सब सुनने को मिला। तो जब हम आकाशवाणी से जुड़ते हुए चले गए तो हमें भी ये सब पता चलता चला गया कि कौन सा आकाशवाणी केंद्र कब क्या और क्या प्रोग्राम देता है। तो इस करके हम जब हमारे पास के आकाशवाणी केंद्र थे, बड़े होते गए तो उसमें प्रोग्राम और विचार लिखकर कई बार भेजे और प्रकाशन और प्रकाशित भी हुए, और साथ में मेरा एक हॉबी थी कि मैं प्रकाशन में भी देती थी तो मुझे थोड़ा सा लिखने का शौक था, तो मैंने बहुत सारे लेख लिखकर आकाशवाणी केंद्र पर भेजे और प्रसारित हुए, तो अच्छा लगने लगा और थोड़ा सा हौसला मिलने लगा और फिर इतना जुड़ गए कि आकाशवाणी से, और आज तक जुड़े हुए हैं। और उस समय तो शायद सोशल मीडिया का युग नहीं था, और जब नाम सुनते थे तो बस यही होता था कि आप लोग नाम सुन लिए थे और याद हो गए थे सबके नाम, लेकिन जब सोशल मीडिया से जुड़े तो उन नामों को हमने रूबरू देखना चालू किया तो हमसे मुलाकात होनी चालू हुई सभी श्रोताओं की, और एक परिवार हम सबका जो बना हुआ है आज भी। तो हम सब इस आकाशवाणी के ही शुक्रगुजार हैं कि हमें आकाशवाणी ने ही ये सब परिवार दिया है। आकाशवाणी का महत्व हम इतना नहीं बता पाएंगे जितना कि वे परिवार बता पाएंगे जिन परिवारों के बच्चे सेना पर बॉर्डर पर तैनात हैं और जिन परिवार

0: के बच्चे सेना पर जाते थे और सिर्फ उन्हें उनसे उनकी जानकारी के लिए सिर्फ एक ही जरिया था आकाशवाणी का, रेडियो का। वे सुबह से शाम तक सिर्फ रेडियो सुनते थे और रेडियो से ही खबरें होने पर मिलने पर उन्हें ये पता लगता था कि सब कुछ ठीक है। तो वे परिवार, हम तो शायद कुछ बयान नहीं कर सकते आकाशवाणी की उपलब्धता, वे लोग ज़्यादा जान पाते हैं। वे लोग कितने जुड़े हुए रेडियो से थे और एक ताक लगाए बैठे रहते थे सुबह से शाम तक खबर सुनने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आकाशवाणी एक ऐसा विषय रहा है हमारी ज़िंदगी के लिए कि इसको मैं बयां शब्दों में नहीं कर सकती और आगे भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये प्यार, ये महसूस मैंने आकाशवाणी के साथ किया है। मेरा एक जो संबंध आकाशवाणी से रहा है और मैं सारा दिन जो है आकाशवाणी के साथ रहती हूँ और मेरा एक विशेष संबंध रहा है। मैं संगीत, हालांकि संगीत के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन नहीं, ये रेडियो से एक अलग जुड़ाव है जो बना रहता है हम सबका और श्रोताओं के साथ बना हुआ है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को, आप सभी श्रोताओं को, उद्घोषकों को शुभकामनाएं देती हूँ और हमारा प्यार यूं ही बना रहे, वंदे मातरम।
1: अभी शुभकामना संदेश दे रही थी राधा नामदेव सहारनपुर से, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:05 और 6 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारा आज का विषय है, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं अपना गुस्सा आप। इश्क के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि गम में आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है, जिस प्रेम और मोहब्बत के साथ आपने हमें कॉल्स की और साथ में फेसबुक पेज पर जो अपने कमेंट, अपने जज्बात हमसे शेयर किए हैं, उसको हमने इसमें, इस प्रोग्राम में शामिल किया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। देखते हैं कि हमारे आज के पहले खुश नसीब कॉलर कौन है। हेलो,
2: नमस्कार जी, मैं अनोखेलाल मौर्य बोल रहा हूँ।
1: क्या बात है अनोखेलाल मौर्य, आपके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलते हैं ना, तो हमें बड़ा मन को शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बातचीत करते हैं हमें फोन पर।
2: आपकी मोहब्बत है, आप इतनी मेहनत करते हैं हम श्रोताओं पर, कार्यक्रम रेडियो हमारे भेजते हैं
1: जी,
2: तो अच्छा लगता है।
1: ये सब प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए हैं, आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है।
2: गुस्सा आने की चीज तो ये है सर, कोई भी चीज है, हम कोई भी कस्टमर आ जाए, कोई ऐसी बात कर जाए तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने पर तो थोड़ा बहुत अपने आप को धैर्य भी रखना पड़ता है। धैर्य रखने वाली चीज ये होती है, सामने आदमी को अपने अपने तरफ से कोई भी गलत चीज नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आप तो दुकानदार आदमी है और दुकानदार आदमी को तो वैसे ही बड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर तरह का कस्टमर आता है दुकान पर, है ना।
2: कस्टमर आता था, उसका ध्यान रखना पड़ता है, और कस्टमर को इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए
1: जी,
2: नुकसान भी हो जाए।
1: जितना अच्छा व्यवहार आप बनाएंगे उतनी ही बढ़िया आपकी दुकानदारी चलेगी, है ना। आज कौन सा गीत सुनेंगे आज आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
2: अपनी पसंद का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए, हमारे लिए
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, प्रोग्राम में आपका फोन लग गया। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं रजिया बोल रही हूँ, बरेली से।
0: जी रजिया जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। और आकाशवाणी में सब कैसे हैं?
0: सब बढ़िया हैं, बहुत बेहतर हैं। आज का जो हमारा विषय है, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं अपना गुस्सा आप? भाई गुस्सा तो आता ही होगा आपको, क्या नहीं आता है? क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर?
1: जैसे कभी कोई बात हो जाती है तो गुस्सा हर किसी को आ जाता है, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। इसलिए हमें गुस्सा अपने आप से कंट्रोल करना चाहिए।
0: हाँ, जितना अपना बिहेवियर आप अगर शांत रखेंगे तो उतना ही हमारे लिए बेहतर रहता है ना। वैसे घर में, परिवार में आपके बहन भाई तो होंगे, और
1: जी है।
0: उनसे कभी लड़ाई झगड़ा होता है, उनके ऊपर गुस्सा आता है आपको?
1: थोड़ी बात होती है, लेकिन बस गुस्से को कंट्रोल रखते हैं हम लोग।
0: जी, बेहतर इंसान वही है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल पा ले, है ना। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भाई, देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ रहती हैं या आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से जूझते हुए हम लोग अपना जीवन जीते हैं ना। कोशिश करना चाहिए कि हम गुस्सा बिल्कुल ना करें और अपना कूल व्यवहार रखें। उससे क्या है कि हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है ना रजिया
1: शांत
0: जी?
1: रहना चाहिए और गुस्सा बहुत कम करना चाहिए।
0: क्या करती हैं रजिया जी आप?
1: जी अभी कुछ नहीं, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है।
0: कौन से क्लास में पढ़ रही हैं?
1: अभी मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन होगा।
0: अच्छा, हाई स्कूल।

0: कर लिया आपने।
1: जी
0: चलिए, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हाई स्कूल पास करने की। और आज कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: मैं सुनना चाहूंगी मुझसे शादी करोगी मूवी का सॉन्ग, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए।
0: चलिए, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अपने परिवार से ही प्यार रहे।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जिला बरेली थाना मीरगंज पोस्ट रोड ग्राम रसूलपुर के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहे हो सर?
0: अल्ताफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में।
1: थैंक यू सर।
0: और आज हम बातचीत कर रहे हैं, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं अपना गुस्सा आप?
1: गुस्सा फिलहाल ऐसा आता है कि कोई अगर सामने वाला इंसान बात करता है और वो बातचीत में अगर कोई गलत बात बोलता है तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
0: अच्छा, कोई गलत बात होती है तो गुस्सा आ
1: और
0: जाता है।
1: फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि सामने वाले को समझाता हूँ कि भाई हमेशा सच बोलो, सच के साथ रहो, सच के साथ जियो
0: जी
1: और
0: जी
1: झूठ के साथ मत रहो, ना झूठ के साथ जियो।

0: मानविक प्रवृत्ति है कि एक्शन का रिएक्शन होता है ना, कि कोई
1: जी
0: व्यक्ति
1: जी
0: अगर
1: हाँ
0: हमें उकसाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अच्छे
1: जी मैं
0: इंसान
1: अपने
0: की
1: आप को मतलब कंट्रोल करता हूँ कि सामने वाले को दिल से समझाता हूँ कि भाई मेरे कभी भी अगर किसी के साथ कोई भी बात हो जाए तो सबसे पहले उसको शांत कीजिए और शांत के साथ पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए।
0: क्या बात है।
1: और अगर इससे भी कंट्रोल अगर नहीं होता तो एक जगह आप बैठ जाइए और ठंडा पानी पीजिए और फिर मजा लीजिए।
0: क्या बात है, यही अच्छे इंसान की पहचान होती है। बड़ा अच्छा लगा आप अल्ताफ भाई आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी आज मैं पति पत्नी और तवा ऐसा गीत सुनूंगा एक दूसरे से खफा होना नहीं।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत शुक्रिया
1: जी।

0: हेलो,
1: हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर। मैं एकता क्लब सिंधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ।
0: इमरान शेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और कैसे
1: बहुत
0: हैं
1: बहुत
0: आप?
1: शुक्रिया सर। मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और आपकी जो प्रस्तुति रहती है सर, बहुत काबिले तारीफ रहती है।
0: यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है कि आपको हमारे प्रोग्राम, हमारे केंद्र से प्रसारित प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे प्रोग्राम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। क्या करते हैं इमरान जी?
1: सर मैं अपनी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं एमएससी एग्रीकल्चर किया है और अभी मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ सर।
0: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको। आज का हमारा जो विषय है, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं अपना गुस्सा, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा सर। गुस्सा तो सर कोई काम अगर बिगड़ जाता है तो जाहिर सी बात है आ जाता है, लेकिन हमें उन चीजों को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम गुस्से में अगर कोई काम खराब हो गया है और अगर हम उस पर गुस्सा दिखाते हैं तो शायद वो काम और खराब हो सकता है। ठीक है,
0: जी
1: तो सर हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जितना हम कंट्रोल रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही भाई। देखिए, ये तो हर इंसान की प्रवृत्ति है कि अगर उसके साथ कोई भी ऐसा कार्य होता है, उल्टा उसको गुस्सा आ सकता है ना?
1: जी सर,
0: वो किस कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
1: बिल्कुल सर,
0: लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमें गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से पर हम अपना कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है ना? कभी कभी कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर लेती हैं,
1: जी सर,
0: मारपीट भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई ऐसा अनैतिक कार्य हमसे हो जाता है गुस्से की हालत में। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। इमरान जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: और देखते हैं कि अब हमारे ये कौन से प्यारे लिसनर हैं। हेलो,
1: जी अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी परवेज सर, मैं सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ।
0: जी सुल्तान रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कैसे हैं आप?
1: जी अलहमदुल्ला ठीक है, आप लोग सही हैं, आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: बस सब बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं। हम भी ठीक हैं, आकाशवाणी परिवार में भी सब लोग ठीक हैं। क्या करते
1: जी
0: हैं
1: सर,
0: सुल्तान भाई?
1: मेरी शॉप है यहाँ पे कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली में कपड़े की,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: मैं वहीं कपड़े पे शॉप पे बैठा हूँ, और जो है दुकानदारी वो चलती है, मैं दुकान पे कस्टमर आते हैं।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको
1: जी
0: गुस्सा कब और क्यों आता है?
1: सर, ये टॉपिक तो आज हमारे लिए बिल्कुल तात्कालिक बैठा है सुन लो। क्योंकि
0: जी कैसे?
1: दुकानदारी में अक्सर ऐसा होता है, कुछ कस्टमर थोड़ा सा नाराज कर देते हैं हमको ना, तो
0: जी
1: गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम दुकानदारों वालों का कहना रहता है कि कस्टमर से गुस्सा करेंगे तो फिर किसे बुलाएंगे, तो
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: देर के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं अपनी, मतलब कुर्सी, और ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा सा बाहर चले गए, और
0: जी
1: सारी गुस्सा जो है थोड़ा शांत हो जाता है, फिर आके अपने फ्रेश मूड में आके दुकानदारी चालू कर देते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया बात
1: कभी
0: आपने
1: कभी ऐसा
0: कही।
1: होता है सर।
0: जी, हाँ नहीं, सब
1: जी
0: सब ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कुछ
1: जी
0: ग्राहक ऐसे
1: कुछ
0: होते हैं
1: हाँ
0: जो मतलब क्या कहते हैं, सामान तो लेते नहीं है और
1: जी,
0: ये
1: तो थोड़ा सा
0: दिखाओ
1: गुस्सा
0: वो
1: आ जाता
0: दिखाओ,
1: है,
0: तो उससे थोड़ा मतलब मन के अंदर तनाव आ जाता है।
1: लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आए, उम्मीद की रात तो शायद लेके जाए, और लेके ना भी आए तो फिर भी बात अच्छे से करते हैं कि वो हमारे यहाँ से खुश होके जाए, सेटिस्फाइड होके जाए।
0: जी बिल्कुल, दुकानदार का काम ही यही होता है कि ग्राहक से बड़ा पोलाइट वे में बड़ा प्रेम के साथ बोलें और गुस्सा तो
1: जी,
0: बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा है ना कि एक बार अगर आपने गुस्सा कर दिया तो दोबारा
1: तो
0: वो
1: वो
0: आपकी
1: फिर
0: दुकान पे
1: दोबारा नहीं
0: आएंगे ही
1: आएगा,
0: नहीं। तो एक तो आपका ग्राहक भी गया
1: और
0: और
1: फिर
0: साथ
1: हमारी कमाई
0: साथ
1: भी
0: कमाई
1: चलेगी।
0: भी चली गई। जी बिल्कुल बेहतर। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप सुल्तान दादा जी?
1: मूवी के नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत?

जी श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ढेर सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं हमारे लिसनर्स के, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे पास भेजे हैं, उसको हम इस अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरिडीह झारखंड से। आप कहते हैं कि आप अपनी पसंद भेजकर जब एक घंटे में मेरा नाम शामिल नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है, फिर दूसरे दिन की उम्मीद में गुस्सा ठंडा होता है। क्या बात है, हम तो कोशिश करते हैं कि आप अपने जो भी कमेंट्स हमें भेजें उसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। बहुत धन्यवाद आपका यासीन अनजान जी। आप हैं सतीश अनेजा जी, आप लिखते हैं कि आकाशवाणी के शानदार 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको

0: सभी हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनाएं। अब है हमारी श्रोता राधा नामदेव सहारनपुर से, जिनकी कॉल्स भी आप सुन चुके हैं स्टार्टिंग में आकाशवाणी के दीवाने में। आप कहती हैं कि जब मैं अपने घर में पोछा लगाती हूं और कोई चप्पल लेकर आए तो मेरी क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। क्या बात है, इतना गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए। और कहते हैं ना कि शांत रहने से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आप है हमारे श्रोता, ये कमेंट हमारे पास भेजा है विष्णु मस्किन जी ने। आप कहते हैं कि गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन असली समझदारी उसे संभालने में होती है। मुझे तो इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती, लेकिन लोगों के अनुभव के आधार पर इतना ज़रूर कह सकता हूं कि गुस्सा अक्सर तब आता है जब कोई हमारी बात ना समझे, बार बार गलत व्यवहार करे, अपनों से उम्मीद टूट जाए या मेहनत की कदर ना हो। गुस्से को शांत करने के कुछ अच्छे तरीके हैं। कुछ देर चुप रहना, गहरी सांस लेना, तुरंत जवाब न देना, मनपसंद गाना सुनना, थोड़ा टहलना और सोच लेना कि इस गुस्से से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि कई बार एक मिनट का गुस्सा सालों के रिश्ते ख़राब कर देता है। इसलिए शांत रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा मैसेजेस आपने लिख करके ये भेजा। रितिका मिस्किन, विष्णु मिस्किन, वानी आरब, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी, भवानी पेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से ये कमेंट हमारे पास आया था। बहुत शुक्रिया आपका। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, चरौदा बार, नवादा पारा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से आप लिखती हैं, गुस्सा तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, कोई अपमान करता है या गलत व्यवहार होता है। अधिक तनाव, थकान और चिंता भी गुस्से का कारण बनते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लेनी चाहिए, थोड़ी देर चुप रहना चाहिए और शांत मन से सोचना चाहिए। अच्छे विचार, संगीत, योग और बातचीत भी गुस्सा कम करने में मदद करते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। अब हैं हमारे श्रोता राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर से। आप कहते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा नमस्कार, तो आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मोबाइल ऐप पर आपके प्रोग्राम सुनते हैं और इंटरनेट की वजह से प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं, तब गुस्सा आता है। थोड़ी देर शांत होकर बैठने के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये तो आपकी मोहब्बत है कि इतनी दूर सादुल शहर राजस्थान में बैठकर आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। और रही बात इंटरनेट की, तो देखिए ये टेक्निकल समस्या है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हमारे प्रोग्राम आप तक पहुंचते हैं, आप अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिखाते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से। आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं किसी काम को समय पर करना चाहता हूं और वह किसी भी वजह से लेट हो जाता है। मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं और रस ड्राइविंग करते हैं, जगह जगह थूक देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि जो पब्लिक प्लेस हैं उसको साफ सुथरा रखने की, या जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं, यातायात के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सिंह रावत जी। और देखते हैं कि हमारे अब अगले कॉलर कौन है।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं उर्सी जावेद बात कर रही हूँ।
0: बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आज का टॉपिक आपको हमारा मालूम है?
1: जी आज का टॉपिक है कि आपको गुस्सा कब आता है और कैसे शांत करते हैं।
0: जी आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, कैसे शांत करते हैं आप अपना गुस्सा, क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर आप?
1: जी मैं तो ये कहना चाहूंगी, मुझे तो जब गुस्सा आता है जब मेरे जो डिजाइन होते हैं और जब मैं अपने बॉस को डिजाइन दिखाती हूँ इतनी मेहनत से, तो मैं उनको बनाती हूँ और फिर बाद में जब वो दो, उसमें अगर मैंने 10 डिजाइन तैयार किए हैं तो उसमें से अगर वो एक डिजाइन को अवॉइड कर देते हैं, 9 डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली वो कहना मेरी उसमें इतनी सारी मेहनत लगती है और वो एक डिजाइन अगर फ्लॉप हो जाता है ना, तो इस पे दुख होता है मुझे, तो इसीलिए मुझे उस पे गुस्सा आता है। और जब मैं घर पे जाती हूँ ना, तो फिर मेरी जूनियर सिस्टर से थोड़ी अनबन हो जाती है, मैं अपने सारा गुस्सा उस पे उतार देती हूँ।
0: नहीं तो

0: गुस्सा आता है तो उसको मतलब आप अपने मतलब बॉस की जगह अपनी घर में अपने परिवार के मेंबर्स पे उतार देती हैं।
1: एक्चुअली वो क्या है ना, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ. मैं जितना हो सके गुस्से को कंट्रोल में रखती हूँ, क्योंकि बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है. लेकिन जब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात होती है ना, तो थोड़ा मूड खराब हो जाता है.
0: जी बिल्कुल, कोशिश करना चाहिए कभी भी हमें गुस्सा आए तो हम अपने आप को कूल कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब गुस्सा आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है ना।
1: जी. और
0: और आज
1: अगर ज्यादा मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती और मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे दिल को बहुत रिलीफ फील होता है.
0: जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। कभी भी आपको गुस्सा अगर आए तो कोशिश कीजिए उसको शांत करने की, तब भी ना हो तो आप ऐसा म्यूजिक सुनिए जिससे कि आपको सुकून महसूस हो, है ना। कौन सा गीत सुनेंगी आज आप उर्फी जावेद जी?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगी आरजू मूवी का, दोस्ती करते हैं दोस्ती बन जाती है, ऐसे कुछ लिरिक्स रहेंगे उसके.
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: आपने ट्यून किया 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं। जहां हैं आप वहां हैं हम। ढेर सारे कमेंट्स और फोन कॉल्स हमारे पास आई और अब हम धीमे धीमे अपने कार्यक्रम के अंत की ओर पहुंच रहे हैं। ये कमेंट हमारे पास कुछ हैं। छिंदर छवि राम सिंह राजपूत का, आप कहते हैं कि हमें झूठ बोलने वालों पर गुस्सा आता है। सबको आता होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आना ही चाहिए। आप हैं प्रवीण चौहान, आपने अपना पता नहीं लिखा। आप लिखते हैं कि गुस्सा तब आता है जब सामने वाला गलती पर गलती करता रहता है और समझाने पर भी नहीं समझता। जब मैं बिजी होता हूँ और कोई बार बार आकर मुझे किसी कार्य को करने के लिए टोकता है तब मैं गुस्सा हो जाता हूँ। फिर उस काम को मैं बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे फिर भोजन करना ही क्यों ना हो। गुस्से को शांत करने के लिए मैं अपने कान में एयरफोन लगाकर गाने सुनता हुए या मोबाइल में कुछ देखते हुए सो जाता हूँ। क्या बात है, ये भी गुस्सा शांत करने का बहुत ही बेहतर तरीका है कि अपने आप को शांत कर लें या आप अपने आप को किसी कार्य में या काम में मसरूफ कर लें। साहिब शान, इन्होंने बस इतना ही लिखा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स को आप सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। देखते हैं कि हमारे अब ये आखिरी कॉलर कौन है और देखते हैं कि हमारे ये कॉलर कौन है इस वक्त फोन लाइन्स पर। हेलो,
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ
0: हो रही है। साहब कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ। जल्दी
0: आपका हमेशा खैर मकदम स्वागत।
1: जी शुक्रिया सर, कैसे हैं आप?
0: बस आपकी दुआएं हैं, मोहब्बत है, प्यार है और इसी मोहब्बत और प्यार के सहारे बस चल रहे हैं साहब।
1: सही है, ये प्यार मोहब्बत अपनापन बना रहना चाहिए आज के युग में, क्योंकि आज के कार्यक्रम का आपका विषय है जिसकी आपको गुस्सा कब और क्यों आता है। तो देखिए, गुस्सा आने की वजह तो सर बहुत सारी होती है। अगर मान लीजिए कोई किसी पे तोहमत लगा रहा है बिना वजह की, तब भी इस हाल में गुस्सा आ जाता है। और कोई किसी को बिना वजह परेशान कर रहा है तब भी गुस्सा आ जाता है। कोई किसी को छेड़ रहा है तब भी गुस्सा आ जाता है। बहुत सारी वजह है गुस्सा आने की, लेकिन ऐसे में अगर किसी को गुस्सा आ भी रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल करे और कोशिश ये करे कि गुस्सा किसी पे ना करे, किसी की वजह से गुस्सा ना आए। तो बेहतर है अगर गुस्सा आ भी जाए तो ठंडा पानी पी करके अपने आप को खामोश कर ले और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए तो सारा गुस्सा उसका ठंडा हो सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने लाल मोहम्मद अंसारी जी कही और साथ साथ आपने वजह भी बताई कि किस किस वजह से हमें गुस्सा आ सकता है और हमें,
1: क्योंकि बिना वजह किसी को गुस्सा नहीं आता है। जब गुस्सा आएगा तभी सामने वाला ही कोई खराब बात

0: करेगा तभी गुस्सा आ सकता है।
1: जी बिल्कुल, और हमें कोशिश करना चाहिए कि देखिए हम सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करें और कोशिश करें कि कोई ऐसी बात हमारे जुबान से ना निकले जिससे कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आए, है ना।
0: जी सर जी
1: कोशिश करना चाहिए हमेशा मिलजुल कर ही रहें, प्रेम के साथ रहें, और कहते हैं ना कि प्रेम से बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं है।
0: जी क्योंकि गुस्सा जो है कई चीजों को नुकसान भी कर सकता है। कभी कभी हम जाने अनजाने बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं तो ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमारा ही नुकसान होता है, और हमारा नुकसान हुआ तो फिर हमें उसके बाद अफसोस होता है, पछतावा होता है, उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लाल मोहम्मद अंसारी जी आपने कही, और प्रोग्राम में आपकी कॉल लगी। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से?
0: जी फिल्म का नाम है अमीरी गरीबी, इसका ये गीत है ओ मेरी सासू ओ मेरे साले बीवी करो मेरी मेरे हवाले, ये गीत सुनना चाहूंगा सर।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 102.4 FM पर। श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का, तो हम आपको बता दें हमारी इस सभा की शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत और हमारे आज के खिलाड़ी होंगे श्री पुनीत और आपसे बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। आज शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा, डॉक्टर अभिषेक सिंह से बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। विषय रहेगा जोड़ों की समस्या और उनके रोकथाम के समाधान। आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जनमंच, विषय रहेगा उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी होंगे आदर्श कुमार और काजल कंगवार। आज रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं श्री राजेश गौड़ और आपसे बातचीत करेंगे गौरव सक्सेना जी। शाम 6 हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी वैभव के साथ। कुछ खास है आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे पर जानकारी दी जाएगी और साथ ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर भी चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी बरेली द्वारा आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त आज के हमारे मेहमान होंगे अंश प्रताप सिंह। साथ ही होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्राम जगत धारा सिंह के साथ, चर्चा होगी रोजगार परक शिक्षा पर। साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम संस्कारों का समाज में मूल्य, जानकारी देंगे हिमांशु। साथ ही होगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक मंजरी। रात 8:15 पर और रात्रि 10 आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। 9 से 10 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। अब श्रोताओं, एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। सुबह 9 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। 9:30 पर एक और प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, प्रायोजक फोकस नेत्रालय बरेली। सुबह 10 आकाशवाणी के दीवाने में शुभकामनाएं संदेश देंगे तिलक राज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से आकाशवाणी के 90 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। आप सुनेंगे एफएम रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर, दोपहर में 2:30 पर और रात्रि 9 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। नमस्ते बरेली कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:15 पर। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आप

आपकी पसंद आप सुनेंगे प्रातः 10:05 पर। आपके खतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:00। सुबह 8:45 पर लोकगीत, 11:00 सबरंग और अपराह्न 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग। शाम 4:00 आप सुनेंगे माधुरी कश्यप को आकाशवाणी के दीवाने में, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। शाम 4:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ। नारी संसार आप सुनेंगे प्रियंका श्रीवास्तव के साथ कल शाम 5:30 पर, इसमें चर्चा होगी नवजात शिशु और टीकाकरण। एक वार्ता आपको सुनवाएंगे संयुक्त परिवार खुशियां अपार, वार्ताकार होंगी सिद्धि रस्तोगी। किचन और हेल्थ टिप्स आप सुनेंगे, इनसे मीडिया में आपकी मुलाकात करवाएंगे। कल शाम 6:00 आप सुनेंगे युववाणी, इसमें होगा ओबी और धूमधड़ाका और साथ ही होगा कुछ खास है आज। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, इसमें चर्चा होगी स्वास्थ्य का रखें ध्यान, साथ ही एक भेंट वार्ता कृषक अनुभव बातचीत श्री राम बहादुर साहू से, साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोकगीत। अक्षय भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत आप भेंट वार्ता सुनेंगे कल शाम 7:00। अनुरोध गीत का समय रहेगा कल शाम 7:31 पर। भजन संध्या आप सुन सकेंगे कल शाम 5:05। तो श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं भजन संध्या का। सुनते हैं ये पहला भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

0: स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, आकाशवाणी बरेली को इस समय आपने ट्यून किया हुआ है 100.4 FM पर। और हमारे एक साथी और इस समय जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, तो अपना नाम बताइए, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? भाई नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हमें लग रहा है हमारे कोई नियमित श्रोता ही उस समय कॉल लाइन पर है उस तरफ, अपना नाम बताइए।
1: जी हम बंटू भाई प्रजाप की बोल रहे हैं, ग्राम तथा कला से।
0: अरे वाह बंटू भाई, कैसे हो आप और बताओ घर में कैसे हैं सब लोग?
1: हम ठीक हैं, घर परिवार में ठीक हैं, आप आपके परिवार में और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: आकाशवाणी परिवार में भी सभी लोग बढ़िया हैं, आप सभी श्रोताओं की दुआएं हैं। तो अभी क्या चल रहा है, गर्मी खूब पड़ रही है, कैसे आप ध्यान रख रहे हो?
1: जी इस समय गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तो यही है मतलब अपना खान पान सही रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा हम तो पीते हैं और धूप में कम से कम निकलते हैं और निकलते टैप जो होता है उसको लगाकर ही निकलते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है, ध्यान आप जरूर रखो क्योंकि इस मौसम में अपना ध्यान रखना है, मौसम बड़ा लू वाला भी है, तो बाहर भी निकलो तो अच्छे से पानी वानी पी के निकलो और अच्छे से बांध के निकलो, अपने सर को ढक के निकलो, है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए फिर कॉल लगी है, कौन सा गीत आप सुनेंगे आज?
1: जी गाने के बोल हैं, कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, मन की आंखें खोल प्यारे, दम से दम मारेगा।
0: ठीक है, इस प्यारे से गीत को हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, ये है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, और आकाशवाणी बरेली पर आप इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं जिसका नाम है युववाणी, और युववाणी में कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि आज रविवार होता है और रविवार को हम बात करते हैं अपने श्रोताओं से। तो जब श्रोताओं से बात करनी है तो मैं हूं, और मेरे साथ एक और साथी भी आप देख पा रहे हैं, वो है राघव। तो राघव, आपको बता दें, एनवर्टीज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जर्नलिज्म में पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। और आपको बताया कि अभी आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हुए थे उसमें प्रतिभाग किया था, प्रतियोगिता हुई थी जिसमें उनका द्वितीय स्थान आया था। तो उसमें मौका मिला कि वो आकाशवाणी बरेली आए, देखें और बात करें, श्रोताओं से कार्यक्रम पेश करें। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राघव हमारे साथ कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। तो जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो सर जी, आपको और जो आपके साथ मित्र हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार है, और
2: नमस्कार जी, नमस्कार
1: नमस्कार सर जी। मैं जगदीश राय गर्ग, बस स्टैंड मानसा, पंजाब से बोल रहा हूँ सर।
2: अच्छा, पंजाब से बोल रहे हैं आप, क्या
1: सर,
2: करते हैं
1: सर,
2: आप?
1: पंजाब से।
0: तो जगदीश जी, बहुत अच्छी जगह से आप बात कर रहे हैं पंजाब से, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: सर जी, अब तो मैं बिल्कुल सेवा मुक्त हूँ। पहले मेरी दवाइयों की दुकान थी, 35-40 साल मैंने दवाइयों की दुकान की, और अब पूरी तरह मैं सेवा मुक्त हो चुका हूँ। आनंद लेता हूँ जीवन का, और रेडियो खूब सुनता हूँ, खूब आनंद लेते हैं।
2: जगदीश जी, जरा ये बताइए हमें कि पंजाब का मौसम कैसा हो रहा है?
1: सर आजकल तो पंजाब का मौसम बहुत गर्म हो चुका है जी, पूरी तरह गर्मी अपने जौगन पे आ चुकी है। पहले थोड़ी सी राहत रही, हालांकि गर्मी एक बार पहले भी काफी बढ़ गई थी, फिर बीच में राहत का दौर भी आया, कोई बरसात होती रही, तो अब वो सब चली गई। अब पूरी तरह गर्मी का लगातार प्रकोप जारी है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं से जानते हैं कि वो गीत कौन सा सुनेंगे, तो आप गीत बताइए कौन सा सुनेंगे आज कॉल लगी है तो।
1: सर आज मैं गीत सुनूंगा, फिल्म है जी अनजाना, और उसमें रफी साहब जी और सुमन कल्याणपुर जी का गाया हुआ एक गीत है।
0: आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों को बता देंगे कार्यक्रम युववाणी में हेलो फ्रेंड्स जो आता है प्रत्येक रविवार को आता है, इसकी रिकॉर्डिंग दोपहर ठीक 1 बजे होती है। हमारा नंबर है 0581-251-7200, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपने कॉल किया जगदीश जी, सुनिए गीत। धन्यवाद
1: सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओ, आज हमने कार्यक्रम युवाणी में आपसे एक प्रश्न भी पूछा था और आज का सवाल हमारा है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, और आप सभी ने इसके सही उत्तर दिए हैं और इसका सही उत्तर है पुष्प। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में आपके साथ दो साथी मौजूद हैं, मैं हूं वैभव और
1: और मेरा नाम है राघव।
0: जी। तो हम बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन बात कर रहे हैं इस समय फोन लाइन पर?
2: हेलो
0: हाँ जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं?
2: सर, मैं सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी राजेश जी, कैसे हैं आप?
2: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरे घर परिवार में सब ठीक है। आपकी आवाज सुन के सर और अच्छे हो जाते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी आवाज सुन के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
2: सर अनुराग फिल्म से गीत है तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, वो क्या है एक मंदिर है।
0: ठीक है, हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। और देखिए, हम आपको हर दिन युववाणी में एक युवा से रूबरू कराते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही युवा के पास, एक छात्रा के पास पहुंचे हैं। अभी आपको पता है, हाल ही के दिनों में जैसे चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारा यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया या आईसीआईसी बोर्ड हो गया, सभी ने अपने रिजल्ट जो है वो जारी किए हैं। इसी सिलसिले में सीबीएसई ने भी अपने रिजल्ट जारी किए और सीबीएसई में बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। तो हम भी एक ऐसी ही छात्रा के पास पहुंचे हैं। मैं उनसे उनका खुद ही परिचय जानना चाहूंगा। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम नैना भटनागर है।
0: तो नैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे आप, और बताइए कैसा रहा आपका रिजल्ट, कैसा रहा सब कुछ?
1: रिजल्ट अच्छा रहा और सब बढ़िया, मतलब अच्छे से हो गया। और
0: हमने सुना है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं?
1: जी मेरे 96.2%।
0: अरे वाह, 96.2%। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कैसा लग रहा है ना, आप तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास, लोग शुभकामनाएं दे रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, है ना?
1: जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग अलग है, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है,
0: तो अच्छा,
1: खुश
0: सच
1: है
0: सच
1: सब
0: बताइए,
1: बहुत।
0: आपने वैसे सोच रखा था 96 आएंगे, मतलब कितना स्कोर लेके चल रहे थे?
1: जी पक्का तो नहीं पता था कि 96 आएंगे, 90 से ऊपर का था, लेकिन गोल था कि हाँ 95 से ऊपर लाना है।
0: अच्छा, चलो तो बढ़िया बात है। तो कौन आपके सब्जेक्ट कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो वीक रहे होंगे, या फिर जिसमें आपको लगा हो कि मेरे बहुत कम मार्क्स आएंगे, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स थे और फिर कैसे आपने तैयारी करी हो उसमें?
1: जी ऐसे ही सब्जेक्ट मेरे दो थे, एक तो फिजिक्स और एक होम साइंस। फिजिक्स में तो वही मतलब दिक्कत होती है, तो उसमें तो मेहनत ही करी थी, जितने ज्यादा क्वेश्चन हुए थे। और होम साइंस मुझे पसंद नहीं था, तो उसपे भी मतलब करा, उसमें एंड में करा था मैंने।
0: अच्छा, तो कितने मार्क्स आए उन दोनों सब्जेक्ट्स में फिर?
1: फिजिक्स में 87 और होम साइंस में 98।
0: अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। और किन किन सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए?
1: और बाकी बायो में 94, केमिस्ट्री में 94, इंग्लिश में 98।
0: चलो तो बढ़िया बात है। तो अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है आपको आगे?
1: आगे अभी डॉक्टर बनना है, तो नीट की प्रिपरेशन करनी है।
0: अरे वाह, नीट की तैयारी करनी है, तो डॉक्टर क्यों
1: जी
0: बनना चाहते हो आप, क्यों सपना देख रखा है?
1: जी वो एक्चुअली मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी ब्रेन हैमरेज से, तो मुझे डॉक्टर बनना।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छा आपका ये डिसीजन है, और आप ये चाहते हो कि और किसी के साथ कोई परेशानी ना आए कभी, उसे मदद कर पाओ दूसरों की, है ना?
1: जी
0: और भले ही आपकी अभी माता जी आपके साथ नहीं है, लेकिन भले ही वो जहाँ भी होंगे वो आपको देख रहे होंगे, और उन्हें बड़ा गर्व हो रहा होगा कि उनके बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना? तो अगर जैसे आप लोगों को जो स्टूडेंट सुन रहे हैं इस समय, और बहुत से लोग सोच रहे होंगे उनको भी अच्छा स्कोर करना है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते होंगे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है और कैसे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कुछ आप बताना चाहें तो?
1: जी टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से फोकस होके करना है, ध्यान देना है, सब हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है उस पर ज्यादा फोकस करें, बाकी बस कंसिस्टेंट रहें, सब हो जाएगा।
0: तो आपने कहाँ से तैयारी करी थी, ऑनलाइन कर रहे थे या ऑफलाइन तैयारी कर रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे?
1: ऑफलाइन कोचिंग थी फिजिक्स केमिस्ट्री की, बाकी सब ऑनलाइन करे थे सारे सब्जेक्ट्स मैंने खुद से।
0: तो ऑनलाइन जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भटक भी जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और अब जैसे ऑनलाइन आप
1: जी
0: देख रहे हो मोबाइल में कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कोई कभी देखने का मन
1: जी
0: हुआ कि यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं या रील देख लेते हैं, तो उस समय कैसे आप ध्यान रखते हो?
1: वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मैं नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ती थी, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो।
0: चलो तो बहुत बढ़िया बात है, और आकाशवाणी बरेली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने जो सपने देख रखे हैं वो आपके पूरे हो, है ना? आपने समय दिया इसके लिए,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी थैंक यू।
0: जी, थैंक यू। श्रोताओ, देखिए कार्यक्रम में अब समय नहीं रहा कि आपसे और बातें की जाए, तो आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो राघव, चलिए हम अनुमति ले लेते हैं।
2: जाते जाते वैभव जी, मैं बस दो लाइनें जरूर कहूंगा
0: जी।
2: कि युवाओं के लिए, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती
0: बिल्कुल,
2: है।
0: हौसलों से उड़ान होती है। और इसी उम्मीद के साथ श्रोताओं, हम आपसे बात करते रहेंगे, कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। अब अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नया लाने के वादे के साथ अपने इस दोस्त वैभव और
2: राघव
0: को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी वैभव और राघव अग्निहोत्री के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत धारा भैया के साथ।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी ग्रामीण भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत में। और आज दिन है इतवार को, और आज के दिन तो आपको बहुत ही इंतजार रहता है कि हम आपकी पसंद के लोकगीत सुनवाएंगे, आपके द्वारा भेजे गए पत्र और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो हम आप तक पहुँचाते हैं, और वो जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के काम की होती हैं। जैसे कि हम खेतीबाड़ी करते हैं, कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, और ऐसी भी कुछ शिक्षाएं हैं जिन्हें हम प्राप्त करते हैं और अपनी खेतीबाड़ी में अपने रोजगार में उनको शामिल करते हैं। खैर, इन सब बातों के बारे में हम आपसे बातचीत अवश्य करेंगे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में कुछ वार्ताकार भी आते हैं जो हमें अपनी महत्वपूर्ण बातों से हमारे लिए वो जानकारी देते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। आज हम संस्कारों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम सुबह निकल जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं तो हम अपने बच्चों पर ध्यान ना दे करके फिर अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मिल करके अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ें और उनसे वो सारी बातें कहें जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। खैर, हम तो आपसे बातचीत करते रहेंगे और ये जो वार्ता है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हिमांशु, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए सुन लेते हैं।
1: समाज में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार व्यक्ति के व्यवहार, सोच और चरित्र को दिशा देते हैं। ये केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं होते बल्कि जीवन को सही मार्ग पर चलाने वाले नैतिक मूल्य भी हैं। संस्कार व्यक्ति को ईमानदार, विनम्र और जिम्मेदार बनाते हैं। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। संस्कार परिवार और समाज को जोड़कर रखते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम और सहयोग की भावना संस्कारों से ही आती है। संस्कार व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझाते हैं। इससे समाज में अनुशासन और शांति बनी रहती है। अच्छे संस्कार दूसरों के दुख सुख को समझने और मदद करने की प्रेरणा देते हैं। इससे समाज में भाईचारा बढ़ता है। संस्कार हमारी परंपराओं और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इससे समाज अपनी पहचान बनाए रखता है। संस्कार समाज की नींव है। जिस समाज में अच्छे संस्कार होते हैं वहाँ शांति, सम्मान और प्रगति बनी रहती है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देना आवश्यक है ताकि वो आदर्श नागरिक बन सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन नहीं जी सकता, इसलिए समाज में रहकर उसे अनेक नियमों, परंपराओं और नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ता है। इन मूल्यों और आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा संस्कार से मिलती है। संस्कार व्यक्ति के जीवन का वो आधार है जो उसे सही और गलत का ज्ञान कराते हैं तथा उसे एक आदर्श नागरिक बनने की दिशा देते हैं। किसी भी समाज की उन्नति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती बल्कि उसके लोगों के चरित्र, नैतिकता और व्यवहार से होती है। यही कारण है कि समाज में संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है शुद्ध करना, परिष्कृत करना या उत्तम बनाना। संस्कार वो गुण और शिक्षाएं हैं जो व्यक्ति को सभ्य, विनम्र और नैतिक बनाते हैं। माता पिता, गुरु, परिवार और सामाजिक व्यक्ति को बचपन से ही विभिन्न प्रकार के संस्कार प्रदान करते हैं। यही संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, अनुशासन का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से कार्य करना आदि, ये सभी अच्छे संस्कारों के उदाहरण हैं। समाज में संस्कारों का महत्व अत्यधिक है। यदि किसी व्यक्ति में अच्छे संस्कार नहीं है तो वो शिक्षित और धनवान होने के बावजूद समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। संस्कार व्यक्ति को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और उसे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। संस्कार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसके व्यवहार और चरित्र से होता है। अच्छे संस्कार व्यक्ति को सत्यवादी, ईमानदार, विनम्र और दयालु बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में आदर्श माने जाते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद

और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों के जीवन में अच्छे संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपने संस्कारों के बल पर समाज को नई दिशा दी। संस्कार परिवार को जोड़कर रखते हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम और सहयोग की भावना रखते हैं, तब परिवार सुखी और मजबूत बनता है। आज के समय में परिवारों में बढ़ते विवादों और टूटते रिश्तों का एक बड़ा कारण संस्कारों की कमी है। यदि बच्चों को बचपन से ही बड़ों का आदर करना, अनुशासन में रहना और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना सिखाया जाए तो परिवार में सदैव प्रेम और शांति बनी रहती है। अच्छे संस्कार समाज में शांति और अनुशासन स्थापित करते हैं। संस्कार व्यक्ति को कानून और सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाते हैं। जब समाज के लोग नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तब अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार कम होते हैं। आज समाज में बढ़ती असहिष्णुता, अपराध और भ्रष्टाचार का मुख्य कारण नैतिक मूल्यों का पतन है। यदि लोगों में अच्छे संस्कार हो तो समाज अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण बन सकता है। संस्कार व्यक्ति में मानवता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न करते हैं। दूसरों की सहायता करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना तथा समाज के कमजोर वर्गों का सम्मान करना अच्छे संस्कारों का ही परिणाम है। एक संस्कारी व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज और देश के हित को भी महत्व देता है। यही भावना समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देती है। संस्कार हमारी संस्कृति और परंपराओं के रक्षक हैं। भारत जैसे देश में विविधता के बावजूद एकता का आधार हमारी संस्कृति और संस्कार ही है। त्योहारों का महत्व, बड़ों का सम्मान, अतिथि देवो भव की भावना, गुरु का आदर, ये सभी भारतीय संस्कारों के उदाहरण हैं। यदि नई पीढ़ी को अपने संस्कारों और परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए संस्कार संस्कृत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृत के प्रभाव के कारण लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आया है। भौतिक सुख सुविधाएं की दौड़ में लोग नैतिक मूल्यों और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके कारण परिवारों में संवाद कम हो गया है। बच्चे अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताने के बजाय अधिक समय डिजिटल दुनिया में बिताते हैं। इसका प्रभाव उनके संस्कारों पर पड़ रहा है। आज समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ना, पारिवारिक विवाद, अपराध और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं संस्कारों की कमी को दर्शाती है। इसलिए वर्तमान समय में संस्कारों की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। बच्चे अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से ही सबसे पहले सीखते हैं। यदि परिवार में प्रेम, अनुशासन और नैतिकता का वातावरण होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को केवल अच्छी शिक्षा ही ना दें बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। बच्चों को सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने, समय का महत्व समझने और दूसरों की सहायता करने की शिक्षा देनी चाहिए। आज कई माता पिता अपने बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो प्रदान करते हैं लेकिन उनके साथ समय नहीं बिताते। इससे बच्चों में संस्कारों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए परिवार का दायित्व है कि वो बच्चों के नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दें। विद्यालय केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं है बल्कि वो संस्कार निर्माण का केंद्र भी है। गुरु विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। विद्यालयों में अनुशासन, समय पालन, सहयोग, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित किए जाते हैं। प्रार्थना सभा, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार देना था। आज भी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में सफल होने की शिक्षा ना दें बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी दें। समाज और मीडिया का भी संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में यदि अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए जाएं तो लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वही अश्लीलता, हिंसा और गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मीडिया को चाहिए कि वो ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करें जो नैतिकता, मानवता और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दें। समाज के सभी लोगों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ अच्छे संस्कार का सम्मान हो। जहाँ संस्कारों का अभाव होता है वहाँ अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। असत्य, भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच और स्वार्थ जैसी बुराइयां बढ़ने लगती हैं। परिवार टूटने लगते हैं और समाज में अशांति फैल जाती है। संस्कार के बिना व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान नहीं करता। इससे समाज में आपसी विश्वास कम हो जाता है। आज बढ़ते अपराध, नशाखोरी, बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा और नैतिक पतन संस्कारों की कमी के ही परिणाम है। इसलिए समाज को इन समस्याओं से बचाने के लिए संस्कारों का संरक्षण आवश्यक है।

0: संस्कार समाज की आत्मा है। वो व्यक्ति को केवल शिक्षित नहीं बल्कि सभ्य और नैतिक भी बनाते हैं। अच्छे संस्कार से ही परिवार मजबूत बनते हैं, समाज में शांति स्थापित होती है और राष्ट्र प्रगति करता है। आज के आधुनिक युग में भले ही विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सरल बना दिया है, लेकिन संस्कारों के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए प्रत्येक माता पिता, शिक्षक और समाज का ये कर्तव्य है कि वो नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें। यदि हम अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, प्रेम, दया और सम्मान जैसे संस्कारों को अपनाएं, तो समाज में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है। वास्तव में संस्कार ही किसी भी सभ्य और विकसित समाज की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: भैया बहनों, अभी आपने सुनी संस्कार की समाज में क्या मौलिकता है, क्या महत्वता है। हमारे जीवन में संस्कार बहुत ही जरूरी हैं। ये सब बातें अभी आपने हिमांशु से सुनी और हम आप सभी से भी ये कहेंगे कि अगर संस्कार हमारे जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई अगर हम कर रहे हैं तो हम नैतिक शिक्षा पर भी जरूर ध्यान दें। आज विद्यालयों में नैतिक शिक्षा विषय ही समाप्त कर दिया गया है, नैतिक शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे समय में नैतिक शिक्षा एक पुस्तक हुआ करती थी जिसमें सारे संस्कार हम सब के बारे में बताया जाता था और हम लोग उनका पालन करते थे। खैर कोई बात नहीं, अब हम आपके उन क्षणों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिसका आपका बहुत समय से इंतजार है, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए पत्र जो हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपकी पसंद पर एक मधुर लोकगीत सुनवा देते हैं, हमसे ना होए गोरख धंधो। इसे स्वर दिया है सावित्री दीक्षित ने और इस मधुर लोकगीत को सुनने के लिए हमारे पास पत्र आया है ग्राम शरीफनगर, तहसील बहड़ी, जिला बरेली से। लिखने वाले हैं संजय, श्यामाचरण, कृष्णपाल और उनके परिवार के बहुत से सदस्य हैं। कनमन से जो हैं लाला राम और उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आइए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा देते हैं ये मधुर लोकगीत।

इस मधुर लोकगीत को सुनने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया पर कमेंट किया है सागर मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, हिमानी तिवारी, लखनादावल जिला सिवनी से रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे और रानू चौबे, जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान, गुलफान, इसरार और नरगिस खातून, ग्राम दुबरी हजरतपुर तहसील दातागंज जिला बदायूं से लिख रहे हैं पुष्पेंद्र कुमार यादव, ऋतिक कुमार यादव, अभिषेक यादव, अनूप यादव, रिंकी यादव, सलोनी यादव और उनके परिवार के सदस्य। अगला लोकगीत बहुत ही जानकारी परक है और पत्र में बहुत ही विस्तार से लिखा है कि हमारे गेहूं के खेतों से खेत खाली हो चुके हैं और हमारे खेतों की जो मिट्टी है अब गर्मी में उसकी जुताई करनी चाहिए और जुताई करने के बाद हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी करानी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर हम अपने खेतों से कोई फसल लेते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करने के बाद अगर हमें उसका फसल उत्पादन सही से नहीं मिल पाता है तो हाथ पर हाथ रख करके सोचते हैं आखिर क्या कमी रह गई। तो कमी पकड़ में नहीं आती, कमी पकड़ में आती है तब जब हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराते हैं। बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है इन्होंने और ये पत्र लिखने वाले हैं ग्राम कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और उनके परिवार के सदस्य हैं। बहुत ही अच्छी बात जब कही है इन्होंने तो आइए हम भी इनकी फरमाइश पर एक बहुत ही अच्छा मधुर लोकगीत है जिसमें कुछ जानकारी भी दी गई है और हमें चेतावनी भी दी गई है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें अपने खेतों से अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इस गीत को स्वर दिया है ओम प्रकाश ने और इसके बोल हैं किसानों मिट्टी चेक कराओ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सोशल मीडिया पर मधुर लोकगीत सुनने के लिए हमें लगातार फरमाइश मिल रही हैं। यह हैं सराय पिपरिया तहसील दातागंज जिला बदायूं से लिखने वाले हैं रघुवंश प्रजापति, हरवंश प्रजापति, मुनेंद्र प्रजापति, राममूर्ति प्रजापति, वीरमती प्रजापति, पायल प्रजापति और उनके परिवार के सदस्य। ग्राम सहानपुर तहसील बिसौली जिला बदायूं से आरिफ अली इदरीसी, लल्ला मियां इदरीसी, मोहम्मद अकील इदरीसी, आसावी, फरजानावी, सनावी, प्यारीसी, गुड़िया, अलेनावी और इदरीसी परिवार। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और उनके मम्मी पापा। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जगेल, मोरस जगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जगेल और नंदनी जगेल। समा रेडियो क्लब कस्बा जादवपुर बरेली से समा सेफ सलीम सेठ, सबनम सैफी, आफरीन सैफी, असी सैफी और उनके परिवार के लोग। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। दुविया नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आप हैं मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। आप सभी ने एक मधुर लोकगीत जिसके बोल हैं, कैसे लिख दूं हाल जिया का, इसे स्वर दिया है रुचि शुक्ला ने। आइए इस मधुर लोकगीत को सुनकर हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं।

इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम लोकमंजरी ग्राम जगत यहीं पर संपन्न होता है। यदि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत पसंद आया हो और अपनी पसंद के फरमाइशी लोकगीत सुनना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए पत्र लिख भेजिए या फिर सोशल मीडिया पर कमेंट करिएगा। पत्र लिखने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम ग्राम जगत लोकमंजरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड है 24011। पता एक बार फिर सुन लीजिएगा, कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड है 23001। इस पते पर हमें पत्र लिख दीजिए और अपनी पसंद के लोकगीत सुनिएगा। इसी के साथ अपने भैया धारा को दीजिए अनुमति। भैया बनो, राम राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत धारा भैया के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेहतनामा। सेहतनामा में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, और आपसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।

0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश योगेंद्र। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जोड़ों की समस्या से परेशान होते होंगे। जी हाँ, जोड़, और खासतौर पे जो पैरों में हमारे जोड़ होते हैं, घुटने के, टखने के, इनसे हमारी जो गति होती है वही रुक जाती है। उठ के चलना मुश्किल हो जाता है और दौड़ना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो जोड़ों में जो ये समस्या होती है, ये क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसको कैसे हम समय रहते रोक सकते हैं और क्या उपचार हो सकता है, इस पर बातचीत आज हम कार्यक्रम में करेंगे। और इसके लिए हमने अस्थि रोग विशेषज्ञ को बुलाया है, वो हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक आप सबके सामने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आया हूँ।
0: जी, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो शरीर में जोड़ कौन कौन से होते हैं हमारे, क्योंकि जो बेसिक चीज है बहुत सारे श्रोता नहीं भी जानते होंगे हमारे।
1: देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो जोड़ों में अगर किसी इंसान को समस्या होती है तो या फिर कूल्हे के जोड़ में होती है या घुटने में होती है, नीचे जो एंकल जिसको टखना बोलते हैं वहां पे दिक्कत होती है, चौथा जो प्रमुख जोड़ जो हमारे शरीर का रहता है वो है हमारा कंधा।
0: कंधा
1: तो मुख्यतः ये चार जोड़ रहते हैं जो बड़े जोड़ होते हैं। वैसे देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जोड़ होते हैं शरीर में, कई सारे जोड़ हैं, पर प्रमुखता इंसान जो होता है वो अगर इन चार जोड़ों में दिक्कत आए तो अपना कार्य करने में उसको ज्यादा कठिनाइयां होती हैं।
0: जी, और इस कार्यक्रम में हमारा विषय घुटनों को लेकर के है, तो घुटने में जो समस्याएं होती हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, कई बार बैठ के आदमी उठता है तो बड़ी मुश्किल होती है, टक टक की आवाज आती है, तो क्या लक्षण होते हैं शुरुआती जिनसे आदमी पहचान सकता है कि हाँ भाई हमारे घुटने में कुछ समस्या है।
1: घुटने का जोड़ हमारा शरीर का सबसे प्रमुख जोड़ है। हमारे पूरे शरीर का वजन दो जोड़ों के होते हुए हमारे नीचे पैरों में जाता है, एक है कूल्हा और दूसरा है घुटना।
0: अच्छा,
1: तो घुटने के जोड़ में हमारे सामान्य स्थिति में उसमें कार्टिलेज होता है, एक चिकनाई की परत होती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो चिकनाई की परत धीमे धीमे कम होती जाती है।
0: अच्छा,
1: कार्टिलेज घिसता जाता है।
0: तो वो उम्र की वजह से होता है या कुछ और वजह से?
1: बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, उसमें से उम्र एक कारण है।
0: अच्छा,
1: उम्र की वजह से दिक्कत ये आती है कि इंसान की हड्डियां कमजोर होती हैं, कार्टिलेज घिसता है, जो चिकनाई की परत होती है वो घिसती है, तो हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस आपने बहुत ही कॉमन शब्द है, बहुत ही सामान्य लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कि गठिया हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है। ऐसे ही अगर उम्र के साथ होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, परंतु अगर हमारे खून में कुछ कमी की वजह से ही अर्थराइटिस होता है तो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठियावाद बोलते हैं।
0: अच्छा, तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं?
1: उम्र के साथ साथ नॉर्मली इंसान का घुटना 40 साल की उम्र तक एकदम बढ़िया रहता है। 40 साल के बाद जैसे जैसे हड्डियां कमजोर होती हैं वैसे वैसे उसका कार्टिलेज जो चिकनाई की परत होती है वो भी इंसान की घिसने लगती है। किसी भी इंसान को शुरुआत में किसी भी घुटने में अंदर की तरफ दर्द होता है।
0: अच्छा,
1: जब वो चलता है तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब अंदर की तरफ घुटने में दर्द हो रहा है, शुरुआती लक्षण वही होते हैं।
0: अच्छा अच्छा, और जैसा कि हम बता रहे थे कि टक टक की आवाज कर,
1: बिल्कुल
0: उठने बैठने पे,
1: बिल्कुल,
0: तो ये क्या है?
1: जब अंदर की तरफ दर्द होना किसी भी इंसान को शुरुआत होता है, हमारे घुटने में तीन कोने होते हैं, तीन कंपार्टमेंट होते हैं। एक अंदर वाला जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो अंदर का घुटना होता है, ऐसे एक बाहर का घुटना होता है, इसको लेटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और तीसरा आगे जो कटोरी होती है, पटेला जिसको बोलते हैं, वो कंपार्टमेंट होता है।
0: अच्छा,
1: शुरुआत में अंदर वाला कंपार्टमेंट ज्यादा घिसता है, उसकी वजह से इंसान को दर्द होना शुरू होता है, पर घुटने में टक टक की आवाज नहीं आती है।
0: अच्छा,
1: जैसे जैसे बाकी कंपार्टमेंट भी घिसना शुरू हो जाते हैं तो हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है, जिससे कि वो कट कट की आवाज आना शुरुआत होती है। अगर इंसान शुरुआत की स्थिति में ही जब उसका अंदर का कंपार्टमेंट जो है, अंदर का हिस्सा जो है, वो अफेक्ट हो रहा है, दर्द होना शुरुआत हो रहा है, अगर कोई भी इंसान उस स्थिति में आ जाता है तो उस स्थिति में उसका बाकी का घुटना बचाया जा सकता है अर्थराइटिस से।
0: अच्छा अच्छा, अब ये बात है कि अर्थराइटिस होने के तो कुछ लक्षण ये हैं, लेकिन वजह जैसा कि आपने बताया कि एक उम्र है, उसके अलावा भी बहुत सारी वजहें हैं, तो बाकी क्या कारण हैं इसके?
1: देखिए, कुछ लोग तो जो है उनका कहा जाए कि बचपन में किसी इंसान को चोट लग गई और उसका मान लो

0: घुटना जो है वो घुटने में चोट लगी जिसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर हो गया, उन लोगों में अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होती है। दूसरा, खेलते हुए चोट लग जाने के कारण, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं तो बीच बीच में उन सब के बारे में बात करता रहूंगा, खेलते समय अंदर हमारे तंतु होते हैं, जैसे हड्डियां होती हैं वैसे ही अंदर तंतु होते हैं, लिगामेंट जिसको बोलते हैं। अगर लिगामेंट टूट जाए, तंतु टूट जाए, तो घुटना जो है वो लचक खाता है। अगर घुटना लचक खाएगा तो क्या होगा कि हड्डी हड्डी से ज्यादा रगड़ेगी, हड्डी हड्डी से ज्यादा रगड़ेगी तो आर्थराइटिस जल्दी डेवलप होगी। तीसरी चीज, जिन कुछ लोगों में वजन ज्यादा होने के कारण भी अर्थराइटिस जल्दी डेवलप होती है, सामान्यतः जल्दी उनकी पैरों में अर्थराइटिस डेवलप होती है, एज कंपेयर टू अगर हम उसकी तुलना करें किसी अन्य इंसान से जो कि फिट है, उसका वजन जो है वो ज्यादा नहीं है।
1: अच्छा, वजन ज्यादा होने से उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह
0: बिल्कुल
1: से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, और क्या कुछ किसी चीज की कमी की वजह से भी होता है?
0: बिल्कुल होता है।
1: जी
0: हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो, आजकल ज्यादातर लोगों की डेस्क जॉब हो गई है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो सुबह घर से निकलते हैं, कार में जाते हैं, घर जा ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं एसी में, वापस शाम को आते हैं, सूर्यास्त हो चुका होता है, तो सूरज में निकलना ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी के कारण से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। देखिए, विटामिन डी एक गेट की तरह, आप चैनल की तरह उसको समझिए, जो कैल्शियम को हड्डी के अंदर लेके आता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा है तो कैल्शियम खून में बहता रहेगा, हड्डियों के अंदर नहीं आएगा। तो विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है हड्डियों को मजबूती देने के लिए।
1: मतलब कि इसमें कैल्शियम का भी रोल है, कैल्शियम की कमी की वजह से।
0: बिल्कुल है।
1: कार्टिलेज जो घिसने की बात कही आपने, वो कैल्शियम की कमी से है?
0: नहीं नहीं
1: वो नहीं है।
0: नहीं नहीं
1: लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से।
0: हड्डियां कमजोर होने की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी इंसान खड़ा हुआ, आपने बहुत ही काफी लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में, उनके पैर मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं।
1: टेढ़े हो जाते हैं बिल्कुल।
0: तो पैर जो टेढ़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हड्डियां कमजोर हैं। अब इंसान चलता रहता है, अब कमजोर हड्डियों की वजह से प्रेशर पड़ के दब जाता है। आप सामान्यतः अगर रुई को रख के उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो दब जाएगी, लोहे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो नहीं दबेगी।
1: नहीं दबेगी।
0: आप रुई को मान लीजिए कि रुई जो है वो किसी बूढ़े इंसान की हड्डियां हैं और लोहा जो है वो जवान इंसान की हड्डियां हैं, तो अगर उस पे लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से वो हड्डी जो है वो मुड़ जाती है।
1: अच्छा।
0: मुड़ने की वजह से बाद में कार्टिलेज जो है, अलाइनमेंट गड़बड़ होता है इंसान का, तो कार्टिलेज जल्दी खिंचता है।
1: अच्छा, ये चीज है। और तो विटामिन डी की बात हो गई, वो एक तरह से गेट है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम की कमी से है। दूसरा उम्र है, और भी कुछ चीजें हैं कारण हैं?
0: सामान्यतः अगर जो लोग व्यायाम करते रहते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी व्यायाम के साथ साथ अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वजन वगैरह उठा रहे हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि उनकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। हमारे शरीर का वजन अगर जब इंसान खड़ा होता है तो केवल हड्डियों पे ही नहीं जाता है, मांसपेशियों पे भी जाता है। अगर मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हड्डियों पे वजन उतना ही कम पड़ेगा, अगर मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो हड्डी पे ज्यादा वजन पड़ेगा।
1: अच्छा, ये बात है। मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो अपने मसल्स को
0: मजबूत करें
1: ताकि हड्डियों पे
0: उतना प्रेशर ना पड़े। इसीलिए जैसे जैसे जो भी मरीज मेरे आते हैं जिनकी उम्र 50-55 साल होती है, मैं उनको ये बात जरूर बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता हूँ आप जिम जाके 10 किलो 15 किलो का वजन उठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हैं, पीछे स्पाइन इंजरी वगैरह के चांसेस में ज्यादा हो जाते हैं। बट मैं बोलता हूँ घर पे 2-3 किलो के वजन से अपना थोड़ा कर्ल्स वगैरह या फिर थोड़ा बहुत बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहिए।
1: बिल्कुल, इसका मतलब कि व्यायाम करना इसके लिए एक उपचार, रोकथाम हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें क्या नशे की आदत जिनको लग जाती है,
0: बिल्कुल
1: उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है?
0: बहुत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम आज की स्थिति में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज के साथ में बढ़ती रहती है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं, दुष्प्रभाव भी हैं। आजकल बचपन से ही एक तो बच्चे जो है वो मोबाइल पे लगातार लगे रहते हैं, नशा अलग अलग तरीके का होता है। आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं मैं उससे विपरीत भी एक उससे अलग भी कुछ चीजें बता देने की कोशिश करूंगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे मोबाइल भी लगातार देखते हैं वो भी एक तरीके का नशा है।
1: नशा ही है, बिल्कुल है।
0: ठीक है। दूसरी एक सबसे मोबाइल लगातार देखने से क्या है कि बच्चा बचपन से ही व्यायाम नहीं कर रहा है, वो बाहर धूप में खेलने नहीं निकल रहा है, ठीक है।
1: और आजकल तो लेट भी उठते हैं
0: बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, हाँ, तो वैसे ही बच्चे लेट उठते
1: बिल्कुल, वो 10-10 बजे उठते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज सोशल मीडिया की वजह से जो अच्छी चीजें आई हैं वो आई

0: है। दुष्प्रभाव ये आए हैं कि बचपन से ही बच्चे लोग जो है सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, इसके नशे का सेवन करना ज्यादा कर देते हैं। बड़े लोगों में भी जो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, इसमें क्या होता है, निकोटीन रहती है। निकोटीन का इसका एक दुष्प्रभाव ये रहता है कि हमारी जो धमनियां होती हैं, रक्त की जो धमनियां जो खून लेके जाती हैं, उसको ये सिकुड़ देता है।
1: अच्छा,
0: अब जब उसको सिकुड़ता है तो क्या होता है,

0: ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आ जाती है और नशे का ये दुष्प्रभाव सामने आता है।
1: बिल्कुल
0: तो श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं जोड़ों के विशेषज्ञ से, बातचीत कर रहे हैं, और उस क्रम में आज हम बात कर रहे हैं घुटनों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उन पर। और अभी तक हमने जाना कि क्या कारण हैं जिनसे घुटने की समस्याएं होती हैं और क्या लक्षण होते हैं। अब बात आती है कि जैसा कि आपने कुछ तो बता भी दिया, इसकी रोकथाम कैसी की जाए, अपने घुटने को मजबूत कैसे रखा जाए ताकि जो समस्याएं हैं वो ना हों।
1: देखिए, भारत की जो पॉपुलेशन है उसको एक बहुत बड़ा स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें देखा गया है कि हमारे, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस जिसको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस का मतलब है कि भारत की जो जनरल पॉपुलेशन है उसका घुटना वैसे भी हल्का सा टेढ़ा रहता है। हाँ, 70% आदमियों का घुटना जो है वो टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा,
0: ये अपने देश की बात
1: अपने
0: है।
1: देश की, भारत की, भारत साउथ, ये एशिया पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, एज कंपेयर टू विदेशों में जो अमेरिका वगैरह की, बाय यूरोपियन पॉपुलेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो घुटना थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना वैसे भी ज्यादा है। उसके साथ साथ में हम लोगों में दिक्कत ये है कि डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहे हैं हम। डायबिटीज हर चीज को कमजोर करता है। तीसरी चीज, हम व्यायाम वगैरह से दूर जाते हैं। भारत ही देश है जिसने दुनिया को, विश्व को योग करना सिखाया, आज विदेश में लोगों ने अपना लिया, हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो अगर इंसान नियमित रूप से व्यायाम करता रहे, आजकल फास्ट फूड का कल्चर चल गया है, लोग बाहर खाने में एक फैशन समझने लगे हैं,
0: बिल्कुल।
1: जो कि वो भी हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव डालता है।
0: बात यह है कि भारत ने जो, हमारी भारतीय संस्कृति में जो था योग, वो पश्चिम के देशों ने अपना लिया,
1: बिल्कुल
0: और पश्चिमी देशों में जो पिज्जा बर्गर था वो यहाँ अपना लिया गया, ये
1: नहीं,
0: उल्टा हो गया।
1: हाँ, ये एक समय का फेर है। धीमे धीमे, जैसे मैंने बताया कि हर चीज के दुष्प्रभाव रहते हैं, ऐसे ही फायदे भी रहते हैं। इंस्टाग्राम से और बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से ही इतने अच्छी अच्छी हमें चीजें सुनने को मिलती रहती हैं, और लोग बताते रहते हैं कि भाई वापस आप अपने नियमित खाने पे आइए। आप फास्ट फूड का कल्चर अब काफी यंग जनरेशन छोड़ती जा रही है, वो मुझे वो देख के अच्छा भी लगता है।
0: जी
1: एक यूट्यूब पे बहुत ही फेमस फूड फार्मर करके हैं, उन्होंने मुहिम भी छेड़ा हुआ है कि आप बाहर का खाना ना खाके घर का खाना खाइए।
0: लेकिन तमाम मुहिम के बावजूद अगर आप मार्केट में निकल जाएं तो एक ठेला रहेगा जहाँ पे स्प्राउट्स दे रहा है कोई,
1: हाँ
0: कुरित चने या मूंग वगैरह,
1: हाँ
0: वहां कोई नहीं होगी,
1: बिल्कुल
0: भीड़ बहुत कम होगी, इक्के दुक्के लोग दिखेंगे, रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं होगी, क्यू लगी रहती है ना। वही शराब की दुकान पे मारा मारी मची रहेगी, है ना। लेकिन
1: शराब का सेवन कम से कम करे तो इंसान जो है बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। 70-80 साल के घुटने भी मैंने ऐसे देखे हैं जिनको देख के आप लगता है कि ये 30-35 साल के इंसान के घुटने हैं।
0: अच्छा
1: और वो लोग ऐसे रहते हैं जो लगातार फिट रहते हैं।
0: जी, और आखिर में कोई संदेश देना चाहे हमारे श्रोताओं को स्वस्थ रहने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको बोलना चाहता हूं कि व्यायाम करते रहिए, योग जो भी जितना भी हो सके वो करते रहिए, सुबह 10 बजे की धूप लेते रहिए और स्वस्थ रहिए, बस अपना ध्यान रखिए।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना कीमती वक्त निकालकर आप आकाशवाणी स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को अपना ख्याल रखने के लिए आपने प्रेरित किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सेहतनामा में जोड़ों की समस्या और उनके रोकथाम के समाधान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अभिषेक सिंह और आपसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। 104 FM पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। राजकिशोर सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री अनुष्का, जिनकी उम्र 13 वर्ष है, कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ है, एक अरा जिस्म है, चेहरा गोल है, आंख नाक कान औसत हैं, बाल भी काले हैं और शरीर पर पीला सूट व पीला पजामी और गले में पीला दुपट्टा डाले हुए हैं, जो ग्राम नरखेड़ा से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक थाना बिनाबर जिला बदायूं को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित एक और सूचना सुनिए। संतराम सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी पारुल, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, एक मजबूत जिस्म है,

0: चेहरा गोल और माथे पर चोट का निशान है, ठोड़ी पर मस्से का निशान है, आंख समान है, बाल समान है, जो फैंसी कॉलोनी कस्बा व थाना वजीरगंज जनपद बदायूं से 11/4/2026 रात 8 बजे से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो थाना वजीरगंज जनपद बदायूं को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है, स्वदेशी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बोल बोल के थक गया।
8: क्या हुआ?
7: नया किडबैग चाहिए।
8: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
7: करेक्ट।
8: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना गिड़ बैग।
6: RBI कहता है,
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
10: इतनी भी क्या जल्दी थी?
9: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
11: और ये
12: मेरी गुड़िया के नाम।
13: पर दादी, आपके नाम?
14: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
9: चुप चुप बोलो। क्या?
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रप्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह

0: और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अंधेशकों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
1: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्रप्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रविकिशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहाँ मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती, और जो घोषणाएं करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे, लोगों

0: तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को खासतौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पर पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
1: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई निर्माता निर्यातक उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्रीकृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टर में बांट कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
1: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनों में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रप्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Hey guys, hi, congratulations.
4: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
7: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ,
10: 5,000 बच गए।
9: तो नई साड़ी ले ले
10: ना।

0: पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आपने ट्यून किया है 104.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम जनमंच का। आज के जनमंच के हमारे प्रतिभागी हैं आदर्श कुमार और काजल गंगवार। विषय है उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां, और आपसे बातचीत कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
5: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम जनमंच ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम हमारे समाज के ही, आपके ही बीच के और हम सबके बीच के ऐसे वर्गों को प्रदर्शित करते हैं, उनकी राय को प्रदर्शित करते हैं और एक ज्वलंत और एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय लेके आते हैं आप सभी के लिए, जो बहुत ही जरूरी है। और उस विषय के अंतर्गत हम जानते हैं हमारे मेहमान जो भी हमारे बीच उपस्थित होते हैं उनके अनुभवों को, वो एक राह देते हैं, परामर्श देते हैं और उनके जीवन के बारे में जब हम जानते हैं तो वो आदर्श स्थापित करते हैं हमारे उन नौनिहालों के लिए, उन बच्चों के लिए जो उस राह पर चलना चाहते हैं या अपने आप में भी उस बात से संबंधित जो भी तथ्य और कथ्य होते हैं उन सारी ही बातों को लेकर। इसी कड़ी में आज हम कार्यक्रम में जो विषय लेकर हाजिर हैं वो विषय है उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां, यानी कि हायर एजुकेशन में युवाओं की क्या रोल है और क्या उनके सामने टास्क हैं, चुनौतियां हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए उपस्थित हैं आदर्श कुमार, जो कि बीटेक बायोटेक कर रहे हैं, साथ ही साथ आप IIT रुड़की से एक सर्टिफिकेट AI डेटा साइंस का कोर्स भी कर रहे हैं। हमारी दूसरी प्रतिभागी हैं आज की कार्यक्रम की काजल गंगवार जी, जो कि BAMS का कोर्स कर रही हैं पीलीभीत के सरकारी कॉलेज से, और आप दोनों ही उच्च शिक्षा में ग्रहण कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे इस पूरे प्रोग्राम में इनके जीवन से जुड़ी, इनके इन कोर्सों से जुड़ी बातें, और आपके लिए भी वो लाभप्रद होंगी। कार्यक्रम में आज आप हमारे स्टूडियोज में बता रहे हैं आदर्श कुमार जी और काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू,
7: धन्यवाद।
5: शुरुआत करते हैं आदर्श जी आपके साथ। जैसा कि आपने हमें बताया कि आप कर रहे हैं बीटेक बायोटेक, और जो कि अपने आप में उच्च शिक्षा है, और इस कोर्स को यहाँ तक आप परस्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने बताया कि आप IIT रुड़की के AI के डेटा साइंस में कोर्स भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। तो यहाँ तक पहुँचने में आदर्श कुमार को किन किन समस्याओं का या किन किन चीजों का सामना करना?
7: जी, मेरा हमेशा से रुझान था टेक्नोलॉजी और बायोटेक, जैविक विज्ञान में।
5: जी,
7: मैं हमेशा से ऐसी फील्ड में जाना चाहता था जहाँ पे दोनों चीजों को मैं साथ में लेके चल सकूं।
5: जी,
7: मेरे को हमेशा से इन चीजों में इंटरेस्ट रहा है।
5: जी, जैसा आपका इंटरेस्ट आया, सिर्फ इसीलिए आपने इस क्षेत्र में आए, ये तो एक बात आई, लेकिन अब जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई कई बार हमारे मार्क्स पूरे नहीं आ पाते हैं, हम एक अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, या आपका सब कुछ चाहा और तैयारी की और क्लियर करते गए और ऐसे?
7: जी, ऐसा हमेशा होता है, जब भी हम 12वीं पास करते हैं उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम की चीज हमारी जिंदगी में आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई कह सकते हैं आप आसान चीज नहीं है। बहुत कॉम्पिटिशन है भारत में, हर तरीके के लोग हैं, आप जब भी एग्जाम देने बैठते हैं आपसे बेहतर ज्यादातर निकल ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दें। बात यह होती है कि आपने मेहनत की, अच्छा टाइम लगाया उसमें, लेकिन उसके बाद भी नहीं निकला, वहां पे आपको एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और सोचना चाहिए क्या मैं इस चीज में आगे काम कर सकता हूँ या नहीं।
5: आपने एक इम्पोर्टेंट बात की कि कई बार जैसे बताते हैं कि बल्ब का आविष्कार करते समय एडिशन ने भी जो है कई बार विफल हुए, और फाइनली उन विफलताओं से सीखा, जब उनसे पूछा गया एक साक्षात्कार में तो उन्होंने कहा कि क्या चीज आपको, ये आपने 100 बार प्रयत्न करके इतना बताया, बोले मैंने 99 बार सिर्फ ये पता चला मुझे 99 बार में कि इन इन चीजों को करूंगा तो बल्ब नहीं बनेगा। वो जो आपने बात की कि हमारी,
7: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या कर सकता हूं से ज्यादा जरूरी जानना यह है कि मेरे से क्या नहीं होगा, ताकि आप उस चीज पे काम कर सकें, मेहनत कर सकें। उसके बाद अगर फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि आप इस फील्ड के अलावा भी और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
7: आपके पास हर तरीके के रास्ते हैं, आप दूसरे रास्ते पे भी चल सकते हैं। जरूरी नहीं आप जिस रास्ते पे कोशिश कर रहे हैं वहां पे आपकी एबिलिटीज हो, स्किल्स हो, ये हो सकता है कि आप दूसरे रास्ते पे जाएं वहां पे आपकी स्किल्स बेहतर हो।
5: तो आप गलत जगह, आप अपना रुझान, अपना चॉइस जो है वो अच्छे से चूज करिए, आपकी बात से ये चीज निकल के आती है।
7: जरूरी है कि सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है।
5: एग्जैक्टली, तो अब हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में आज हमारी दूसरी प्रतिभागी काजल गंगवार जी। तो काजल जी, आपने जैसा कि बताया आप BAMS कर रहे हैं,

0: तो
1: जी
0: मोटा मोटी हमारे सभी श्रोताओं को हम बताते चलें कि BAMS जो है कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं होता है कि PhD होल्डर, एक MBBS के थ्रू भी हम लोग डॉक्टर बनते हैं, दूसरा बैचलर इन
1: जी
0: जो आयुर्वेदाज और ऐसा। तो
1: जी
0: इसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, क्या BAMS क्या होता है BAMS?
1: जी हमारे समाज में अक्सर BAMS को ये माना जाता है कि मतलब वो MBBS जितनी प्रायोरिटी नहीं होती या फिर
0: जी
1: उसकी इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं होती,
0: जी
1: लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पुराने समय से जो चला आ रहा है तो वो
0: जी
1: BAMS ही वो मेडिसिन थी जो कि क्या कहते हैं लोगों को ठीक करती थी
0: जी
1: पहले।
0: जी
1: MBBS जो है वो विदेशी चिकित्सा है, लेकिन जो BAMS है वो हमारी भारतीय चिकित्सा
0: भारतीय
1: पद्धति
0: प्राचीन।
1: है। उसकी वजह से ही क्या कहते हैं मतलब जो मॉडर्न चिकित्सा उसका जनन हुआ है, वो
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: जननी है।
0: तो इसको हम मोटा मोटी तौर पे कहें तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम BAMS की कहें तो क्या निकल के आती है?
1: BAMS की जो फुल फॉर्म है वो निकल के आती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
0: जी
1: इसमें हम जो होते हैं इसमें हम पेड़ पौधों की सहायता से और अलग अलग मेटल्स के सहायता से क्या कहते हैं उनको प्योरीफाई करके हम
0: जी
1: दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसमें पंचकर्म बहुत फेमस इसका
0: जी जी
1: कर्म है
0: जी
1: जिसकी वजह
0: बिल्कुल
1: से, और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आयुर्वेदा होता है इसके साइड इफेक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप सही तरीके से दवाई लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं या नहीं होते हैं।
0: तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनमंच, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है दो युवा जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में युवाओं की भूमिका, चुनौतियां और इन सारी बातों पे। तो अच्छा काजल जी, एक प्रश्न, ये तो आप लोगों के दैनिक जीवन से हम लोगों ने पूछा है, कॉमन सी
1: जी
0: सामान्य सी बात हुई, यहां तक आप कैसे पहुंचे, आपसे भी हम इस विषय पे अगले पड़ाव पे जरूर आएंगे, लेकिन एक आम आदमी, एक आम युवा जो पढ़ रहा है, मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर, इंटर के बाद ही हम लोग राह चुनते
1: जी
0: हैं हायर, वो कैसे चुनता है, कैसे चूज करता है कि मुझे ये करना है, यानी मान लीजिए आपने ही अपनी ये राह चुनी तो कैसे चुनी? तो कहने का मतलब यही है कि इसकी उच्च शिक्षा को चूज कैसे करते हैं?
1: जी जैसे 10th के बाद जो CBSE बोर्ड में होता है, 10th के बाद
0: जी
1: आपको स्ट्रीम आपकी चूज करनी होती
0: ओके
1: है। उसके बाद अगर आपने बायोलॉजी की स्ट्रीम ली है तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में माइंड सेट होता है कि हाँ मुझे नीट तो देना ही है।
0: जी जी
1: तभी से फिर क्या कहते हैं आप नीट के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। MBBS की तरह आपको इसमें भी नीट क्रॉस करना ही होता है।
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट सीट के लिए क्या कहते हैं आपको एक रेंज सेट होती है, वरना प्राइवेट कॉलेजेस के लिए
0: जी
1: भी एक मिनिमम मार्क्स सेट होते हैं।
0: जी
1: और उसके बाद फिर जैसे बच्चे जो होते हैं MBBS की ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे जिनका रुझान प्राकृतिक चिकित्सा में है, जो क्या कहते हैं जिनका प्रकृति से अलग ही जुड़ाव है, वो BAMS की तरफ जा सकते हैं। हाँ तो ऐसे करके आप इसको अपने चूज कर सकते हैं। सही कॉलेज और सही मार्गदर्शन होना बहुत
0: जी
1: ज्यादा
0: बिल्कुल
1: जरूरी है
0: बिल्कुल,
1: इसमें।
0: बहुत अच्छी बात आपने यहां से एक निकल के आई श्रोताओं कि सही मार्गदर्शन होना भी बहुत जरूरी है, आपकी कोशिश आप सही दिशा में कर रहे हैं, जैसा कि इससे पहले आदर्श कुमार जी ने बताया था। आदर्श जी, अब एक प्रश्न ये आता है कि जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए आपने जो है वो बायोटेक के क्षेत्र को चुना, आपने MBAMS के क्षेत्र को चुना, मेडिकल के क्षेत्र को चुना, इसकी तरफ मोटिवेटर्स, प्रेरक क्या वो पॉइंट्स हैं जो ऐसा लगता है कि आपको कब इस बात को लगा कि नहीं मुझे बायोटेक के क्षेत्र में जाना है, आपको कब लगा कि ऐसा कि मुझे ही BAMS करना है?
2: जी ये सबसे पहले मुझे लगा 10वीं क्लास में।
0: अच्छा
2: 10वीं क्लास में हमारी एक बायोलॉजी की बुक थी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर था,
0: ठीक है
2: चैप्टर 11 मेरे ख्याल से,
0: जी
2: जहां तक तो मुझे याद है।
0: जी
2: उस चैप्टर में जब मैंने टेक्निक्स पढ़ी,
0: जी
2: तकनीकें पढ़ी कि DNA को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके आगे क्या क्या स्कोप निकल के आ सकते हैं, ये आगे दुनिया को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, तो मैंने उस समय निर्णय किया कि मैं बायोटेक चूज करूंगा और मुझे
0: अच्छा,
2: इस फील्ड में आगे काम करना है।
0: यानी कि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं 10th, जैसा कि इससे पहले अभी काजल जी ने बताया था कि 10th के बाद हम लोग अपनी स्ट्रीम चुनते हैं, तो वहां से ये अगर मोटा मोटी तौर पे उच्च हायर एजुकेशन की बात करें तो बच्चा जब 10th में आता है तो वहां से उसको अपनी लाइन लेंथ तय कर लेनी होगी, या
1: जी
0: वो प्रेरक होगा, वो पॉइंट
1: जी
0: होगा कि वो उसको मेडिकल में जाना है, कॉमर्स पढ़ना है, कि अकाउंटेंट बनना है, कि श्रोताओं ये भी आपके लिए बहुत लाभान्वित और प्रमुख बिंदु है कि हमारे लिए वो प्रेरक स्थान अगर बात करें हायर एजुकेशन की, तो हम अपने बच्चों को रुझान को देखते हुए 10th एक ऐसा पॉइंट है जहां हमको डिसाइड करना होगा कि आगे की नाव किस दिशा में जाए। अच्छा काजल जी, एक प्रश्न आता है, प्रेरक की बात कर ली हमने, राह कैसे चुनते हैं ये भी कर ली, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हायर एजुकेशन की अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ मेडिकल आपकी तरह, कुछ आपकी तरह बायोटेक में,
1: जी
0: कुछ आते हैं लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कुछ है। तो इन सारी ही चीजों की बात करते हैं, इनमें एंटर करने की प्रवेश प्रक्रिया, इसमें दाखिला प्रक्रिया क्या है?
1: जैसे कि अगर आपको BAMS में एडमिशन चाहिए तो
0: जी
1: सबसे पहले तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो 11th 12th से ही अपनी प्रिपरेशन साथ ही साथ मतलब शुरू कर देते हैं,
0: ओके
1: लेकिन कुछ लोग होते हैं वो 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ उनको BAMS करना है। तो फिर क्या कहते हैं सबसे पहले तो आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
0: जी
1: जिसमें कि 11th 12th का ही आपका पूरा सिलेबस आता है,
0: जी
1: फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें आती है।

0: आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा नीट के लिए. उसमें
1: जी
0: आप मिनिमम मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे
1: जी
0: जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए सफिशियंट है. लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर दाखिला चाहिए
1: जी
0: तो उसके लिए थोड़े हाई क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो आपको क्रॉस करने के बाद तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस के एडमिशन मिल जाता है.
1: तो
0: यही
1: यानी
0: सब
1: कि नीट के प्रिपरेशन आपको जो है 11th 12th के साथ
0: जी
1: आप साथ ही
0: हाँ
1: साथ
0: शुरू
1: करेंगे,
0: कर सकते हैं
1: तब आप जो है परिणाम आते हैं। तो ऐसा भी
0: जी
1: होता है कि किस कुछ लोगों को पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ
0: जी
1: लोग कुछ
0: जी
1: ज्यादा भी वेट करते हैं।
0: जी तो कुछ लोग पहले में ही कर लेते हैं. लेकिन अगर आपका अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. आप मेहनत करेंगे और 11th 12th में बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं किसी को 1-2 साल लग भी जाते हैं. तो लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको उसके बाद जो चीज मिलने वाली है बीएमएस जैसी डॉक्टर आपके नाम के आगे लगने वाला है, तो वो मेहनत सारी सफल हो जाती
1: अच्छा
0: है.
1: काजल जी को क्या लगता है कि अब चूंकि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छी रैंक हासिल करके आप
0: जी
1: बीएमएस कर रही हैं,
0: जी
1: तो काजल जी को अब इस मुकाम पे आके क्या लगता है कि बच्चों को 11th 12th के साथ अगर या मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं उनका क्लियर हो
0: जी
1: पाया या जो कुछ मिला वहीं से एंड टर्न हो जाना चाहिए, या अगर उनके मन मुताबिक नहीं मिला है तो वेट भी कर सकते हैं, आगे अगले अटेम्प्ट भी दे सकते हैं।
0: जी ये आपके ऊपर है. अब जैसे हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हो, तो आपको आगे तैयारी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको वो कॉलेज लग रहा है कि हाँ आपके अंदर और ज्यादा पोटेंशियल है, आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं, आप अपनी पूरी मेहनत नहीं कर पाए थे, तो आप बेशक आगे जाके आप और ज्यादा तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छा कॉलेज आगे मिल सकता है. तो बस
1: तो
0: ये
1: आपको क्या लगता है आज आपके निर्णय पे, आप जहां से बीएमएस कर रही हैं कि इफ इट इज ओके या ये बढ़िया है मेरे मन मुताबिक हुआ या शायद एक अटेम्प्ट और बनता है ऐसा?
0: जी मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ मैं बहुत ही अच्छी जगह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ
1: ओके
0: अपनी स्थिति से.
1: तो अक्षित जी अब बात करते हैं कि आप हम लोगों ने प्रश्न लेके आए हैं दाखिला प्रक्रिया की, तो अलग अलग दाखिला प्रक्रिया हैं बहुत सारी चीजें नीट और बहुत सारी। अब चूंकि आप बीटेक बायोटेक कर रहे हैं और जो है डेटा साइंस में आईआईटी रुड़की से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं, इस तरीके की और भी अन्य गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए बच्चे को किस तरीके से एंटर होना होगा, क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस?
2: नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला जाए,
1: ठीक है,
2: बीटेक वगैरह के लिए सीयूईटी या
1: ठीक
2: फिर
1: है
2: जेईई निकाला जाता है.
1: ठीक है
2: लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड में मास्टरी करनी है, आजकल देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल डेवलप करना. अगर आपके पास स्किल नहीं है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो वो आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगी. आपका स्किल होना बहुत जरूरी है. तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पीछे ही भागें, आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं. उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज चूज कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा
1: एक
2: तरीका
1: एक
2: है.
1: प्रश्न हमने रखा हुआ है, आगे ऑनलाइन कोर्सेज पे भी बात करेंगे, अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं दाखिला प्रोसेस कि हायर एजुकेशन में आप मान लीजिए आप ही के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो बीटेक बायोटेक या इस प्रकार के कोर्सेज में दाखिला लेने की सामान्यतः क्या प्रोसेस है, बच्चा कैसे शुरू करेगा और एडमिशन पा पाएगा?
2: इन सब के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना होगा.
1: अच्छा
2: ये एक तरीके का आप कह सकते हैं मस्ट है आज के समय
1: अच्छा,
2: में.
1: किस
2: उसके
1: किस
2: अलावा
1: प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है?
2: जैसे सीयूईटी हो गया हमारा, उससे आपको भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है.
1: अच्छा
2: जेईई हो गया, उनसे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है.
1: ओके
2: इन सब कॉलेज उसके अलावा जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो भी अलग से टेस्ट अपने चलाते हैं, आप उन टेस्टों में पेपर दे सकते हैं, नंबर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है.
1: अच्छा
2: बेसिक बात यह आपको सही दिशा में मेहनत करनी
1: है.
2: है
1: अच्छा श्रोताओं आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते चलें और इस बात से इत्तेफाक रखेंगे आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये अपने आप में एक शिक्षा उच्च शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन पैरेलली हम देखते हैं कि जिन चीजों की ज्यादा डिमांड होती है वहां उस चीज में फेक और नकाल भी बहुत सारी चीज होती है. कई बार हम देखते हैं बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं या कुछ लोग ऐसे भी दाखिल हो जाते हैं जो इन्हीं सब डिस्परेशन का फायदा उठाकर जो कहीं से एफिलेटेड नहीं है या इस प्रकार के नकली संस्थान बना लिए और बच्चों को भ्रामक अपने झांसे में ले लिया और वो उनको दाखिला दिला लेते हैं और एक मोटी चौड़ी फीस जो है वो उनकी गड़प कर जाते हैं, हड़प कर जाते हैं. तो इन बातों का भी हमको जरूर से ध्यान रखना है दाखिला लेते समय, अगर हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं आया और तो हम जैसा कि काजल जी ने बताया कि आप एक अटेम्प्ट और जा सकते हो और जी जान से मदद कर सकते हो खुद की और तैयारी कर सकते हो, लेकिन हाँ हड़बड़ी में प्रलोभन में आके किसी गलत संस्थान में दाखिला लेने से बचें. मुझे लगता है आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे आप दोनों.
0: जी बिल्कुल
2: जी, एडमिशन लेने से पहले हमेशा जिस भी कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करें कि उसमें कैसे फैकल्टी है, कैसा उनका आउटपुट रहा है, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनका कितने का पैकेज लगा है, ये सब चीजें जान लें और उनके बारे में आप रिसर्च जरूर करें.
1: बिल्कुल बहुत देखिए और इम्पोर्टेंट बात है, ये बात हर बार हमें हाईलाइट इसलिए करते हैं हम कार्यक्रम में ताकि आप आप इन पॉइंट्स को जरूर चाहें तो नोट भी कर लें आने वाले समय में।

0: आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी कि आप वेबसाइट पे या किन्हीं अन्य माध्यमों से उन संस्थान के एलुमनाई देख लीजिए, उनका क्या पैकेज रहा है, बच्चों का प्लेसमेंट क्या है, उनकी यहाँ सीट कैसी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यूजीसी के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एक आम बात, एक साधारण सी बात की, एक आम आदमी की बात हम करते हैं इस कार्यक्रम में जो डायरेक्ट पहुंचती भी है वहां तक। काजल जी, आपको क्या लगता है आपकी सफलता ये जो या जो भी आपने की,
1: जी
0: इसमें कौन कौन सी बाधाएं आपने फेस, किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आपको बोझ लग सकता है,
1: जी
0: आर्थिक हो
1: जी
0: सकती है, कुछ भी, तो आपको यहां तक पहुंचने में कौन कौन से हर्डल आए?
1: आप जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सी अड़चनें आती हैं।
0: जी
1: और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत आता है कि वहां पर कितने लोग आ रहे हैं। एक तो संख्या, नीट में जो संख्या होती है लोगों की, वो 23 से 24 लाख आजकल होने लगी है, जो और सीट सिर्फ 1 लाख के करीब होती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि क्या कहते हैं, अगर हम फेल हो गए तो फिर कहीं ना कहीं और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको लगता है आप कोचिंग में तो जा रहे हो, इतना ज्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हो, और ये 1% अगर आपका नहीं हुआ तो बहुत निराशाजनक वो चीज रही है। मेंटली मतलब बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत होती है। मेरे साथ ये समस्याएं आई थी,
0: जी
1: लेकिन परिवार और शिक्षकों की सहायता से मतलब ये समस्याएं भी छोटी पड़ गई। तो इसीलिए मतलब ऐसी समस्याओं को हमें क्या कहते हैं, अपनी मेहनत पे हमें फोकस करना चाहिए
0: जी
1: ताकि ये समस्याएं ज्यादा परेशानी ना पहुंचा
0: बिल्कुल सही
1: पाए।
0: बात है, परिवार, शिक्षक, गुरु, ये सब लोग होते हैं हमें इन सारी चीजों से
1: जी
0: उबारने के लिए, और ये प्रेशर अपने आप में सोसाइटी का, इतना खुद का, इतनी मेहनत की,
1: जी
0: इतनी सारी
1: बिल्कुल
0: सीटें कम है, इतनी, तो ये अपने आप एक जो है वो प्रेशर
1: प्रेशर
0: क्रिएट
1: क्रिएट
0: कर देता है, ये अपने आप में चुनौती है। देखिए, अनुभव से ही हमको पता चलता है, और ये एक और प्रैक्टिकल बात हमको पता चली कि कहाँ कहाँ दुविधाएं हो सकती है। आपने जो आदर्श जी, कहाँ कहाँ आपको लगा कि क्या क्या बाधाएं रही?
1: सबसे बड़ी दिक्कत तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपका परिवार और आपके शिक्षक आपके साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। तो जब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये रही थी, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय में काफी, जैसे मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था मेरे हिसाब से,
0: जी
1: तो उस समय मेरे पास घर वालों का सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि जो भी है बेटा तू अपनी मेहनत करता रहे,
0: जी
1: बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इससे बहुत आप कह सकते हैं
0: एक
1: सपोर्ट
0: रिलैक्स
1: मिला,
0: मिलता है,
1: रिलैक्स
0: सपोर्ट,
1: मिला
0: हाँ कि
1: कि
0: बोले कि
1: प्रेशर कम हो
0: हाँ
1: गया।
0: कि घर वाले साथ
1: हाँ,
0: हैं।
1: आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कदम भी उठा लेते हैं जब उनके सिलेक्शन नहीं होता ये सब, तो इसमें घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है।
0: हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है? हायर एजुकेशन जो है वो इतनी जरूरी ही है, वो उसके पीछे का जो मुख्य कारण क्या है, क्या लगता है आपको कि क्यों आज हमको इस दिशा में बढ़ना चाहिए?
1: हायर एजुकेशन एक तरीके से मस्ट है आज के जमाने में, क्योंकि आप देखें तो आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं चीजें, आजकल पहले की तरह सिंपल नहीं रह गया है सब कुछ। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज की, खासकर आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है आपने जो चूज करी है। हायर एजुकेशन आपकी स्किल्स डेवलप करती है, आपको इंटर्नशिप एबिलिटीज प्रोवाइड कराती है, आपको प्रैक्टिकल्स करने को मिलते हैं, आपकी थ्योरी अच्छी होती है, उससे आपको आगे चल के जॉब मिलने में भी आसानी होती है, और आप एज अ पर्सन भी बेहतर बनते हैं, आप काम करने में सक्षम बनते हैं।
0: बिल्कुल, आपको एक अलग खड़ा कर देती है उस भीड़
1: हाँ
0: से। तो क्या लगता है काजल जी आपको कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है वो कितना जरूरी है और क्यों?
1: जी हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं, अब आप 12th करके नहीं रुक सकते। आजकल के जमाने में उच्च शिक्षा प्राप्त होना बहुत ज्यादा, अगर आपको किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको उच्च शिक्षा जरूरी
0: जी
1: होगी।
0: बिल्कुल
1: अगर आपको आगे चल के जॉब करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो फिर आपके उसमें उच्च शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और क्या कहते हैं मतलब आगे जाके आपको इंटर्नशिप के, प्लेसमेंट के और ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए उच्च शिक्षा होना बहुत जरूरी है ताकि इंसान की जानकारी, ज्ञान दोनों बढ़ सके।
0: अच्छा, अब हम आते हैं उस एक पूर्ण बात पर। आज इंटरनेट क्रांति का दौर है, सब कुछ एक क्लिक पे पा लेने का दौर है, और इंटरनेट से आज बहुत सारी चीजें आसान हुई हैं। अब एक नया चीज आ गया है आने वाले टाइम में, एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल आते हैं ऑनलाइन पे, तो ऑनलाइन शिक्षा, हायर एजुकेशन या किसी भी, और ऑफलाइन, इन दोनों के बीच के अंतर के बात करेंगे। क्या लगता है आपको काजल जी कि क्या अंतर महसूस करती हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन?
1: देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों में संतुलन होना भी बहुत जरूरी है।
0: जी
1: कोरोना के बाद से मतलब ऑनलाइन शिक्षा को एक अलग ही मतलब इम्पोर्टेंस मिली है.
0: जी
1: और
0: बिल्कुल.
1: जैसे ऑनलाइन शिक्षा है तो आप ई बुक्स जो होती हैं, जूम होता है, गूगल मीट होता है,
0: जी
1: आजकल बहुत सारी ऑनलाइन
0: जी
1: क्लासेस इन पे चलती हैं. लेकिन अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो उसमें ऑफलाइन शिक्षा भी उतनी इम्पोर्टेंट है. आप जब तक पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप प्रकृति में जाके निरीक्षण नहीं करेंगे.

0: कि तब तक आपको इतनी ज्यादा नॉलेज
1: नॉलेज
0: नहीं हो
1: नहीं है।
0: पाएगी। अब आप ऑनलाइन उस चीज का नहीं, अब दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। ऑनलाइन में आपका टाइम आपकी बहुत बचत होती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है शिक्षा लेने, एक क्लिक में आपको सब कुछ मिल जाता है। और लेकिन ऑफलाइन में ये है कि आप जब फिजिकली उन चीजों को देखते हैं, उन्हें फील करते हैं, तो फिर वो नॉलेज आपकी एक अलग ही लेवल
1: तो
0: होता
1: मोटा
0: है।
1: मोटी तौर पे इसको इस तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि ऑनलाइन की भी अपनी एक जगह है
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: ऑफलाइन की भी जगह है।
0: जी बिल्कुल,
1: जैसे कि ईमेल हम लोग भेज जरूर देते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन शायद आप लोग ने वो दौर नहीं देखा होगा चिट्ठी पत्री का। वो
0: जी
1: चिट्ठी पत्री का जो प्रेम होता था, है ना, ईमेल
0: जी
1: भेज दिया, कोई भी मैसेज भेज दिया, एक
0: जी
1: क्लिक में पहुंच जाएगा। पहले वो एक जेंजी के बाद, नहीं आपसे पहले
0: जी
1: वाला दौर ये था कि चिट्ठी आती थी, ये टेलीफोन भी बहुत रेयर थे, कम थे, नेटवर्क नहीं
0: जी
1: था, तो लोग एक सूचना को इधर से उधर देने में, शादी विवाह किसी भी चीज की सूचना, यहाँ तक कि मैं 12th में या 10th में पास हो गया, इसकी सूचना भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से, यानी वो हफ्ता 10-10 दिन बाद पहुंचती थी।
0: जी
1: तो जरूर समय लगता था, लेकिन लोगों के पास समय ही समय था।
0: वही
1: तो सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है।
0: जी
1: क्या लगता है
0: बिल्कुल।
1: आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इन दोनों ही मोड की बात करें तो क्या बुनियादी तौर पे अंतर पाते हैं?
2: ऑफलाइन में आप जब जाते हैं, कैंपस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करने को मिलता है बाकी अपने साथियों से, और शिक्षक आपके सामने रहता है, वहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है उस तरीके का पढ़ाई करने का। लेकिन
1: बिल्कुल
2: जब आप ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं
1: जी।
2: तो वहाँ पे आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हजार तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूँ, क्लास चल रही है, बंदे का ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। आपका फोकस होना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल
2: बाकी ऑनलाइन आपको, जैसे आप AI या डेटा साइंस का कोर्स करते हैं ऑनलाइन, तो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है उसमें ज्यादातर,
1: जी
2: तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी खासी मिलती है, और ऑनलाइन आपको थ्योरी तो मिलती ही मिलती है। तो जब तक आपका फोकस मेंटेन रहेगा, तो मुझे तो ये लगता है कि ऑनलाइन क्लास ज्यादा बेहतर होती है।
1: बिल्कुल। तो देखिए दो बातें निकल के आई ना यहीं से कि ऑनलाइन फोकस, फोकस अगर आप है तो ऑनलाइन कितना इजी गोइंग है और ऑनलाइन भी अपने आप में सरलता सहेजे हुआ है। लेकिन अगर इसको ठीक वैसे ही बात करें, दूसरी पक्ष की बात करें, तो एक ये भी बात आती है कि किताब हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और किताब ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो जब तक वो किताब की महक ना महसूस हो, उसको फील ना करें, तब तक लगता ही नहीं है कि कुछ पढ़ रहे हैं। भले वो सारी चीजें पढ़ ली हो, लेकिन वो जब तक आभास नहीं होता इस चीज का कि वो हमने पढ़ लिया। तो दोनों ही मीडियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि काजल जी ने बताया था कि कोरोना के बाद जो है ये ऑनलाइन इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, कि एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, उस समय मजबूरी थी, और आज हम अपने समय के बचाते हुए अपने सारी चीजों की साथ हम शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और इन सारी चीजों की भी अब हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, इतने बड़े तालाब में या समुद्र कह लीजिए, जहाँ हर तरीके के कोर्स हैं, आप AI डेटा साइंस की बात कर ली, BAMS कर लिया, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में हर एक चीज का पर्टिकुलर, आप MBBS कर लीजिए, उसके बाद कार्डियो करिए, गायनी करिए, दुनिया भर की चीजें। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि BAMS यानी कि उच्च शिक्षा में, अगर
0: जी
1: मेडिकल, इसमें भी विशेषज्ञता का है रोल इतने
0: जी
1: बड़े?
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा
0: जैसे कि BAMS करने के बाद क्या कहते हैं, 8 ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: उसमें भी क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ काय चिकित्सा होती है,
1: जी
0: और क्या कहते हैं बाल चिकित्सा होती है,
1: जी
0: शल्य चिकित्सा होती है, तो
1: जी
0: ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं। आप इसमें भी जाके आपको AIA PGET का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद यहाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज से PG कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार।
1: जी
0: तो आपको स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपका MD इसमें भी लगता है, MBBS की तरह ही, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो उसी तरीके में इसमें भी उच्च शिक्षा के आगे आप और भी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, PhD वगैरह भी कर सकते हैं आगे।
1: हम बात कर रहे हैं आदर्श जी कि विविधता, विविधता मतलब इतनी सारी चीजें हैं हायर एजुकेशन में भी, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो इसके बाद आप कौन से मुकाम की तरफ देख?
2: बायोटेक्नोलॉजी बहुत डाइवर्स ब्रांच है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी को। लेकिन मैं दो भागों में ज्यादा बांटता हूँ कि एक आप रिसर्च में जा सकते हैं बायोटेक करने के बाद, और दूसरा आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या बायोरिएक्टर वगैरह चलाना आना चाहिए, और अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो वो आप कह सकते हैं एक तरीके से देश को फायदा पहुंचाने वाली चीज है, कि रिसर्च एंड बायोटेक डेवलपमेंट में आप वैक्सीन बनाना सीख सकते हैं, आप दवाइयां बनाना सीख सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को आगे देखता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप बायोटेक में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डील करते हैं।
1: अच्छा।
2: खासकर डेटा एनालिसिस यहाँ पे ज्यादा आता है और मॉलिक्यूलर डॉकिंग जैसी चीजें, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मैं खुद को बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखता हूँ।

0: तो उच्च शिक्षा की चुनौतियां और उच्च शिक्षा के बारे में आज बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आदर्श कुमार जी, जो कि बीटेक बायोटेक कर रहे हैं और साथ ही साथ कर रहे हैं आईआईटी रुड़की से डेटा साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं काजल गंगवार जी, जो कि BA MS परस्यू कर रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। तो दोनों ही लोगों ने अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें की और आने वाली चुनौतियां संबंधित विषयों पर बात की, कितनी कितनी जो है जरूरत है हम लोगों को फोकस की। और कहा जाता है, देखिए आप दोनों लोगों ने एक बात की थी कि भाई अपने फोकस रहें, अपने गोल पर टिके रहें। तो कहा भी जाता है कि भाई गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल यानी कि वो बच्चा क्या ही गिरेगा जो घुटनों के बल चला, जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा। तो आप
1: जी
0: बिल्कुल हारने वाली चीजों को पीछे छोड़ करके हमेशा जीतने की बात करें। परिवार, गुरु, सारी किताबें, इतनी सारा हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, बिल्कुल भी उससे डरे नहीं। अब चलते चलते हम आप अपने दोनों ही पैनलिस्ट से आपकी एक विशेषज्ञ राय एक एक करके जानेंगे कि हमारे जो भी श्रोता हमारे को सुन रहे हैं आज, वो कैसे लाभान्वित हों उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, क्या क्या चीजों की सावधानियां रखें, किन चीजों पे गौर।
1: जी जब हम हायर एजुकेशन में जाएं तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि फील्ड चूज करना।
0: जी
1: उसमें एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें
0: जी
1: कि जल्दबाजी ना करें, अपना
0: जी
1: समय लें। और अपने जैसे आपने देखा होगा कि 10th में लोग कहते हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स है, मैं यही फील्ड आगे चूज करूंगा।
0: जी
1: ऐसा ना करें, आप
0: जी
1: वो फील्ड चूज करें जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, उस पे फोकस रखना जरूरी है। उसके
0: जी
1: अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है। एक बार उस बारे में रिसर्च करें, अच्छे से नॉलेज गेन करें, उसके बाद देखें। और आपका सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मुझे किस फील्ड में आगे जाना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है।
0: तो काजल जी को क्या लगता है कि हमारे सभी श्रोता किन किन की पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स को चेक करें और उनका ध्यान रखें हायर एजुकेशन के दिशा में?
2: मुझे लगता है कि अगर क्या कहते हैं आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं और अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप किसी के प्रेशर में ना आए, अपना एकदम रिलैक्स होकर आप पढ़ाई करें। किसी भी चीज़ के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। और आप ये इधर उधर ना भागे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मतलब आप अपना एक फोकस बनाए, गोल बनाए।
0: कि करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। देखा होगा शायद आप लोगों ने कम देखा हो कि कुएं से पहले पानी निकालने का प्रचलन था, तो कुएं की डोर जब अंदर डालते थे फिर निकालते थे, तो वो जो रस्सी होती है, कोई भी पत्थर अगर हथौड़े की 100 चोट जाके वो 100वें चोट में टूटा वो पत्थर। तो बिल्कुल भी हमारे सभी एस्पिरेंट जो हमको सुन रहे हैं निराश ना हो और अच्छे से अपने, चूंकि अभी अभी परिणाम आए हैं, बच्चों को सब्जेक्ट चूज करना है, आगे बढ़ना है, अपनी दिशा चूज करनी है, तो ये कार्यक्रम उनके लिए जरूर लाभान्वित होगा। तो कार्यक्रम में आज आप हमसे जुड़े, काजल जी आप और आदर्श जी आप, आपका अनेक अनेक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए, हमारे स्टूडियोज में पधारे, आपका एक बार फिर से धन्यवाद।
1: थैंक यू।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। आज का विषय था उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी थे आदर्श कुमार, काजल गंगवार और आपसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं रात के 8 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। आज के हमारे मेहमान हैं श्री राजेश कुमार गौड़ और आपसे बातचीत कर रहे हैं गौरव सक्सेना।
4: सुनिए
5: मुझे याद है जरा जरा।
6: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व प्रसारण कर्मी श्री आर के गौड़ जी। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जो कार्यकाल रहा प्रसारण के क्षेत्र में रेडियो से, के साथ उन्होंने जितना समय बिताया और उनके साथ कुछ खट्टी मीठी यादें रही होंगी, उन सभी के बारे में, उनके कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में उनके साथ हम बात करेंगे और आप तक उनके अनुभव पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: तो सर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी प्रसारण के क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई?
7: गौरव जी आपके कार्यक्रम का शीर्षक है मुझे याद है जरा जरा।
6: बिल्कुल सर,
7: मुझे बहुत कुछ याद है लेकिन चूंकि आपका शीर्षक है जरा जरा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें मुझे याद आ रही हैं, बात तो बहुत लंबी है क्योंकि 32 साल की तो रेगुलर सर्विस थी। इसके बाद मैं करीब 14-15 साल यहाँ आकाशवाणी बरेली

0: कैजुअल के रूप में मैं आया और अपनी सेवाएं दी। 1967
1: जी
0: 7 अगस्त को मैंने एज ए प्रसारण निष्पादक प्रसारण अधिशासी जो भी कहिए आकाशवाणी गोरखपुर में ज्वाइन किया। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 76 से और अभी ये जो 25 चल रहा है इसमें भी एक दो महीने ही बाकी है, कितना लंबा समय हो गया है। आकाशवाणी की जब ये रिक्तियां निकली
1: जी,
0: उस समय मैं अपने पिता के पास गुजरात पोरबंदर में था
1: जी।
0: मेरे एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, कि भाई इसमें जो कुछ भी चीज मांगी गई है वो सब चीज तुम्हारे पास है, तुम आ जाओ और इसकी डेट जो है वो निकल जाएगी वरना, क्योंकि बहुत दूर हो तुम। तो मैं जैसे ही मुझे वो पत्र मिला उसका, तो मैं मुजफ्फरनगर जो मेरा घर है
1: जी।
0: वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, एक गांव का, ये करीब 50-60 साल से हम मुजफ्फरनगर में सेटल हैं। मैं वहाँ आया, उसको फार्म को भरा, कोई फोटो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि डेट करीब आ रही थी समाप्ति की, तो आइडेंटिटी कार्ड का एक फोटो निकाल करके वो चिपका करके मैंने भेज दिया, भूल गए कि हमने कहीं अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद में अचानक इंटरव्यू का डेट आई और लखनऊ में इंटरव्यू था हमारा
1: जी।
0: ये 75 की बात है। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और सारी चीज़ें इत्तेफाक से जो पूछी गई वहाँ पे, और गौरापन शिवानी मुख्य रूप से उसमें हमसे बातचीत कर रही थी, पूछ रही थी, यानी इंटरव्यू ले रही थी
1: जी।
0: तो वो सारी चीज़ें हमें याद थी, वो हम उनको बताते चले गए और हमारे मन ने भी ये कहा कि हमारा सिलेक्शन निश्चित है, हो जाएगा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, बीतते बीतते फिर एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया। उस वक्त मैं अपने घर के खर्च के लिए, मेरी माँ ने कहा कि कुछ पैसे बैंक से निकाल रहा हो, तो मैं बैंक से पैसे निकालने गया तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि डाकिया आया हुआ है, कह रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है
1: जी
0: और मैं उन्हीं को दूंगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम वापस डाकखाने चले जाओ। मैं डाकखाने चला गया, इत्तेफाक से वो जो डाकिया महोदय थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे वो दे दिया। तो उसके कोने पे लिखा हुआ था आकाशवाणी गोरखपुर प्रेशर
1: जी जी,
0: बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि क्या होगा इसमें, क्योंकि इंटरव्यू तो लखनऊ में दिया था, कुछ देर थी पैसा मिलने में, तो मैं उसको खोल लिया। खोलने के बाद में देखा तो उसने लिखा था कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है और 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी स्वीकृति भेज दीजिए। मैंने वो भेज दी। उसके बाद में फिर पहली बार मैं इतनी दूर अपने घर से निकला गोरखपुर जाने के लिए। गोरखपुर पहुंचा और उसके बाद में रिक्शे वाले से कहा कि भाई मुझे रेडियो स्टेशन जाना है, तो वो बोला कि आपको बड़े रेडियो स्टेशन जाना है या छोटे रेडियो स्टेशन जाना है। कन्फ्यूजन पैदा हो गया, तो मैंने विचार बनाया कि बड़े से मतलब इसका ये, जहाँ स्टेशन डायरेक्टर बैठते हैं उन्हीं को रिपोर्ट करना है जाके।
1: बिल्कुल,
0: मैं रिक्शे में बैठ गया। अब रिक्शे वाला चलता जाए वो स्टेशन ही ना आए, वो हमको ले गया ट्रांसपोर्ट जो गोरखपुर शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर इंजीनियर्स की शिफ्ट छूट रही थी
1: जी।
0: मैंने उन्हें बताया, अरे अच्छा आपके साथ भी ये गलती हो गई, और सबके साथ में यही होता है पहले जब कोई गोरखपुर आता है। तो मैं कहा सर मैं क्या करूँ, बोले कोई बात नहीं है हमारे साथ चलिए गाड़ी में बैठ करके और हम वहाँ पहुँचा देंगे। तो असल में वहाँ पर उसको टाउन हॉल बोलते हैं, रेडियो स्टेशन न बोल करके टाउन हॉल बोलते हैं, क्योंकि उसके बराबर में ही म्यूनिसपलिटी का ऑफिस है
1: जी।
0: हम पहुँच गए, स्टेशन डायरेक्टर एक कश्मीरी थे, गुरटू साहब, कहने के भाई आज का दिन तो निकल गया है, अब कल हम आपको ज्वाइन कराएंगे। खैर उन्होंने कल ज्वाइन कराया, तो जब ड्यूटी रूम में पहुंचा तो मैं खड़ा रहा, तो किसी ने कहा कि भाई ये कुर्सी आप ही के लिए है, यहाँ बैठकर ही आप मॉनिटरिंग करेंगे कार्यक्रमों की। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा ऑफिस बना हुआ है, एकदम से अपने को विश्वास सा नहीं हुआ।
1: बिल्कुल,
0: बैठ गए और मैं 76 की बात आपको कर रहा हूँ। अब मुझे बड़ा याद आता है मुझे कि जब हम लोग बाहर निकलते थे आकाशवाणी कैंपस से बाहर निकलते थे, तो बहुत सारे लोग श्रोता के रूप में रहे होंगे, वो हमको देखने के लिए बैठे रहते थे वहाँ पे।
1: बिल्कुल, आपने स्वर्णिम काल देखा है इस समय,
0: वो बैठे रहते थे। तो अब हमारी समझ में नहीं आता था कि भाई हम इनसे क्या बात करें क्या ना करें। वहाँ गौरव जी, वहाँ रहते रहते ही मैंने नाटक में युवाणी का टेस्ट पास किया, फिर जनरल टेस्ट पास किया।
1: बिल्कुल,
0: और उस दरमियान वहाँ पे नाटकों में मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद में मुझे जब उनको मालूम पड़ा कि भाई कविता का इनको बहुत वो है, तो वो जो जितनी भी ओवी आती थी बाहर, बड़ा क्षेत्र था गोरखपुर का, तो वो वहाँ मुझे भेजते थे और कई कई बार बड़ा अच्छा सा लगता था जब मालूम पड़ता था कि वही लोग

0: गाड़ी लेके आए हुए हैं। वो कहते हैं भाई इनकी गाड़ी से चले जाओ, रिकॉर्ड करो, अपना भी सुनाओ और आकर के ब्रॉडकास्ट कर दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये सब चलता रहा। तबीयत खराब हो गई वहाँ पे, चूंकि पूरब का इलाका था, मुझे कहना चाहिए कि वो रास नहीं आया स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसके बाद में वहाँ एक जुल्का साहब थे असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर, उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरा भी यहाँ पे वो नहीं है, स्वास्थ्य खराब रहता है। बोले चिंता ना करो, तुम सबसे पहले व्यक्ति होगे जो आकाशवाणी नजीबाबाद में ज्वाइन करोगे, क्योंकि मुझे वहाँ की पोस्टिंग करनी है। खुश हो गया मैं, घर आ गया एक महीने की छुट्टी पे। लौट के जैसे ही आया तो मालूम पड़ा कि आर्डर आ गए हैं। कोई बात नहीं है, तो वो चूंकि छोटा पीरियड था
1: जी।
0: लेकिन मेरा जो लंबा पीरियड बीता है वो बीता है नजीबाबाद में, आकाशवाणी नजीबाबाद में। वो वहां पर हाई पावर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। केवल उत्तर प्रदेश में 3 जगह हाई पावर ट्रांसमीटर थे, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, नजीबाबाद और गोरखपुर। इनॉग्रेशन उस केंद्र का नहीं हुआ था, बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। इनॉग्रेशन हो गया, छोटा सा कस्बा था, वहाँ पहचान इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि यकीन नहीं आ रहा था। जैसे कि आपने कहा उस स्वर्णिम काल ही चल रहा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज
0: उस समय के बाद में। लेकिन इतना समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, प्रमोशन अब हुआ ये तब हुआ। 14 साल वहाँ पर बीत गए, जैसे कि भगवान राम को 14 साल बीते थे वनवास में, वो साल बीत गए। उसी बीच शादी भी हुई, यहाँ बरेली में ही शादी हुई। एक बेटी है साहूराम स्वरूप में, पीजी कॉलेज है उसकी, HOT है होम साइंस की, गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट। और आगरा का दयालबाग है, वहाँ से उसने MHSC किया, वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट है, वो यहाँ पे कार्यरत है। एक ही बेटी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप देखिए चूंकि डिपार्टमेंट पे हैं, आप जिस पद पर हैं वो जानते हैं कितनी चुनौती भरा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और धीरे धीरे मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो चुनौतियाँ हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, अब हमको बड़े हल्के से लिया जाता है।
1: अच्छा सर, आपने जैसे 32 साल करीब आपने बिताए हैं इस सर्विस में परमानेंट, और उसके बाद भी आप
0: 13-14
1: साल आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं, तो आपको क्या परिवर्तन नजर आता है? एक नौकरी के दौर में जब आप लोग थे स्वर्णिम काल चल रहा था, और आज अगर हम लोग देखते हैं तो मनोरंजन के बहुत सारे और साधन जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में आपको दोनों अगर हम फेज की बात करते हैं तो क्या आपको परिवर्तन नजर आता है?
0: गौरव जी, एक बात तो आप मानेंगे कि क्या होता है कि ये जो हमारा जॉब है आकाशवाणी में, ये शुरू से ही बड़ा चुनौतीपूर्ण जॉब रहा है। इसके बारे में हम, लेकिन ये धारणा आज भी बनी हुई है, आज भी बना हुआ है ये, कि हम जो अपना प्रसारण करते हैं कोई और सुना ना सुने, लेकिन हमारे किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये आपको मानना पड़ेगा।
1: सबसे ज्यादा सुने जाने वाले,
0: सबसे ज्यादा सुने जाने वाले वही लोग हैं जो कि आज भी हमारे से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी बातें हमने यहीं से सीखी हैं, क्योंकि मुझे बागवानी का बहुत शौक है, मैं पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ आकाशवाणी में ही सीखी है मैंने। मैं कहता था यार ये जो तुम खाद बता रहे हो ये कहाँ मिलेगी, या ये पेड़ कहाँ मिलेंगे, तो मुझे नहीं मालूम था कि पेड़ नर्सरी से मिलते हैं, इनकी नर्सरी बनाई जाती है। एक वाक्या जो बड़ा चुनौतीपूर्ण वाक्या है अपने कार्य को लेकर के, मैं जब नजीबाबाद में पोस्टेड था तो वहाँ पर एक गढ़वाली प्रोग्राम चलता था और एक कुमाऊनी प्रोग्राम चलता था, क्योंकि वो क्षेत्र पूरे गढ़वाल से जुड़ा हुआ था, पूरे उत्तराखंड से, तब उत्तराखंड नहीं बना था।
1: जी जी।
0: क्या हुआ कि एक प्रसारण जो हमको करना था गढ़वाल का, वो जो उसके प्रोड्यूसर थे वो अपने ऑफिस में, वो दूसरी मंजिल पे थे ऑफिस उनका, वो अपने अलमारी में बंद करके चले गए। उस टाइम मोबाइल था नहीं, अनाउंसर भागी भागी आई कहने की वो टेप नहीं मिल रहा है, क्या करूँ मैं कितना टाइम रह गया है, बोले कुछ 10-1 मिनट रह गए। मैं गया देवयोग से, मैं उनके वहाँ गया, उनकी अलवारी में मैंने एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर मारा, अलवारी तोड़ दी मैंने और टेप मुझे मिल गया
1: जी।
0: और आकर के ब्रॉडकास्ट कर दिया। यही सब मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, जैसे आप जानते होंगे एक रिपोर्ट भी लिखी
1: जाती है
0: जो जो जो कुछ भी हुआ है ईमानदारी के साथ पूरी तरीके से वो मैंने लिखा। स्टेशन डायरेक्टर बहुत खुश हुए और उनको बहुत कहा कि भाई देखो ये लापरवाही सही नहीं है, अगर ये ना होते और इन्होंने इतनी जल्दी डिसीजन ना लिया होता तो भगवान जाने आपके प्रोग्राम का क्या होता, खास तौर से उस टॉकर का क्या होता जो रेडियो खोले बैठा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उसका प्रोग्राम तो आता ही नहीं, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी
1: जी।
0: दूसरी बात यह है कि मैं जब आकाशवाणी में नहीं आया था, यानी 75 की बात बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में रहता था, तो वहाँ ये दिन भी रामलीला।

ही चल रहे हैं, रामलीला शुरू होती है, तो वहाँ पर भी ऑडिशन होता था, तो मैंने भी ऑडिशन दिया राम का, गवाया गया मेरे से, और वहाँ पे मेरा कि भाई राम का रोल आप करेंगे। उस समय ऐसा समय आ गया था जब कदम हमारा धारावाहिक रामायण चल रहा था, अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था, तो उसका असर मैंने ये देखा कि लोग ये देखने के लिए आते थे कि ये राम जो बना हुआ है ये ठीक कर रहा है या

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से, आवाजें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: ज़बा नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उधास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उधास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह,

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ

0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256

4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं और हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।